0: शुक्रवार 15 अक्टूबर की सुबह हो चुकी है और इस वक्त ठीक 5 बजे है।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musty.

0: rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: सुबह के 5:05 हुए हैं, दीवाना तो आ गया, बस आपकी इस दीवानी का भी स्वागत कीजिए. एंड लेट मी विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स. नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें. एंड बस नई उम्मीद के साथ नई सुबह की शुरुआत भी हो चुकी है. तो वट एवर यू माइट बी, स्टिल वेल ट्यून टू रेडियो मस्ती. और सुबह के 7 तक बड़ी प्यार से सदाबहार एवरग्रीन सॉन्ग्स के साथ आपकी मॉर्निंग की शुरुआत यहाँ पर हो रही है. तो याद रखिए कि हर नई सुबह जो है अपने साथ एक नया पैगाम लेकर आती है ना. और ये पैगाम है उम्मीद का, विश्वास का और ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने का. कल क्या हुआ, किसने हमको दुख दिया, कौन सा सपना अधूरा रह गया, इन सब बातों को दिल पर बोझ बनाकर मत रखिएगा, क्योंकि आज का दिन आपके पास एक नया अवसर बनकर आया है. तो इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा. 5499-1294 पर सैकत नफ नफ दोस्त नफ का पर आपके मैसेजेस, आपके पैगामों का इंतजार है.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: Coffee messages on 549-912-94. So let me wish a very good morning aapko. Kaise hain aap aur Padmini? सुबह सुबह हमारे हम सफ़र बनने के लिए आपको बहुत धन्यवाद. स्टे ब्लेस्ड ओम साई राम. आपको भी प्रणाम भाई सूरज शर्मा एंड सजादा परिवार. प्रणाम जय माता दी. और आप है साच हॉस्पिटल से मिस्टर जयशन. साथ में है तेम्बा, दानू, जीवन, अंगोटिया, आकाश, शर्वन, मेविन एंड थैंक यू. हम आपको कहेंगे दोस्त हमारे हम सफ़र बनने के लिए. यहाँ पर वेरी गुड मॉर्निंग टू यू माई डियर बेनीता.

आप फ्रॉम फोन जिसा कहते हैं, आपकी शादी की 35वीं सालगिरह मनाई जा रही है। आप दोनों की जोड़ी जैसे कहते हैं सलामत रहे, खुश रहे हमेशा। आपके लिए पति आनंद एंड मोहन एंड आपके नाम है पूरे परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। शत बिनागत से आशनी रेखा, सुरेखा माधव परिवार, खास आपके नाम ज्योति और आपके सभी डियर वंस। गुड मॉर्निंग मिस्टर दीपक, कैसे सब ठीक? नेक्स्ट गाना आपके लिए भी चलाते हैं यहाँ पर, गुड मॉर्निंग अब्दुल एंड सायरा बानू। तो चलिए लगे हाथ, जितने भी लोग काम पर जा रहे हैं, प्लीज ड्राइव केयरफुली, ड्राइव सेफली, आराम से एंड रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहे। ये अगला गाना आप सभी के नाम।

नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

माँ तो माँ होती है और माँ का प्यार उनका आशीर्वाद आप सब पर रहे। जय माता दी। कैसे हैं आप? प्रेमिला जी, प्रंति पापा से आपके पति रंजीत पूरे परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को भी साथ में हैं सरोज, राजन, मोनिका, उमेश, पूनम, उर्वश, विशा और कैथुबोन से आपके सभी डियर वंस और सभी भक्तों को भी जय माता दी।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: तो चलो कोयल तो बोल ही रही है आपको सुप्रभात कह रही है, लेकिन आपका दिन कैसा रहेगा?
2: एरीज मेष राशि।
1: तो चलिए जी शुरुआत करते हैं कि आज मन किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर दुविधा में रह सकता है। ऐसे में जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से बचें, क्योंकि बाद में यही कदम परेशानी का कारण बन सकता है। आपकी स्वतंत्र सोच आपको अपने मन के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन आज संयम और धैर्य रखना ज्यादा जरूरी है।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज मन किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर दुविधा में आपका भी रह सकता है, सो आपको भी हर डिसीजन सोच समझकर ही करना पड़ेगा। वैसे आर्थिक कमी के कारण लंबे समय से अटका हुआ काम अब गति पकड़ सकता है। जिस काम में आप पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ जुटेंगे, उसमें सफलता मिलने की संभावना मजबूत रहेगी। बस ध्यान भटकने ना दें और अपने लक्ष्य पर पूरी नजर रखें।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज सावधानी और संतुलन बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। वाहन चलाते समय विशेष सतर्क रहें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी अनावश्यक खर्च करा सकती है। परिवार या दोस्तों के साथ अगर कहीं जाने की योजना बना रही है तो दिन खुशनुमा हो सकता है। स्टूडेंट्स को प्रतियोगिता या खेल से जुड़ी गतिविधियों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: बड़ों के साथ किसी विषय को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन उन

0: की बात या सलाह को पूरी तरह नजरअंदाज ना करें। आगे चलकर वही सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। वैसे घर में किसी नए काम या बदलाव की योजना बन सकती है और उसके लिए आर्थिक व्यवस्था पर भी विचार करना बहुत ही जरूरी है। हेल्थ को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि छोटी परेशानी को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।
1: लियो सिंह राशि।
0: आज आपका मन आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकता है। पूजा पाठ, धार्मिक आयोजन या किसी शुभ कार्य में शामिल होने से मन को शांति और संतोष मिलेगा। परिवार के किसी सदस्य की कोई बात आपको भावुक कर सकती है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया जो है देने के बजाय धैर्य से स्थिति को समझें। और व्यापार में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, फिर भी आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। पढ़ाई के साथ किसी प्रशिक्षण, नई जगह सीखने या अनुभव हासिल करने का अवसर मिल सकता है। बीती गलतियों से मिली सीख अब आपके लिए आगे बढ़ने का मजबूत आधार बनेगी। जीवन साथी के करियर से जुड़े कोई अच्छी खबर पूरे परिवार में खुशी ला सकती है। और निवेश में सोच समझकर उठाया गया कदम भविष्य में लाभकारी साबित हो सकता है।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: आज कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात भविष्य की दिशा में नया रास्ता खुल सकती है। यात्रा के योग बन रहे हैं और ये यात्रा आपके लिए उपयोगी या फिर लाभदायक डेफिनेटली साबित हो सकती है। विदेश से जुड़े व्यापार या कामकाज में कोई सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है और आज हर कार्य को योजना बनाकर ही करना बेहतर रहेगा।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आपके लिए कहा जाता है कि दिन सामान्य नजर आ सकता है, लेकिन इसके भीतर कई महत्वपूर्ण संकेत छिपे हुए हैं। किसी बड़े निर्णय के समय आपकी समझदारी और व्यावहारिक सोच आपको सही दिशा दिखाएगी। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मन में नए विचार जन्म ले सकते हैं। कामकाज की भागदौड़ अधिक रहने से थकान महसूस हो सकती है, दैट्स व्हाई बीच बीच में आराम भी काफी जरूरी है।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: आज बीती गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ने का दिन है। कार्यक्षेत्र में कुछ लोग आपके काम में अड़चन डालने की कोशिश कर सकते हैं, दैट्स व्हाई अपनी योजनाओं और गतिविधियों को लेकर सतर्क रहें। किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करना उचित नहीं होगा। और हालांकि घर में धार्मिक या मांगलिक आयोजन की योजना बनने से वातावरण में सकारात्मकता आएगी और परिवार के बीच फिर से खुशी का माहौल बनेगा।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: आज आपकी मेहनत, लगन और समर्पण आपको कार्यक्षेत्र में अलग पहचान दिला सकती है। जीवन साथी की ओर से मिलने वाला कोई सरप्राइज आपके दिन को खास बना सकता है। ऑफिस में आपका प्रदर्शन वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा और इसका लाभ आगे चलकर भी मिल सकता है। और परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें, जरूरत पड़ने पर समय रहते उचित ध्यान दें।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: खर्च आपकी उम्मीद से कुछ अधिक हो सकती है, दैट्स व्हाई बजट पर विशेष नजर रखना जरूरी होगा। नया घर या संपत्ति खरीदने का विचार मन में आ सकता है, लेकिन कोई भी फैसला अपनी आर्थिक क्षमता और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख कर ही लें। परिवार से जुड़े समस्याओं को बातचीत और समझदारी से सुलझाने का प्रयास रहेगा। और यदि किसी बात को लेकर मन परेशान है तो बड़ों की सलाह और मार्गदर्शन आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: फाइनली आपके लिए आज हर काम में सोच समझ कर आगे बढ़ना आपके लिए जरूरी रहेगा। कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी से किया गया काम गलती का कारण बन सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को दोबारा जांच ले। अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें प्लीज, क्योंकि आपकी कोई बात वरिष्ठ अधिकारियों को अच्छी ना लग भी सकती है। परिवार के साथ समय बिताने और कहीं घूमने की योजना बनाने का अवसर मिलेगा और व्यापार से जुड़े लोगों को अपेक्षित लाभ मिलने की संभावना है। सो विशिंग यू ऑल अ बेस्ट ऑफ लक।

0: ऐसा नहीं, जो भी हुआ खूब हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस सोच को आप सही रखिएगा।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: 5:48, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आपको, वेरी गुड मॉर्निंग आपको। धनेश्वर जी बाबू से हैं, सुनीता देव, रेखा, निशा एंड ऑफ कोर्स दावेदोस परिवार, सबको बो को आंश विश कर रही है, तो चलिए सबकी तरफ से आपको थैंक यू। प्रणाम जी, कैसे हैं आप? शुभ नवरात्रि। और इंदिरा, रेशमा, विमल, अंजू, कृषा, केशव, नील, मायशा, तानिया, मोताय ब्लॉज से साथ देने के लिए आपको धन्यवाद। खुबलाल परिवार गिविया जोगांव से साथ दे रहे हैं, आपको भी प्रणाम। एंड ग्रांड यहाँ पर आपके मैसेज अधूरे हैं, गुड मॉर्निंग आप हो प्रिया फ्रॉम बेलवेदे, अगर हो सके तो फिर से आप दोबारा अपने मैसेज भेज सकते हैं। कैसे बदबक विदेशी, कोई भी गाना आप कहते हैं आपके नाम, पूरे परिवार के नाम डेफिनेटली। तो चलिए अपनी मॉर्निंग को गरेगुड बनाते हुए अभी निकल चुके हैं काम पर जाने के लिए। बों को हाश, बस जो विचार हैं आपके, जो थॉट्स हैं, उनको आप सच्चे रखें, अच्छे रखें, और अपने मन में जो पॉजिटिविटी है वो बनाए रखे, अपनी ज़ुबान पर मिठास रखिए, और अपने बिहेवियर, अपने व्यवहार में इंसानियत रखिए, और देखिए लाइफ कितनी खूबसूरत बन जाती है।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musty.
2: 5:56 होने वाले हैं. 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार. हबी किशन को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. किशन सुहाती आपको आपकी वाइफ रति, बेटा लवीश, बेटी ओजस्वी सब परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं. सोनम भोला, बस शांति, अमन और बरसात आ जाए. सबकी यही मांग है, सबकी यही प्रार्थना है. तो बस मन लगाकर आप प्रार्थना करेंगे तो डेफिनेटली माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा. जय माता दी. और गर्मा गर्म चाय के साथ हबीश्वर के नाम काम पर निकल चुके हैं आपके लिए प्रिया मोसलमो सैतौंद्रे पूरे परिवार. एंड वंस अगेन प्लीज बी वेरी सेफ ऑन रोड, ड्राइव केयरफुली एंड अपना ख्याल रखिएगा.

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे करुणा। नमस्कार।
1: नमस्कार नीतु शाह, सभी को नमस्कार। देश में दो बेहद अशांत रातों के बाद पूरे देश में शांति लौटती दिखाई दे रही है। कम से कम आधिकारिक तौर पर कल रात किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं मिली। कर्फ्यू कल रात भी लागू रहा और आज भी रात 8:30 बजे से कल सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दो अन्य इलाकों में भी कर्फ्यू लागू किया गया है, कौचिमिलिते और सैंपियर में। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने माता पिता और बड़े बुजुर्गों से अपील की है कि वे सुनिश्चित करें कि नाबालिग लोग कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। अपराध किए जाने की स्थिति में नाबालिगों की कानूनी उम्र पर गौर करने का एक प्रस्ताव आज मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने उन मर्शनों को धन्यवाद दिया जिन्होंने कर्फ्यू का पालन किया। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील करने वाले लोगों और विभिन्न इलाकों में पुलिस की सहायता करने वालों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और SMF अधिक सख्ती से कार्रवाई करेंगे, लेकिन हर परिस्थिति में विवेक और सूझबूझ के साथ निर्णय लिया जाएगा। मॉरिशस में हुई हिंसा और नशीले पदार्थों की तस्करी के बीच संभावित संबंधों पर जांच की जा रही है। साथ ही ये भी समझने का प्रयास किया जा रहा है कि सामाजिक और आर्थिक समस्याएं किस तरह युवाओं को तस्करी के जाल में धकेल सकती हैं। सुरक्षा स्थिति के कारण स्कूल और शिक्षण संस्थान 15 और 16 अक्टूबर को बंद रहेंगे, लेकिन कैम्ब्रिज की परीक्षाएं देश के सभी परीक्षा केंद्रों पर सामान्य रूप से आयोजित की जाएंगी। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना आज, जो प्रेम, ममता और करुणा तथा मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। विदेश में यूक्रेन के कुछ हथियारों की गति और स्पेस एक्स के स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क से उनके जुड़े रहने की क्षमता पर लगाई गई पाबंदियों के पीछे अमेरिकी सरकार का हाथ हो सकता है, ऐसा एलन मस्क का कहना है। और अब मौसम की रिपोर्ट। मस्कलिंस के दक्षिण में स्थित

0: साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर कुछ तेज़ हवा पाई जा रही हैं। अनुमान है कि मौसम को बादल की तरफ बादल भी आज रात को मौसम को प्रभावित करेंगे। सुबह के वक्त आसमान में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे जो कभी कभार घने हो जाएंगे, खासकर पूर्व दक्षिण एवं ऊंचाइयों पर और जहां तहां बारिश हो सकती है। दोपहर में मौसम सुहाना रहेगा लेकिन रात के दौरान आसमान में बादल घिर आएंगे और पूर्व दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटों पर रह रह कर बारिश हो सकती है। अन्य इलाकों में मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी जिसके झोंके कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। आज के लिए सूर्योदय 5:39 पर, सूर्यास्त होगा 6:11 पर। पूरा बुलेटिन 6:30, तब तक के लिए अनुमति दें, नमस्कार।
1: Your news on MBC Play and MBC.mu.
2: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay ou que vous soyez à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, MBC.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
3: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
4: Radio Musty.

घर से जितने भी लोग निकल रहे हैं, बस एक स्माइल आपके चेहरे पर हो, आपका दिन देखिए कितना खूबसूरत बन जाता है, और एक स्माइल दूसरों के चेहरे पर भी लाए, और घर बनता है अपनों से ना, अपनों के प्यार से। तो काम पर जा रहे हैं, शाम को जब वापस आए तो अपने फैमिली के

0: साथ जो फैमिली टाइम मी टाइम आप सेलिब्रेट कर सकते हो, आप पूजा पाठ कर सकते हो, खाना खाते हो, टीवी रेडियो के साथ सुनते हो, देखते हो. और ये जो फैमिली लाइफ है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अपनी फैमिली को हमेशा प्यार से, सम्मान से संजो कर रखे और सबका प्यार आपको मिलता रहे.
1: बराबर कोई नहीं. यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे. आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: It's 19, all right. Happy birthday, Mama. Bhagwanti person, aaj 75 years ki ho gayi hai. Devika Rajesh Meghna, Adarsh Naina, sab parivar ki taraf se aapko hardik shubhkamnaen. Pranam ji, aapko Priya from Belvedere, aapka grandson Thalesh अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो आशीर्वाद मामा दीप्ति, पापा विनाश, सब परिवार और डियर वंस की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं. तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट गाना आपके नाम भी चलाते हैं. आप है कौन? ललित एंड जीतन फैमिली और श्याम कुमार एंड देवीचंद फैमिली. लगे हाथ विश कर दे हैप्पी बर्थडे टू दीदी बेबी, उनके पति बिटुल, पुपुनंदी, बेटा आश्ले, बहू श्वेता, दोनों पोते हैं आयान शयान फ्रॉम आकाश मनसोक एंड उमाजी फैमिलीज हैं फ्रॉम बॉबू. तो चलिए टू ऑल द फैंस ऑफ कुमार सानू एंड साधना सरगम.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:24 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन. कैसे हैं हेमा और सबके लिए बस प्यार शांति और अच्छा दिल यही तो होना चाहिए. हैप्पी 67th बर्थडे टू मामा मीरा चुलन जो रहती हैं ऑसो जोशे और ये है मामा पथिया बेटी दूतिका बेटी हैं राकेश और रोशन और मामा को बहुत सारा प्यार और सब की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं. और नेक्स्ट गाना गुजार टू होम. यहाँ पर आपके पिक्चर मैसेजेस आ रही है गुड मॉर्निंग जी. तो बस ऐसे ही प्यार बांटते रहें और जो भी हो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव बने रहें. 6:30 बजे के पूरे समाचार बुलेटिन के बाद मनीषमा के साथ आप मॉर्निंग बीट से जुड़ जाएं.

नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। दो अशांत रातों के बाद अब पूरे देश में शांति लौटती दिखाई दे रही, कम से कम आधिकारिक तौर पर कल रात किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं मिली। कर्फ्यू कल रात भी लागू रहा और आज भी रात 8:30 बजे से कल सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दो अन्य इलाकों में भी कर्फ्यू लागू किया गया, कौचमिलिते और सैंपियर। प्रधानमंत्री ने कल इसका ऐलान किया। उन्होंने नाबालिगों द्वारा कर्फ्यू का पालन करने पर जोर दिया। मॉरिशस में हुई हिंसा और नशीले पदार्थों की तस्करी के बीच संभावित संबंधों पर जांच, साथ ही ये भी समझने का प्रयास कि सामाजिक और आर्थिक समस्याएं किस तरह युवाओं को तस्करी के जाल में धकेल सकती हैं। सुरक्षा स्थिति के कारण स्कूल और शिक्षण संस्थान 15 और 16 अक्टूबर को बंद, लेकिन कैम्ब्रिज की परीक्षाएं देश के सभी परीक्षा केंद्रों पर सामान्य रूप से आयोजित की जाएंगी। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना, जो प्रेम ममता और करुणा तथा मातृत्व का प्रतीक, उनकी पूजा करने से भक्तों को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति। विदेश में यूक्रेन के कुछ हथियारों की गति और स्पेस एक्स के स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क से उनके जुड़े रहने की क्षमता पर लगाई गई पाबंदियों के पीछे हो सकता है अमेरिकी सरकार का हाथ। और अब समाचार विस्तार से। दो अशांत रातों के बाद अब पूरे देश में शांति लौटती दिखाई दे रही है, कम से कम आधिकारिक तौर पर कल रात किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं मिली। इसलिए आज सुबह देश के लोग इस उम्मीद के साथ जग रहे हैं कि शायद सबसे मुश्किल दौर अब पीछे छूट चुका है। ये कहना होगा कि सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने द्वीप के कई क्षेत्रों में रात का कर्फ्यू लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। ये कर्फ्यू अब शुक्रवार तक बढ़ा दिया गया है और रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली इन घटनाओं के पीछे दूर से काम करने वाले कुछ गुप्त ताकतों का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। गौरतलब है कि कल इन घटनाओं के सिलसिले में 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक खास मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार ने अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और सख्त करने का निर्णय लिया। अब गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ आतंकवाद की रोकथाम से संबंधित कानून के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।

0: police et KSMF pour bien agir plus fermement envers les fauteurs de troubles. Et si bien servir une méthode plus sévère, mais toujours avec discernement. Il faut qu'il est clair, c'est qui prend la loi dans ce lamé pour subir les conséquences. La police et KSMF pas point aucune hésitation pour servir les moyens nécessaires pour empêcher la situation dégradée. Il faut être clair dans la tête du monde. Nous continuerons vigilants dans nos situations et nous restons confiants le progrès que la police peut faire pour démanteler ce réseau, pour payer les gens vulnérables et les enfants pour faire des ordres dans le pays.
1: ना बालिगों की कानूनी उम्र 14 से घटाकर 12 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। हिंसक घटनाओं में बड़ी संख्या में नाबालिगों की कथित संलिप्तता को देखते हुए सरकार चिल्ड्रंस एक्ट में संशोधन करने पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य उस उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करना है जिस उम्र से नाबालिगों को हिरासत में रखा जा सके और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इस खबर की पुष्टि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने की। उन्होंने लगातार दूसरी रात मॉरिशस के राष्ट्रीय प्रसारण स्टेशन MBC पर देश को संबोधित किया। उनको सुनते हैं।
0: 94 जिमून फिन अरेते लदन 16 मिनट फिर सा गए कौन तू बन जन पे गार्ड सुत ला वी कम सा ला पुलिस इन बिजन लॉग जुट पास कि ला लॉ पा permettre la police retenir les autres. En conséquence, nous pouvons considérer que la loi concernant l'âge légal pour arrêter un mineur. Nous pouvons examiner la loi là vendredi au Conseil des ministres.
1: एक अन्य महत्वपूर्ण कदम के तहत आधी रात से गालन के हिसाब से ईंधन खरीदने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अब ये सुविधा केवल पेशेवर काम करने वाले लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इसके लिए उन्हें पहचान पत्र और अपने काम से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा तथा निर्धारित न्यूनतम मात्रा संबंधी शर्तों का पालन करना होगा। इसके अलावा पुलिस की साइबर अपराध इकाई सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रख रही है। नफरत फैलाने वाले भाषणों और हिंसा के लिए उकसाने वाली पोस्ट प्रकाशित करने वालों के खिलाफ तत्काल जांच शुरू की जाएगी। सोमवार से बुधवार सुबह के बीच पूरे द्वीप में आग की लपटों ने लगभग 11,000 टन गन्ने को नष्ट कर दिया। बेकाबू आग की इन घटनाओं से कटाई के मौसम के बीच पूरा कृषि क्षेत्र भारी नुकसान झेल रहा है। आंकड़े स्थिति की गंभीरता स्पष्ट करते हैं। चंबा एग्रीकल्चर के अनुसार प्रभावित खेतों में चीनी का उत्पादन लगभग आधा रह जाने की आशंका है। सामान्य तौर पर जहां करीब 1,000 टन चीनी का उत्पादन होने की उम्मीद थी, वहीं अब ये घटकर 500 से 800 टन रह सकता है। खेतों में काम करने वाले गन्ना उत्पादकों और मजदूरों के लिए ये नुकसान बेहद गंभीर है। उन्हें जल्दबाजी में जले हुए गन्ने की कटाई करनी पड़ रही है, भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और गैर जिम्मेदाराना कृत्यों के कारण उनका 2026 का गन्ना कटाई और चीनी उत्पादन अभियान प्रभावित हुआ है। और हिंसक घटनाओं में बड़ी नाबालिगों की कथित संलिप्तता को देखते हुए सरकार चिल्ड्रंस एक्ट में संशोधन करने पर विचार कर रही है। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो देश के सभी सरकारी और निजी विद्यालय आज और कल बंद रहेंगे। ये निर्णय प्री प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा। इस कारण ग्रेड 4, ग्रेड 5 और NC की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। हालांकि इस सप्ताह निर्धारित SC और HSC की परीक्षाएं अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। मॉरिशस में हुई हिंसा और तोड़फोड़ ने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है। नशीले पदार्थों की तस्करी के साथ इसके वास्तविक संबंध क्या हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जांच के निष्कर्षों का इंतजार करना होगा और घटनास्थल से जुटाई गई जानकारी की पुष्टि करनी होगी। इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझना है कि इन घटनाओं में शामिल लोगों और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली

0: गिरोहों के बीच क्या संबंध है? बिना जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकाले चिंता का एक और विषय ये है कि सुरक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया जाता दिखाई दे रहा है। इनमें सेफ सिटी के निगरानी कैमरे, पुलिस की गाड़ियां और पुलिस थाने शामिल हैं। जब्त की गई मोटरसाइकिलें का भी इस्तेमाल भी पुलिस की कार्रवाई के दौरान तेजी से आने जाने या भागने के लिए किया जा सकता है। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल नाडक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कुणाल नायक इन संभावित पहलुओं और उन संबंधों पर प्रकाश डाल रहे हैं। उनसे बात की शबनीज उजिया ने, विवरण अशिता रघु का।
1: Bien, pour toi, qui nous fait la différence entre ce qu'on appelle consommateur à la drogue, ce qu'on appelle trafiquant et ce qu'on appelle jockey.
2: ये समझना जरूरी है कि नशे का सेवन करने वालों, ड्रग की तस्करी करने वालों और तथाकथित जॉकी के बीच अंतर क्या है। प्राप्त जानकारियों के मुताबिक जमीनी स्तर पर जो गतिविधियां सामने आ रही हैं, उनसे ये संकेत मिलता है कि इन तमाम अव्यवस्थाओं के पीछे ड्रग तस्करों के लिए काम करने वाले ये जॉकी हो सकते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि के लिए जांच के निष्कर्षों का इंतजार करना होगा, ताकि ड्रग के कारोबार से जुड़े वास्तविक नेटवर्क और उसके काम करने के तरीके को बेहतर ढंग से समझा जा सके। दूसरी ओर, अगर हम सुरक्षा से जुड़ी बुनियादी ढांचों के बारे में बात करें, तो सेफ सिटी परियोजना के तहत निगरानी कैमरों को निशाना बनाया गया है तथा पुलिस वाहनों और पुलिस स्टेशनों पर भी हमले किए गए हैं। इसके अलावा जब्त की गई मोटरसाइकिलों को भी दोबारा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। हम जानते हैं कि कई बार पुलिस जब ड्रग के खिलाफ कार्रवाई और छापेमारी करने जाती है तो इन मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल भी किया जाता है,
0: लेकिन जिन संबंधों की पुष्टि अभी बाकी है उनसे आगे एक और सवाल उठता है। नशीले पदार्थों की तस्करी लगातार क्यों बढ़ रही है? पिछले कुछ महीनों में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कई कार्रवाई अभियान चलाए गए, लेकिन कुणाल नायक के अनुसार समस्या के मूल कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है। तस्कर सामाजिक असमानता, विकास की कमी और आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर ऐसे युवाओं को अपने जाल में फंसा सकते हैं जिन्हें उचित मार्गदर्शन और सहारे की कमी होती है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ युवा नशीले पदार्थों की तस्करी के जाल में फंस जाते हैं, जिसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। सुनते हैं नाडक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल नायक को एक बार फिर से।
1: Nous aussi, nous avons compris que dans les derniers mois, ils n'ont
2: हमें ये भी समझने की जरूरत है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान ड्रग के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई और छापेमारी की गई है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या हाल में जो कुछ हुआ है वह पुलिस बल और मौजूदा कानूनी व्यवस्था के खिलाफ किसी तरह की प्रतिक्रिया है? क्या ये कार्रवाई और सख्ती के जवाब में सामने आ रहा है? जब हम ड्रग की तस्करी की बात करते हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि इसका मौजूदा हालात पर क्या असर पड़ रहा है। तस्कर सामाजिक असमानता और विकास से जुड़ी कमियों का फायदा उठा रहे हैं। वे एक समानांतर अर्थव्यवस्था चला रहे हैं जिस पर उनका नियंत्रण है। इस व्यवस्था के जरिए वे कभी कभी लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने जाल में उन्हें फंसा देते हैं। नतीजन कुछ लोग ड्रग तस्करों के खिलाफ काम करने वाले तथाकथित जॉकी बन जाते हैं और इस तरह समाज में अव्यवस्था और अशांति को बढ़ावा मिलता है।
0: जैसा कि पहले हमने बताया था, 15 अक्टूबर और शुक्रवार 16 अक्टूबर को सभी प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के साथ साथ तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों और उच्च शिक्षा संस्थानों को बंद रखा जाएगा। इसमें केवल एक अपवाद है, स्कूल सर्टिफिकेट और हाई स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षाएं, कैम्ब्रिज की परीक्षाएं देश की सभी परीक्षा केंद्रों पर सामान्य रूप से आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं के संचालन और निगरानी के लिए जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है केवल उन्हीं को परीक्षा केंद्रों तक जाना होगा। शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने शैली निर्बन से इस बारे में जानकारी दी। उनको सुनते हैं, विवरण अशिता रघु का।
3: Les enfants qui sont inscrits pour les examens du school certificate et higher school certificate vont prendre.
2: जिन बच्चों को गुरुवार और शुक्रवार को स्कूल सर्टिफिकेट SC, हायर स्कूल सर्टिफिकेट HSC परीक्षाओं में भाग लेना है, वे परीक्षा के

0: इंद्र में जाएंगी तथा दूसरी ओर प्री प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी, वोकेशनल स्कूल जैसे MITD, ITET, साइंस स्कूल और MI, ये सब बंद रहेंगे। पर जो कॉलेज एग्जामिनेशन सेंटर्स यानी परीक्षा केंद्र हैं, वे सब कार्यरत रहेंगे। इन परीक्षा केंद्रों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की बात यदि करें, तो जहां परीक्षा केंद्र हैं, वहां हमेशा की तरह जिन लोगों की आवश्यकता है वे वहां पर जाएंगे कैम्ब्रिज परीक्षाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तथा अपनी सहायता प्रदान करने के लिए। गौरतलब है कि जिन टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जरूरत नहीं है, उन्हें रिपोर्ट नहीं करनी होगी।
1: तो प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी संस्थान बंद। अपनी किताबों के जरिए लोगों को जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने के लिए प्रेरित करने वाले मशहूर लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता श्री खेरा इन दिनों मॉरिशस में हैं। कल उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। श्री खेरा इस शुक्रवार को एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें मुश्किल हालात का सामना करने और अपने क्षमताओं को पहचान कर आगे बढ़ने पर चर्चा की जाएगी। सहानों की रिपोर्ट।
2: लेखक, वक्ता और लीडरशिप के विशेषज्ञ शिव खेरा व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता पर आधारित अपनी पुस्तक यू कैन विन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ शिष्टाचार के नाते भेंट की। इस अंतर्राष्ट्रीय वक्ता के अनुसार युवा देश के विकास के लिए एक अहम ताकत हैं। उन्होंने शिक्षा, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के महत्व पर जोर दिया ताकि भविष्य के नेताओं को तैयार किया जा सके।
3: There was a study done on 1,000 companies and it was found that 60% of these companies fired Gen Z within first few months of hiring. Communication skills, attitude, integrity, taking for granted, team spirit. People who have succeeded and they have sustained success and maintained goodwill, they've lived by this one principle, and that is, I shall always give more than what I get. To my family, to my organization, to my company, to my customer, and to my country. You live by this principle, you become the competition, you have no competition.
2: Shiv Khera is Shukravar, 16 October ko Lapihog mein Mauritius Institute of Directors ki pehel par aayojit ek sammelan ka sanchalan karenge, जिसकी थीम होगी टर्निंग सेटबैक्स इनटू कमबैक्स, द विनर माइंडसेट यानी असफलताओं को वापसी की सफलता में बदलना, विजेता की सोच।
1: करदाताओं यानी कि टैक्स पेयरों के लिए डेडलाइन अब बेहद करीब आ गई है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अब केवल कुछ ही घंटे बाकी हैं। MOD द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि गुरुवार 15 अक्टूबर की आधी रात है। 13 अक्टूबर की सुबह तक प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 241,202 आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। हालांकि अभी भी हजारों करदाताओं ने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। करदाता कुछ ही क्लिक में MOD की आधिकारिक वेबसाइट MOD.MU के माध्यम से अपना रिटर्न कर सकते हैं। ऐसे में आज शाम अंतिम समय में रिटर्न दाखिल करने के लिए टैक्सपेयरों से तेजी दिखाने की अपील की जा रही है। यदि किसी करदाता को सहायता की आवश्यकता है तो MOD की हेल्पलाइन 207600 पर संपर्क किया जा सकता है। शारदीय नवरात्र की पावन वेला जारी है। आज पांचवें दिन स्कंदा माता की पूजा आराधना की जा रही है। स्कंदा माता को प्रेम, ममता, करुणा और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा करने से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। विशेष रिपोर्ट अशिता रघु के साथ, जिसने त्रिमूर्ति सोसाइटी बेटो काठबोन और काली मां मंदिर बासा रोड काठबोन का दौरा किया अपनी टीम के साथ।
0: ये परंपरा पिछले 47 वर्षों से चली आ रही है। बैतूल की त्रिमूर्ति सोसाइटी इस वर्ष भी माँ दुर्गा भवानी के सम्मान में 9 दिवसीय श्री श्री दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है। यह आयोजन

0: बंगाली परंपरा पर आधारित है जिसमें माँ दुर्गा का स्वागत परिवार में लौटने वाली बेटी के रूप में किया जाता है। इस भव्य आयोजन की तैयारियां जून महीने से ही शुरू हो गई थी।
1: हम लोग बंगाल मतलब कलकत्ता के हैं, वेस्ट बंगाल, और हम लोग कलकत्ता में हमारे बड़े पूर्वज लोग आए थे, उसी परंपरा से ये दुर्गा पूजा चल रहा है। हमारी दुर्गा पूजा पूरा बंगाली विधि से, और दूसरी बात ये कि ये दुर्गा पूजा तंत्र शक्ति से और तंत्र विधियों से होता है। तंत्र विधि से मतलब ये कि हमारी जो देवी हैं दुर्गा जो हैं, क्या वो महाकाली क्या वो दुर्गा जी हैं, वो सब तंत्र शक्ति से ही होता है। और इस शारद नवरात्रि में दुर्गा जी के हम लोग पूजा चंडी रूप में मानते हैं, मतलब कि चंडिका के रूप में। ऐसे दुर्गा माँ को सभी लोग माँ कहते हैं, लेकिन हमारे बंगाली परिवार में दुर्गा जी बेटी बन करके पिता के घर आते हैं। अभी वो हमारे साथ रहेंगे दसवीं तक, फिर दसवीं के बाद वो अपने पति के घर में जाएंगे। तो जाने से पहले जितनी भी सेवा हो सके विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं।

0: इस वार्षिक धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मां दुर्गा की आराधना के दौरान भक्तों में विशेष उत्साह और भक्ति देखने को मिली।
1: क्योंकि छुट्टी से लेकर आज तक हम माँ की सेवा करते हैं और जैसे कि आपको पता है वो माँ के रूप नहीं आती, वो बेटी के रूप आती है, तो हम उसकी स्वागत धूमधाम से करते हैं और हर साल यही वेट करते हैं कि वो आए और हम उसकी सेवा करें।
0: सायंकालीन कार्यक्रम में पारंपरिक बंगाली ढुली नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहा। युवा कलाकारों ने ढाक नामक पारंपरिक ढोल की गूंज के बीच सुगंधित धूप से भरे पात्रों के साथ ये भक्तिमय नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं बासेरोड स्थित काली माँ मंदिर में भी नवरात्रि का विशेष आयोजन किया गया। पिछले 20 वर्षों से मंदिर में श्रद्धालु पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। रात में आयोजित विशेष कथा में बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया और माँ दुर्गा के नौ रूपों की लीलाओं का श्रवण किया। मंदिर का उद्देश्य युवा पीढ़ी तक हिंदू संस्कृति और परंपराओं को पहुँचाना है। इसके साथ ही माँ दुर्गा की मूर्ति का पर्यावरण के अनुकूल निर्माण, प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण का संदेश भी देता है।
2: जो युवा जनरेशन बा ओकर मजा एनकरेज करना जैसा कि हमने के मजा आवे के संगे हर मूर्ति बनाए के हमने के गांव के मजा के रोशन करे के मंदिर के हमने के लास्ट जाता नौजवान जो अब उठता छाग मजा ई परंपरा स्वीप करे के।
0: दोस्थान आस्था की दो अलग अलग अभिव्यक्तियां, लेकिन उद्देश्य एक ही है, नवरात्रि की परंपराओं को जीवंत रखना और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना।

और विदेशी स्तर पर यूक्रेन के कुछ हथियारों की गति और स्पेस एक्स के स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क से उनके जुड़े रहने की क्षमता पर लगाई गई पाबंदियों के पीछे अमेरिकी सरकार का हाथ हो सकता है। ऐसा जो है एलन मस्क का कहना है, स्टारलिंक नेटवर्क यूक्रेन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। इसकी मदद से कीव रूसी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का मार्गदर्शन करता है और अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा भी करता है। मंगलवार रात यूक्रेन ने कहा कि गति पर अचानक लगाई गई नई सीमाओं के कारण युद्ध क्षेत्र में उसके सैन्य अभियान प्रभावित हो रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के एक सलाहकार ने कहा कि उनका मानना है कि ये पाबंदियां महज संयोग नहीं हैं। उन्होंने इन्हें कीव और वाशिंगटन के बीच हाल में बढ़े तनाव से जुड़ा हुआ बताया। के अंत में मौसम की रिपोर्ट। मस्करिंस के दक्षिण में स्थित एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके

पर तेज हवा पाई जा रही है। अनुमान है सुबह के वक्त आसमान में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और पूर्व दक्षिण तथा सेंट्रल प्लाटू पर जहां तहां बारिश हो सकती है। दोपहर में मौसम सुहाना रहेगा लेकिन देर रात को पूर्व दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिराएंगे और जहां तहां बारिश हो सकती है। अन्य इलाकों में मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 16 से 18 अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22 अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी जिसके झोंके कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं लेकिन धीरे धीरे शाम के वक्त सुधार आएगा, स्थिति में सुधार आएगा। आज सूर्योदय हुआ 5:39 पर, सूर्यास्त होगा 6:11 पर।

0: खबरों के अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। दुआ शांत रातों के बाद अब पूरे देश में शांति लौटती दिखाई दे रही। कम से कम आधिकारिक तौर पर कल रात किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं मिली। कर्फ्यू कल रात भी लागू रहा और आज भी रात 8:30 बजे से कल सुबह 5 बजे तक दो अन्य इलाकों में भी कर्फ्यू लागू किया गया। कौचिमिलिते और सैंपियर प्रधानमंत्री ने कल इसका किया ऐलान। उन्होंने नाबालिगों द्वारा कर्फ्यू का पालन किए जाने पर दिया जोर। मॉरिशस में हुई हिंसा और नशीले पदार्थों की तस्करी के बीच संभावित संबंधों पर जांच, साथ ही ये भी समझने का प्रयास कि सामाजिक और आर्थिक समस्याएं किस तरह युवाओं को तस्करी के जाल में ढकेल सकती। सुरक्षा स्थिति के कारण स्कूल और शिक्षण संस्थान 15 और 16 अक्टूबर को बंद, लेकिन कैम्ब्रिज की परीक्षाएं देश के सभी परीक्षा केंद्रों पर सामान्य रूप से आयोजित की जाएंगी। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना, जो प्रेम ममता करुणा और मातृत्व का प्रतीक। विदेश में यूक्रेन के कुछ हथियारों की गति और स्पेस एक्स के स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क से उनके जुड़े रहने की क्षमता पर लगाई गई पाबंदियों के पीछे अमेरिकी सरकार का हाथ हो सकता, ऐसा एलन मस्क का कहना रहा। 6:56 हो चुके, बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है सिर्फ के सहयोग से। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on MBC Play and MBC.mu.
0: Côte Royale, canton Belle de Pamplemousse, 79 की 79-year-old कुमारी जयवंती मनबुदना जो सतवंती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान रॉयल रोड कांटों बेल डो पॉम्पलेमोस से उठाकर दाह संस्कार के लिए थ्रियोले की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। सोल्फेरिनो नंबर 4 वाकुआ में 82 साल की 82-year-old श्रीमती बिंदुमती सिपरसाद, पैदाशी नाम रामनानन सिंह, जो मिला से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे जगेसर लेकराज सिंह के मकान सोल्फेरिनो नंबर 4 वाकुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए फिनिक्स की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। धनी लेन सैंपल में 40 साल की 40-year-old श्रीमती हेमा देवी दोमा, पैदाइशी नाम जुटन, जो अनुष्का से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10:30 बजे इनके पति अनूप डोमा के मकान धनी लेन सैंपल से उठाकर दाह संस्कार के लिए आले भुगियाओं की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। ला शापेल ऑडोंट एलियंसन्स बोबासे में 83 साल की 83-year-old श्रीमती पवित्र देवी बोहरन,

पैरा श्रीनाम बेचू किसुनयाल जो सविता से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल शुक्रवार को दिन के 11 बजे लाशापेल औदाओं तेलियन संस बोबासे से उठाकर दाह संस्कार के लिए कोडेगाउत की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टुमोरो एट 1 PM। ओटवायाल रिश्ते में 49 साल की 49-year-old श्रीमती शालिनी बिहारी, श्रीमती शालिनी बिहारी पैदाइश नाम रामचंद जो मुन से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी माँ माला माथुर रामचंद के मकान ओटवायाल रिश्ते से उठाकर दाह संस्कार के लिए वालिद फैत के स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टूडे एट 2 PM। काहुलेन मोटाइलोंग में 68 साल के 68-year-old श्री प्रेमचंद लोलमान जो किशोर से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकी पत्नी श्रीमती अनीता लोलमान के मकान काहुलेन मोटाइलोंग से उठाकर दाह संस्कार के लिए खैवकर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 1 PM। रामनारायण गली कोटेज में 77 साल की 77-year-old श्रीमती सुकृति ठिकोई जो जयंती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे बिसुंदत धूरा के मकान रामनारायण गली कोटेज से उठाकर दाह संस्कार के लिए कोटेज की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 1 PM। वेस्टर्न बाउंडेरी बोबासेन रोड काटोमोड में 48 साल के 48-year-old श्री कैलाश गोखुल जो महाज से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके मकान वेस्टर्न बाउंडेरी बासन रोड काथोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी पालमा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुडे एट 10 AM। और अविनी गनाजिन सिते सैन लुई पाई में 39 साल की 39-year-old श्रीमती मारी अनुष्का ओगुस्तिन पैदाइशी नाम लादूस की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं आज दिन के 2 बजे इनके पिता विक्टोर लादूस के मकान अविनी ग्रेनाजिन सिते सैन लुई पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पाई की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। शोकग्रस्त सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।

0: मॉर्निंग सभी को सुबह के 7:07 हुए हैं
1: मॉर्निंग बीट अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो जेम्स
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स
0: सुबह के 7:02 हुए हैं 3 मिनट होने को है तू मिला तो है ना इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग टेकन फ्रॉम द मूवी दीदी प्यार दे चलिए स्वागत है आप सभी का इन योर मॉर्निंग बीट

0: देर से ही सही मगर तू मिला मिला तो है ना जी। आपका साथ तो मिलता ही रहता है हमेशा हर रोज, हम उसको ग्रांटेड नहीं लेते, हम हमेशा उसको सराहते हैं एंड वी आर ग्रेटफुल दैट वी आर यू आर विद अस। हमेशा जुड़े रहते हैं आप, हमेशा साथ निभाते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। सुबह के 7:08 हुए हैं, अब जुड़े आरएमडी रेडियो मस्ती के साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देन वी विल बी बैक। कबीर सिंह मूवी से लिया गया ये अगला गाना आप सभी के नाम।
1: RM2 Radio Musti
2: RKG Classic Pyoghi wishes all devotees a pious Govindan. RKG Classic Pyoghi, accompanying you in your prayers since 1932. An Indian Classic Pyoghi, imported and distributed by RR Rapid Services Limited.
1: RM2 Radio Musti

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: एगो यात्रा के मतलब है नवा अनुभव, अपन संगे वक्त बिताई के और हर पल के मजा ले के और कबो कबो एगो बेहतरीन बिजनेस अवसर के फाइनलाइज करे के भी। उही खातिर कोनो भी अनजान परेशानी के इस सब खास पल के मजा खराब नहीं होई दी है। सिकुम के स्पेशली डिजाइन ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान पर भरोसा करे जिकर से अपन यात्रा बेफिक्र होके सकबा करे। यात्रा के पूरा मजा ली है सिकुम तोहर ध्यान रखी। हमनी से संपर्क करे या हमनी से भेंट करे खातिर sikkim.mu पर जाई है। नियम आ शर्त लागू बाटे। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
3: सिकुम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Good morning, Apko. Good morning, RM2 listeners. The latest from the sports world. Premier League leader Manchester City, जो कुछ दिन पहले Liverpool को 3-0 से हराकर फरफरा रहा था, उसको जमीन पर उतारा Paris Saint-Germain ने. City के घर में घुसकर Paris Saint-Germain ने 4-2 की जीत हासिल की. फर्स्ट हाफ में 3-0 डुए डेम्बेले और वितिन्हा स्कोर कर पाए. फिर सेकंड हाफ में अर्लिंग अलोन का डबल. इससे पहले अक्लूशे के ने Paris Saint-Germain का चौथा गोल स्कोर किया. चैंपियंस लीग के चैंपियन Paris Saint-Germain की ओर से मास्टर क्लास परफॉर्मेंस. लिवरपूल और अस्टन विला जीत पाए, वो भी 6-6 गोल स्कोर करके. LAS के 3, लिवरपूल 6, बाकोला का हैट्रिक, आहोयो, फ्रिंकोंग और कुमास भी स्कोर कर पाए. फर्स्ट हाफ में स्कोर 3-0 था लिवरपूल के हक में. अस्टन विला की ओर से बमबारी, 6-0 से फेनेरबाचे को तहस नहस कर डाला. इस धुलाई में जैक्सन और बाकले की ओर से 2-2 गोल. मानजाम्बी और अब्राहम भी स्कोर कर पाए. इस सीजन अपने मैदान में ये विला की पहली जीत है. रियल मैड्रिड के लिए कमबैक विन, रेमोंटादा 3-1 से रियल मैड्रिड की हार हो रही थी AS रोमा के मैदान में, पर मैच के अंतिम 10 मिनटों में 3 गोल स्कोर करके रियल मैड्रिड कीमती जीत छीन लेता है. किलियान एम्बापे, कॉलोस एसपी, एंड्रिच और रुडिगर स्कोरर रहे. अन्य मैचों में फेयेनोर्ड 3, कुमो 2, बोडो ग्लिंट 1, बोरुशा डॉर्टमुंड 0, बेटिस 3, पोर्टो 2, शाख्तार डोनेत्स्क 3, एके एथेंस 1, स्लोवान 0, स्टुटगार्ट 3. दो मैचों के बाद Paris Saint-Germain, Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting, Arsenal, Real Madrid और Betis के पास मैक्सिमम 6 अंक है. Manchester United 13वें पोजीशन पर है, 13th पोजीशन, उसके पास है 3 अंक. अगले 20 अक्टूबर को इस एक धमाकेदार टकराव होगा, Paris Saint-Germain versus Barcelona. उसी दिन लिवरपूल विलारियल, मैनचेस्टर सिटी एके एथेंस, मैनचेस्टर यूनाइटेड जाएगा कुमो के मैदान में. अस्टन विला का मुकाबला होगा विकिंग टीम से. ये अगले हफ्ते के मैच होंगे. आज यूईएफए यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग के मैच खेले जाएंगे. इनमें लियो क्रिस्टल पैलेस का स्वागत करेगा, साल्सबर्ग एसी मिलान, फिर टोरेंस टीम संडरलैंड के खिलाफ, बोर्नमुथ स्टुमक्राज, बेनफिका सेल्टिक, सेल्टा विगो यूवेंटुस, मार्सेई ओलंपियाकोस. कॉन्फ्रेंस लीग के मैचों में सीएसके मोनाको, फिर ब्राइटन खेलेगा कोमो ज़ालगिरिस टीम के खिलाफ. इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में कल नोविच को हराया साउथम्पटन ने 1-0 से. पोर्टसमुथ 3, शेफील्ड यूनाइटेड 2, क्वींस पार्क रेंजर्स 4, डर्बी 1 और वेस्ट हैम यूनाइटेड ने लिंकन को 6-0 से पछाड़ा. इंडियन सुपर लीग में पंजाब की जीत 2-1 से ओडिशा पर. मैनचेस्टर यूनाइटेड के खराब परफॉर्मेंस से लिजांड्रो मार्टिनेज ने गुस्से में आकर क्लब के मैनेजमेंट और खासकर टेक्निकल डायरेक्टर पर टूट पड़ा. एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन में मार्टिनेज ने कहा कि टीम को मजबूत बनाना चाहिए था, अच्छे खिलाड़ियों को खरीदना था, खासकर जब कोई इस साल कई साल बाद यूनाइटेड चैंपियंस लीग में खेल रहा है. डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल जेसन विलकॉक्स पर ऐसी बातें करना शायद उसके दिन अब गिने जा रहे हैं. टेनिस, शंघाई मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे जुडा, कास्पर रूड, मेदवेदेव और पोल. आज क्वार्टर फाइनल में अलेक्जेंडर वेरेव का मुकाबला बेमिनो से होगा, रिया खेलेगा फोकिना के खिलाफ. इधर वुहान ओपन में इगा श्वातेक, मुचोवा, ओस्तापेंको, आनली, वितोलिना, फर्नांडेज, पाउलिनी आदि जीत पाए. सबालेंका को हराया आनली ने. और क्रिकेट में टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच T20 सीरीज का फैसला आखिरी मैच में होगा. कल चौथे मैच में वेस्ट इंडीज ने भारतीय टीम को 24 रनों से हराया. श्राई होप की ओर से सेंचुरी और किमो पोल 5 विकेट ले पाया. अब पांचवा निर्णायक मैच परसों शनिवार को बेंगलुरु में खेला जाएगा। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, यूरोपियन चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी को हराया पेरिस सेंट जर्मेन ने, लिवरपूल की जीत, एस्टन विला की भी जीत। आज यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग और यूरोपा लीग की बारी है, देखेंगे आज क्या होगा और अगले सप्ताह भी चैंपियंस लीग के मैच होंगे, इन पर जानकारियां देते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।
2: थैंक यू सो मच अरविंद जी फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। अभी के लिए हम बढ़ते हैं विद द म्यूजिकल सिलेक्शन और थोड़ी देर में हम बढ़ेंगे विद दिस हैप्पी बर्थडे सरप्राइज। यू नो हाउ इट गोज, एवरी डे आज से शुरू हो चुका है हमारा जब सरप्राइज है। सो कल हमने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो अभी आप रजिस्टर कर सकते हैं ऑन 5499124 पर। ऑल द बेस्ट विद योर फुल नेम एंड एड्रेस।
0: This magazine was brought to you by Quality Déco, the floor expert.
3: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलिए मॉर्निंग में हमको मौका मिल गया है टू पुट अ स्माइल ऑन समबडीज फेस, यहाँ पर जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं. और ये है नंबर टू पार्टिसिपेट एवरी डे फॉर योर बर्थडे सरप्राइज 5499124 पर. अभी सीधा बात करते हैं विद मनीषा. गुड मॉर्निंग टू यू मनीषा जी.
3: हेलो, गुड मॉर्निंग,
2: हाउ आर यू?
3: I'm fine, thank you. How are you?
2: मैं तो ठीक हूँ, मैं तो खुश हूँ. आप कैसे हो? आपका मूड कैसा है सुबह सुबह?
3: मैं तो आज बहुत खुश हूँ.
2: ऊपर से आपको ये सरप्राइज मिल गया फ्रॉम RM2 रेडियो मस्ती, दिल से एंड द फुल टीम ऑफ रेडियो मस्ती विशेस यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, ऑल द बेस्ट फॉर योर डे एंड फॉर योर बर्थडे आल्सो. डू यू हैव एनी डेडिकेशन?
3: आई लाइक टू मेक डेडिकेशन टू माय डॉटर तक्षवी, इट्स अ बर्थडे टुडे एज वेल.
2: ओके, मां बेटी दोनों का जन्मदिन, क्या बात है. वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे गोज आउट टू यू
3: एंड तक्षवी.
2: तक्षवी, और सारा कुछ कैसा चल रहा है? तक्षवी स्कूल जाती है?
3: हाँ, वो आज 8 साल की हो गई है, वो ग्रेड 3 में है.
2: ओके जी, ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस अगेन फॉर योर डे. मनीषा जी, क्या बता सकते हैं, आप रहती कहाँ पर हो?
3: मैं अभी काम पर जा रही हूँ.
2: आप कहाँ से निकल कर जा रही हो, कहाँ रहती
3: है? अच्छा,
2: क्या बात है. वैसे लंबा ये जो सफर है हो चुका है आपके लिए शुरू, तो ऑल द बेस्ट. आप गाड़ी से जा रही हो फिर बस से?
3: एम्बेसी को छोड़ चुकी हूँ.
2: आप?
3: आई वाज जस्ट इन फ्रंट ऑफ एम्बेसी.
2: ओके, देखो जी, वेव करो. Hi, bye. Have a wonderful day. Yes. Bye bye ji. Thank you so much. Happy birthday.
3: Thank you. Bye bye.

सब लोग के नमस्ते। भोजपुरी समाचार में आप लोग के स्वागत करत हैं। जा सबसे अगते स्थानीय खबर, दुगो बेहद अशांत रात के बाद अब देश में शांति लौटते प्रतीत होता। काल रात के कुनो बड़ा घटना की सूचना नहीं बाती। सरकार स्थिति के नियंत्रित करे खातिर टापू के कई गो क्षेत्र में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करे के फैसला लेने बाते। इकौच मिलते और सैपिया पर भी कर्फ्यू लागू रही। ई कर्फ्यू अब सुख तक बढ़ा डेवल गलबाते रात के 8:30 से फजर के 5 तक। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुला माता पिता और बड़ा बुजुर्ग लोग से अपील करलन कि वो लोग सुनिश्चित करियन जा कि नाबालिग लोग कर्फ्यू के नियम के पालन करियन जा। अपराध करे के स्थिति में नाबालिग के कानूनी उम्र पर गौर करे खातिर एगो प्रस्ताव इसुक के मंत्रिमंडल के बैठक में पेश करल जाए। प्रधानमंत्री ओ मॉरिसन लोग के धन्यवाद दिलन जे लोग कर्फ्यू के पालन करलन जा। वो शांति बनाए रखे के अपील करे होला लोगन और कई गो इलाका में पुलिस के सहायता करे होला के भी सराहना करलन। वो बोलन कि आवश्यकता पड़ला पर पुलिस और SMF जस्टिस सख्ती से कार्रवाई करियन जा। बकिर हर परिस्थिति में विवेक और सोच बूझ संगे निर्णय लेके चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था के बिगाड़े हुला घटना के पीछे दूर से काम करे हुला कुछ गुप्त ताकत के हाथ होई के दावा करल जाबा। गौरतलब है कि काल ई घटना के सिलसिला में 93 जना के गिरफ्तार करल गल। एगो खास मंत्रिमंडल के बैठक के बाद सरकार अशांति फैलाई हुला के खिलाफ कार्रवाई और सख्त करे के निर्णय लेलक। अब गिरफ्तार करल गए लोगन के खिलाफ आतंकवाद के रोकथाम से संबंधित कानून के तहत भी मुकदमा चलावल जा सकी। हिंसक घटना में बड़ी संख्या में नाबालिग के कथित संलिप्तता के देख के सरकार चिल्ड्रंस एक्ट में संशोधन करे पर भी विचार करता। इस प्रस्ताव के उद्देश्य उम्र के 14 से घटा के 12 करे के है, जिन उम्र से नाबालिग के हिरासत में रखल जा सकी और उलो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करल जा सकी। इस खबर के पुष्टि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम करलन। एगो दूसर महत्वपूर्ण कदम के तहत आधा रात से गालन के हिसाब से ईंधन खरीदे पर सख्त प्रतिबंध लगा देवल गल बा। अब इस सुविधा खाली पेशेवर काम करे होला लोगन खातिर उपलब्ध रही। एकर खातिर ओकरा पहचान पत्र और अपन काम से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे के परी और निर्धारित न्यूनतम मात्रा संबंधी शर्त के पालन करे के रही। एकर अलावा पुलिस के साइबर अपराध इकाई सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखता। नफरत फैलाई होला भाषण या हिंसा खातिर उकसाए होला पोस्ट प्रकाशित करे होला लोगन के खिलाफ तत्काल जांच शुरू करल जाए। शिक्षा क्षेत्र की बात करब जा तो देश के सब सरकारी और निजी विद्यालय आज और काल बन बाते। उच्च शिक्षा संस्थान भी ये निर्णय प्री प्राइमरी से लेके माध्यमिक स्तर तक के सब संस्थान पर लागू हुई। इस कारण ग्रेड 4, ग्रेड 5 और NCE के परीक्षा स्थगित कर देवल गल बा। हालांकि इस सप्ताह निर्धारित SC और HSC की परीक्षा अपन तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित करल जात बाते। और ये सोमवार

0: के फजीरे बीच बल्कि सोमवार से बुधवार के बीच पूरा द्वीप में आग के लपटा लगभग 11,000 टन गन्ना के नष्ट कर देने बाते बेकाबू आग के घटना से कटाई के मौसम के बीच पूरा कृषि क्षेत्र के भारी नुकसान हो बाते आंकड़ा स्थिति के गंभीरता के स्पष्ट करता। चांबव एग्रीकल्चर के अनुसार प्रभावित खेत में चीनी के उत्पादन लगभग आधा हो जाए की आशंका बाते सामान्य तौर पर जहां करीब 1,000 टन चीनी के उत्पादन हो की उम्मीद रहल हो जब ई घट के लगभग 500 से 800 टन रह सके। खेत में काम करे हुला गन्ना उत्पादक और मजदूर खातिर नुकसान बेहद गंभीर है। वो लोग जल्दबाजी में जरल गन्ना की कटाई के करे के परी भारी आर्थिक नुकसान के सामना करे के परल जाता और गैर जिम्मेदाराना कृत्य के कारण उ लोग के 2026 के गन्ना कटाई और चीनी उत्पादन अभियान प्रभावित होल बाती। मॉरिशस में होल हिंसा और तोड़ फोड़ एगो अहम सवाल खड़ा कर देले बाती नशीला पदार्थ के तस्करी संगे एकर वास्तविक संबंध कौन सी है। इस सवाल के जवाब जाने खाते जांच के निष्कर्ष के इंतजार करे के चाहिए और घटना स्थल से जुटावल गल जानकारी की पुष्टि करे के पड़ी। एकर उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझे के है कि ई घटना में शामिल लोगन और मादक पदार्थ की तस्करी करे हुला गिरोह के बीच संबंध है कुंची हा। बिना जल्दबाजी में कोनो निष्कर्ष निकाले बकिर जुन संबंध के पुष्टि अभी बाकी बातें कर से आगे एगोर सवाल उठेला नशीला पदार्थ के तस्करी लगातार काहे बढ़ता। गल कुछ महीना में नशीला पदार्थ के तस्करी के खिलाफ कई गो कार्रवाई अभियान चलावल गल कुणाल नायक अनुसार जिनकी नाडक के सीओ हवन समस्या के मूल कारण पर भी विचार करे के चाहिए। तस्कर सामाजिक असमानता विकास के कमी और आर्थिक तंगी के फायदा उठा के ऐसा युवा के अपने जाल में फंसाए सकी जिलों के उचित मार्गदर्शन और सहारा की कमी बातें एकर परिणाम स्वरूप कुछ युवा नशीला पदार्थ के तस्करी के जाल में फंस जालन जाकर असर पूरा समाज पर पड़ेला। और ये जैसे कि बोलनी जा 15 अक्टूबर शुक्रवार 16 अक्टूबर के सप्री प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल संगे संगे तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र और उच्च शिक्षा संस्थान के बंद रखल जाता। एक में खाली एगो अपवाद एससी और एचएससी के परीक्षा कैम्ब्रिज के परीक्षा देश के सब परीक्षा केंद्र पर सामान्य रूप से आयोजित करल जाता। ये परीक्षा के संचालन और निगरानी खातिर जे कर्मचारी के ड्यूटी पर लगावल गलबा खाली उही लोग के परीक्षा केंद्र तक जाए के चाहिए। टैक्स पेयर खातिर अंतिम डेडलाइन अब बेहद करीब आगल बाते। आयकर रिटर्न दाखिल कराए खातिर अब खाली कुछ ही घंटा शेष बाते। एमओडी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि गुरुवार 15 अक्टूबर के आधा रात की है। अपन किताब के जरिए लोगन के जीवन में आगे बढ़े के और सफलता पाए खातिर प्रेरित करे होला मशहूर लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शिव खेरा आजकल मॉरिशस में हवन। कालू प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम संगे मुलाकात करलन। शिव खेरा ईसुक के एगो सम्मेलन के संबोधित करियन जेकर में मुश्किल हालात के सामना करे के और अपन क्षमता के पहचान के आगे बढ़े पर चर्चा करल जाए। शारदीय नवरात्र के पावन वेला जारी बाते। आज 5वां दिन स्कंद माता की पूजा आराधना करल जाबा। स्कंद माता के प्रेम ममता करुणा और मातृत्व के प्रतीक मानल जाला। उनकर पूजा करला से भक्तन के सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हुएला। एक संगे भोजपुरी समाचार समाप्त भल। आप लोग के ध्यान खातिर बहुत ही धन्यवाद।
1: On MBC Play and MBC.mu.
2: A good beat for your morning show. Come on. Morning Beat, RM2.
3: Radio.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं।

बालक तू माता शेरावाली 8:14 हुए हैं। आज माँ स्कंद माता को हम याद कर रहे हैं। माँ स्कंद माता को ममता करुणा प्रेम और वत्सल्य का प्रतीक माना जाता है। उनकी गोद में भगवान कार्तिक विराजमान है। माँ का यह दिव्य रूप हमें सिखाता है यही है कि प्रेम और दया में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। वैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इन द सेकंड आवर ऑफ योर मॉर्निंग बीट। अभी के लिए पता करते हैं मौसम का हाल। मस्कनिंस के दक्षिण में स्थित एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर कुछ तेज हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि बादल भी आज रात को मौसम को प्रभावित करेंगे। सुबह के वक्त आसमान में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे, जो कभी कभार घने हो जाएंगे, खासकर पूर्व दक्षिण एवं

0: ऊंचाइयों पर और जहां तहां बारिश हो सकती है। दोपहर में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन रात के दौरान आसमान में बादल घेर आएंगे और पूर्व दक्षिण तथा सेंट्रल प्रांतों पर रह रह कर बारिश हो सकती है। अन्य इलाकों में मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्रांतों पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। आज के लिए सूर्योदय 5:39 पर, सूर्यास्त होगा 6:11 पर।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti. RM2, Radio Musti.

के उड़ाने की प्रेम कहानी का ये गाना स्पेशली गोज़ आउट टू ऑल दोज़ जो कि हमारे साथ वैसे धैर्य के साथ दिल में पॉजिटिविटी के साथ और नवरात्र में ये जो दिन है उनका ये जो रात्रि है उनको पार्टिसिपेट कर रहे हैं. वैसे अर्ली अर्ली कोई बात नहीं, 8 बजे से पहले ही पूजा ख़त्म हो रही है, लेकिन अभी हम बढ़ेंगे विद ब्यूटिफुल गुड न्यूज़. आई गेट योर स्पा वाउचर वर्थ 750 rupees फ्रॉम मित्सो वेलनेस स्पा एंड एन एंट्री टिकट टू द स्पेक्टेकुलर ग्रैंड दिवाली नाइट 2026 को. और आपको सिर्फ बताना होगा कि वहाँ पर जहाँ पर हम कह रहे हैं कि 14th of November लग रहा है एट वैलेंटिना हॉल वैलेंटिना मॉल में, और आपको बताना है कि वहाँ पर कंसर्ट में कौन से मेल सिंगर आने वाले हैं. फीमेल तो हमने पूछ लिया था कल, उनका नाम है अनीता भट्ट. तो आपको सिर्फ मेल सिंगर का नाम बताना है कि अमोंग द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स वहाँ पर कौन कौन आने वाले हैं अनीता भट्ट के साथ साथ, और कौन से मेल कलाकार गाने वाले हैं ऑन द स्टेज फॉर द दिवाली नाइट 2026 जो लगने वाला है एट वैलेंटिना मॉल. आपको सिर्फ यही बताना है द मेल सिंगर का नाम ना.

0: on 549-9194 पर विद फुल नेम एंड एड्रेस. अभी के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक, देन विल बी बैक.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: T'as une pause get soleil pe cousé un vendredi tantôt. Good time. Get un soleil pe cousé avec un bon jingle. Finger licking good time.
3: With KFC.

अमेजिंग सॉन्ग. आई होप यू हैव ए वंडरफुल स्टार्ट ऑफ द मॉर्निंग. यहाँ पर हमने पूछा था सवाल कि 14th ऑफ नवंबर 2026 को लग रहा है ग्रैंड दिवाली नाइट एट वेलेंटिना हॉल इन वेलेंटिना मॉल. जी हाँ, आपको बताना था कि अनीता भट्ट के साथ साथ कौन है जो गाने वाले हैं साथ में एज द मेल सिंगर, एंड उनका नाम है विनीत सिंह. वाड़े हम मॉरिशस ने कैंपेन यू फॉर द दिवाली नाइट. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. यहाँ पर हमारे साथ हैं विजयता फॉर द वाउचर. उनका नाम है येशा बाबा जी. कंग्रेचुलेशंस टू यू येशा. जी हाँ, यू वन द स्पा वाउचर वर्थ 750 rupees फ्रॉम मित्सु वेलनेस स्पा एंड एन एंट्री टिकट फॉर द स्पेक्टेकुलर ग्रैंड दिवाली नाइट 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय द लग्जरी डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद MBCRM2 रेडियो मस्ती. दिस मेलोडियस इवनिंग ऑफ म्यूजिक एंड कल्चर विल टेक प्लेस ऑन द 14th of November 2026 एट वेलेंटिना हॉल फीचरिंग द अनबीटेबल परफॉर्मेंसेज ऑफ विनीत सिंह एंड अनीता भट्ट, विच इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय वेलेंटिना.

0: 8:28 हुए हैं. अगेन थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड प्लेइंग विद RM2 रेडियो. मस्ती सुबह सुबह हम लेकर आ रहे हैं इतने सारे गिफ्ट्स यहाँ पर. गेट रेडी टू सेलिब्रेट द मैजिक ऑफ डांडिया दिस सैटरडे 17th of October. एक्सपीरियंस एन इवनिंग ऑफ वाइब्रेंट कलर्स, फेस्टिव बीट्स एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स. आपको बताना है कि जो डांडिया है ना, द मैजिक ऑफ डांडिया, ये कहाँ पर लगने वाला है. हम रोज कह रहे हैं, बस एड्रेस बताइए कि किस मॉल पे होने वाला है. जी हाँ, You tell me the place of the magic of Dandiya और जीतिए ये gift voucher worth 1,500 rupees offered to you, of course by RM2 Radio Masti. कहते हैं कि जहाँ हर ताल में है जश्न और हर कदम में है रंग, so celebrate the Dandiya night with us right now. बताइए the right answer कहाँ पर लगने वाला है ये Dandiya night on 549-9194 पर. All the best with your full name and address. अभी के लिए बढ़ते हैं sports recap की ओर. Here we go.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
0: जी हाँ, हर किसी ने अगर मिस किया है द स्पोर्ट्स अपडेट्स, एक रिकैप हो जाता है आपके लिए. अच्छा, 8:30 शार्प ऑन RM2 रेडियो मस्ती. हियर वी गो. गुड मॉर्निंग टू यू अगेन अरविंद जी.
3: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. प्रीमियर लीग लीडर मैनचेस्टर सिटी, जो कुछ दिन पहले लिवरपूल को 3-0 से हराकर फरफरा रहा था, उसको जमीन पर उतारा पारी सेंट जर्मेन ने. सिटी के घर में घुसकर पारी सेंट जर्मेन ने 4-2 की जीत हासिल

0: हासिल की। फर्स्ट हाफ में 3-0 डुवे डेम्बेले और वितिन्हा स्कोर कर पाए। फिर सेकंड हाफ में अर्लिंग अलोन का डबल, इससे पहले अक्यूशे के ने पेरिस सेंट जर्मेन का चौथा गोल स्कोर किया। चैंपियंस लीग के चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन की ओर से मास्टर क्लास परफॉर्मेंस। लिवरपूल और एस्टन विला जीत पाए, वो भी 6-6 गोल स्कोर करके। LAS के 3, लिवरपूल 6, बाकोला का हैट्रिक, आहोयो, फ्रिंपोंग और कुमास भी स्कोर कर पाए। फर्स्ट हाफ में स्कोर 3-0 था लिवरपूल के हक में। एस्टन विला की ओर से बमबारी, 6-0 से फेनेरबाचे को तहस नहस कर डाला। इस धुलाई में जैक्सन और बाकले की ओर से 2-2 गोल, मानजाम्बी और अब्राहम भी स्कोर कर पाए। इस सीजन अपने मैदान में ये विला की पहली जीत है। रियल मैड्रिड के लिए कमबैक विन, रेमोंटादा 3-1 से रियल मैड्रिड की हार हो रही थी एएस रोमा के मैदान में, पर मैच के अंतिम 10 मिनटों में 3 गोल स्कोर करके रियल मैड्रिड कीमती जीत छीन लेता है। किलियान एम्बापे, कॉलोस एसपी, एंड्रिच और रुडिगर स्कोरर रहे। अन्य मैचों में फेयेनोर्ड 3, कुमू 2, बोडोग्लिंट 1, बोरुशिया डॉर्टमुंड 0, बेटिस 3, पोर्टो 2, शाख्तार डोनेत्स्क 3, एके एथेंस 1, स्लोवान 0, स्टुटगार्ट 3। दो मैचों के बाद पेरिस सेंट जर्मेन, बार्सिलोना, एस्टन विला, स्टुटगार्ट, लिवरपूल, स्पोर्टिंग, आर्सेनल, रियल मैड्रिड और बेटिस के पास मैक्सिमम 6 अंक है। मैनचेस्टर यूनाइटेड 13वें पोजीशन पर है, 13th पोजीशन, उसके पास है 3 अंक। अगले 20 अक्टूबर को इस एक धमाकेदार टकराव होगा, पेरिस सेंट जर्मेन वर्सेस बार्सिलोना। उसी दिन लिवरपूल, विलारियल, मैनचेस्टर सिटी एके एथेंस, मैनचेस्टर यूनाइटेड जाएगा कुमू के मैदान में। एस्टन विला का मुकाबला होगा विकिंग टीम से। ये अगले हफ्ते के मैच होंगे। आज यूईएफए यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग के मैच खेले जाएंगे। इनमें लियो क्रिस्टल पैलेस का स्वागत करेगा, साल्सबर्ग एसी मिलान, फिर टोरेंस टीम संडरलैंड के खिलाफ, बोर्नमुथ, स्टुमक्राज, बेनफिका, सेल्टिक, सेल्टा विगो, यूवेंटुस, मार्सेय, ओलंपियाकोस। कॉन्फ्रेंस लीग के मैचों में सीएसके मोनाको, फिर ब्राइटन खेलेगा कोमो ज़ालगिरिस टीम के खिलाफ। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में कल नोविच को हराया साउथम्पटन ने 1-0 से, पोर्टसमुथ 3, शेफील्ड यूनाइटेड 2, क्वींस पार्क रेंजर्स 4, डर्बी 1 और वेस्ट हैम यूनाइटेड ने लिंकन को 6-0 से पछाड़ा। इंडियन सुपर लीग में पंजाब की जीत 2-1 से ओडिशा पर। मैनचेस्टर यूनाइटेड के खराब परफॉर्मेंस से लिजांड्रो मार्टिनेज ने गुस्से में आकर क्लब के मैनेजमेंट और खासकर टेक्निकल डायरेक्टर पर टूट पड़ा। एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन में मार्टिनेज ने कहा कि टीम को मजबूत बनाना चाहिए था, अच्छे खिलाड़ियों को खरीदना था, खासकर जब कोई इस साल कई साल बाद यूनाइटेड चैंपियंस लीग में खेल रहा है। डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल जेसन विलकॉक्स पर ऐसी बातें करना शायद उसके दिन अब गिने जा रहे हैं। टेनिस, शंघाई मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे जुडा, कास्पर रूड, मेदवेदेव और पोल। आज क्वार्टर फाइनल में अलेक्जेंडर वेरेव का मुकाबला डेमिनो से होगा, रिया खेलेगा फोकिना के खिलाफ। इधर वुहान ओपन में इगा श्वातेक, मुचोवा, ओस्तापेंको, आनली, विटोलिना, फर्नांडेज, पाउलिनी आदि जीत पाए। सबालेंका को हराया आनली ने। और क्रिकेट में टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच T20 सीरीज का फैसला आखिरी मैच में होगा। कल चौथे मैच में वेस्ट इंडीज ने भारतीय टीम को 24 रनों से हराया। श्राई होप की ओर से सेंचुरी और किमो पोल 5 विकेट ले पाया। अब पांचवा निर्णायक मैच परसों शनिवार को बेंगलुरु में खेला जाएगा। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। यूरोपियन चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी को हराया पेरिस सेंट जर्मेन ने। लिवरपूल की जीत, एस्टन विला की भी जीत। आज यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग और यूरोपा लीग की बारी है। देखेंगे आज क्या होगा और अगले सप्ताह भी चैंपियंस लीग के मैच होंगे, इन पर जानकारियां देते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।
1: Well, thank you so much for the update, Sarvin ji. Have a good day to you.
2: RM2 Radio Masti.

0: इस सवाल का कोई जवाब दो। वैसे यहाँ पर है हमारे साथ हमारे लकी विनर, जहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किए हैं एंड द राइट आंसर के साथ वो बन गई है विजय टा फॉर द 1500 रुपीज ऑफ टू बाय सेंटर पॉइंट। जी हमने पूछा था सवाल की मैजिक ऑफ डांडिया विल बी टेकिंग प्लेस वेयर, आपको सिर्फ बताना था द वेन्यू, जी हाँ कहाँ पर, एंड द राइट आंसर इज सेंटर पॉइंट ऑफ कोर्स। दिस सैटरडे 17th ऑफ अक्टूबर एक्सपीरियंस एन evening of vibrant colors, festive beats and unforgettable moments at Center Point Triano as from 6 p.m. So you took part in our radio game, thank you so much, in this wonderful morning. So you got the chance to win 1500 rupees offered to you. This is voucher offered to you by Center Point. जी हाँ हम कहना चाहते हैं जहाँ तार हैं जहाँ हर ताल में है जश्न। अच्छा इस रिथमिक सेंटेंस को ना एक गेम में बदल देते हैं। अनदर चांस फॉर यू टू विन 1500 रुपीस वर्थ वाउचर फॉर टू बाय सेंटर पॉइंट। मैं बताने वाली हूँ कल ये जो रिथम, ओके रिथमिक सेंटेंस है आपको पूरा करना पड़ेगा, सुनिए ध्यान से। जहां हर ताल में है जश्न और हर कदम में है, इज इट ए संग या फिर बी रंग, बताइएगा। जहां हर ताल में है जश्न और हर कदम में है, इज इट ए संग या फिर बी रंग, और बन सकते हैं आप फिर से ये विजेता। पार्टिसिपेट विद द फुल नेम एंड एड्रेस एंड द राइट आंसर वेटिंग फॉर यू। अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक एंड थैंक यू सो मच गोज आउट टू रीना भगीरथ जो बन गए हैं विजेता, थैंक यू। एक छोटा सा ब्रेक देन विल बी बैक, ओके जी, स्टे वेल कनेक्टेड ऑन RM2 रेडियो मस्ती।
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Moments that matter with Seekum. फ्लाइट में देरी होल, सूटकेस बिलागल, कैंसिलेशन, मेडिकल इमरजेंसी, सफर में ऐसा अनेक अनिश्चित स्थिति भी आ सकेला। यही खातिर जरूरी है कि आप अपन जरूरत और उम्मीद के मुताबिक सही ट्रैवल इंश्योरेंस के चुनिया। सिकम के ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान के संगे आप बेफिक्र होके सफर के मजा ले सकबा। ई प्लान पहले से ही कई गो मॉरिशन के चुनला पर उनकरा सफर में रक्षा करता। तोहरा तोहर पॉलिसी के शर्त के मुताबिक 2400 घंटा सप्ताह के सातों दिन मेडिकल सहायता मिलेला। साथ ही मेडिकल खर्चा, यात्रा कैंसिलेशन या इंटरप्शन, फ्लाइट में देरी, आज सूटकेस मिले में देरी या बिलाई के स्थिति में सुरक्षा। काहे की एगो सुखद सफर डिपार्चर से बहुत आगे शुरू हो जाला। उहे खातिर कुछो भी किस्मत पर नहीं छोड़िया, आज जिंदगी के उस सब खास पल के पूरा लुफ्त उठाइया।

0: जानकारी खातिर हमनी के एगो प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाइ ह। शर्त आर नियम लागू है। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
1: It was moments that matter with Sikkim. RM2
2: Radio Musti

0: RM2, Radio Musty.
1: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
2: Milo, libère ta force.
1: Petite, on me disait ce que je devais faire. Mais moi, je voulais juste faire du sport.
2: Milo, libère ta force.
1: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
2: Milo, libère ta force.
1: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe, je me relève et je vais de l'avant. C'est pourquoi j'aime le sport.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
1: Nestlé. Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
2: Milo, libère ta force. Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé. Good food, good life.
4: What is 6 minutes past 8, ladies and gentlemen? Here we go for the quote of the day. Mahatma Gandhi ji ne ek baat kahi thi. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. जी हाँ, उनके यह शब्द हमें बहुत ही खूबसूरत सीख देते हैं कि जिंदगी का असली सुख सिर्फ अपने लिए जीना में नहीं, वैसे बल्कि दूसरों के काम में भी आना चाहिए. आपको नवरात्रि के 5वें दिन जब हम माँ स्कंदा माता की आराधना करते हैं, तो आइए हम उनके ममतामयी स्वरूप से प्रेरणा लेते हैं. किसी की मदद करना, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना और जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े रहना भी एक तरफ सेवा ही तो है. याद रखिए, इंसान की असली पहचान उनके पास कितना कुछ है या नहीं इसमें नजर नहीं आता, इससे नहीं बल्कि वो दूसरों के लिए कितना कुछ कर पाए इसमें मान्यता है. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. विल बी बैक विद आवर सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स.
1: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
2: Milo, libère ta force. Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: Give me some sunshine's beautiful song for you, ladies and gentlemen. जाने का समय हो चला है. वैसे congratulations again goes out to our next winner, जिन्होंने जीता है 1,500 rupees का ये gift voucher. And the right rhythm for the sentences, जहाँ हर ताल में है जश्न और हर कदम में है रंग. This is the right answer. And thank you so much for participating. आप हैं करिश्मा कुंजल. Congratulations. Have a wonderful day ahead.
1: RM2 Radio Masti.

नमस्कार अनुराधा, सभी को नमस्कार। दो अशांत रातों के बाद अब देश में शांति लौटती प्रतीत हो रही है। कल रात किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं है। सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए टापू के कई क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने का अहम फैसला लिया है। ये कर्फ्यू अब शुक्रवार तक बढ़ा दिया गया। रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक जो कौचे में लेते और सैपिया में भी लागू होगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने माता पिता और बड़े बुजुर्गों से अपील की है कि वे ये सुनिश्चित करें कि नाबालिग लोग कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। अपराध किए जाने की स्थिति में नाबालिगों की कानूनी उम्र पर गौर करने का एक प्रस्ताव है। इस शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इसे पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने उन मॉरिशनों को धन्यवाद दिया जिन्होंने कर्फ्यू का पालन किया। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील करने वाले लोगों और विभिन्न इलाकों में पुलिस की सहायता करने वालों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और SMF अधिक सख्ती से कार्रवाई करेंगे, लेकिन हर परिस्थिति में विवेक और सोचबूझ के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए। तो आपको बताते चलिए कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। द्वीप के कई क्षेत्रों में रात का कर्फ्यू लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 93 लोगों की गिरफ्तारी की गई। सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली घटनाओं के पीछे दूर से काम करने वाली कुछ गुप्त ताकतों का हाथ होने का दावा किया।

साथ होने का दावा किया। एमबीसी पर इसका उल्लेख किया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम के तहत आधी रात से गालन के हिसाब से ईंधन खरीदने पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब ये सुविधा केवल पेशेवर काम करने वाले लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इसके लिए पहचान पत्र और अपने काम से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा तथा निर्धारित न्यूनतम मात्रा संबंधी शर्तों का पालन करना होगा। इसके अलावा पुलिस की साइबर अपराध इकाई सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रख रही है। नफरत फैलाने वाले भाषणों या हिंसा के लिए उकसाने वाली पोस्ट प्रकाशित करने वालों के खिलाफ तत्काल जांच शुरू की जाएगी। आगजनी से लगभग 11,000 टन गन्ना नष्ट हुए हैं। चीनी उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। 15 अक्टूबर और शुक्रवार 16 अक्टूबर को सभी प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के साथ साथ तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों और उच्च शिक्षा संस्थान बंद रखा जाएगा। इसमें केवल एक अपवाद है, एससी और एचईसी की परीक्षाएं। कैम्ब्रिज की परीक्षाएं देश के सभी परीक्षा केंद्रों पर सामान्य रूप से आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं के संचालन और निगरानी के लिए जिन कर्मचारियों को काम पर लगाया गया है केवल उन्हीं को परीक्षा केंद्रों तक जाना चाहिए। अपनी किताबों के जरिए लोगों के जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने के लिए प्रेरित करने वाले मशहूर लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शिव खेरा इन दिनों मॉरिशस में हैं। कल उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। शिव खेरा इस शुक्रवार को एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे जिसमें मुश्किल हालात का सामना करने और अपनी क्षमताओं को पहचान कर आगे बढ़ने पर चर्चा की जाएगी। आयकर बल्कि करदाताओं यानी कि टैक्सपेयरों के लिए अंतिम डेडलाइन अब बेहद करीब आ गई है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अब केवल कुछ ही घंटे शेष हैं। एमओडी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि गुरुवार 15 अक्टूबर की आधी रात है। ऐसे में आज शाम अंतिम समय में रिटर्न दाखिल करने के लिए करदाताओं से तेजी दिखाने की मांग की जाती है। यदि किसी करदाता को सहायता की आवश्यकता हो तो एमओडी की हेल्पलाइन 2076000 पर संपर्क किया जा सकता है। शारदीय नवरात्र की पावन वेला जो है जारी है। आज पांचवें दिन को स्कंद माता की पूजा की जा रही है। स्कंद माता को प्रेम, ममता, करुणा और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा करने से भक्तों को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। विदेशी स्तर पर पश्चिम एशिया की सुलगती आग अब समंदर की गहराइयों तक पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि होर्मुज में पिछले 24 घंटों के दौरान अलग अलग मिसाइल हमलों में 2 बड़े जहाज समंदर में डूब गए हैं। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और वैश्विक व्यापार जगत में हड़कंप मच गया है। तो इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद, नमस्कार। Your news on NBC Play and NBC.mu. Radio Masti. सुनते रहो।

हाय गुड मॉर्निंग आप सभी को 9:12 मिनट हेलो वेलकम रेडियो मस्ती पर मैं विकास आपका स्वागत करता हूं मस्त मॉर्निंग शो ब्यूटीफुल डे ब्यूटीफुल मॉर्निंग और ऐसे में जितने भी घर पर हैं बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं जितने जाके एग्जाम ले रहे हैं ऑल द बेस्ट अरे ले लो टेस्ट

0: RM2 Radio Musti.
1: चलो म्यूजिक चलता जाएगा और यू गॉटा गिव योर बेस्ट. वैसे होता है ना, जब टफ सिचुएशंस होती हैं तो इंसान का बेस्ट निकल कर आता है. कोशिश ये कीजिए, चाहे कोई भी हालात हो, बस आपकी शक्ति, आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ हो. हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग. थोड़ी देर में आपकी राशि विकास आपके साथ, लाइफस्टाइल के मंत्रास हो या फिर जिंदगी के जीने का सही सलीका करते हैं.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: जय माता दी।
1: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti.
0: चलिए सवाल के लिए जाने दे सितारों की चाल और शुरुआत करते हैं वह।
2: एरीज मेष राशि।
0: मेष राशि आज का माइक चेक करो 1 2 3। भाई आपकी जो एनर्जी है फुल चार्ज होने वाली है। ऑफिस में कोई नया आइडिया है तो उसे बॉस के सामने कॉन्फिडेंटली पिच कीजिए। बस याद रखें कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच एक पतली सी लाइन होती है, फाइन लाइन। लव लाइफ में पार्टनर की बात को सुनिए, सिर्फ कमेंट्री मत चलाइए। जरूरी है आज का मंत्र, जोश को रखो हाई पर सोच को रखो टाइट। मेहनत से चमकेगा आपका फ्यूचर, होगा ब्राइट।
2: टॉरस वृषभ राशि।
0: आज पेशेंस आपका सीक्रेट वेपन हो सकता है। कोई काम धीरे धीरे चल रहा है तो टेंशन नहीं, क्योंकि क्वालिटी मैटर्स, स्पीड नहीं। फाइनेंशियल मैटर्स में प्रैक्टिकल रहिए, और सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सोचें कि जल्दी से काम हो जाए, शॉर्टकट ले लें। नो, नॉट रियली। रिलेशनशिप में एक छोटा सा थॉटफुल जेस्चर किसी का मूड बना सकता है। आज का मंत्र, धीरे धीरे बढ़ाओ अपनी चाल, सब्र और मेहनत से होगा कमाल।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
0: मिथुन राशि आज का जो दिन है अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल्स पर बात बन सकती है, इट कुड बी अ गेम चेंजर। नेटवर्किंग हो या फिर मीटिंग्स हो, इंटरव्यू या किसी पुराने दोस्त को कॉल करना हो, सबके लिए अच्छा दिन हो सकता है। लेकिन एक साथ 10 काम पकड़ लेना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आज का मंत्र, भाई बातों में रखो प्यार, सोच में रखो क्लैरिटी, खुल जाएगी सक्सेस की नई गैलरी।
2: कैंसर कर्क राशि।
0: कर्क राशि, भाई ऐसा है कि दिल की जरूर सुनो लेकिन दिमाग को भी मीटिंग में बुला लो। हाँ, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दो अलग दरवाजे के बाहर। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम या किसी अपने से दिल की बात करना मूड को फ्रेश कर सकता है। काम पर इमोशनल रिएक्शन देने से पहले 2 मिनट रुकना, सोच समझ कर। किसी कलीग की बात को पर्सनली तो बिल्कुल ही मत लेना। आज का मंत्र, अपनों को दो प्यार, खुशियों की करो बौछार।
2: लियो सिंह राशि।
0: लियो, जो भी काम मिले उसको समय रहते कर दियो। वैसे सिंह राशि वाले, आपके लिए आज की रिपोर्ट, भाई अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी दिखाने का मौका आपको मिल सकता है। प्रेजेंटेशन हो, सोशल मीडिया कंटेंट या फिर ऑफिस में लीडरशिप, अपना बेस्ट दीजिए। बस हर कॉन्वर्सेशन को कॉम्पिटिशन मत बना देना। आज का मंत्र, कॉन्फिडेंस से भरो हर उड़ान, अपनी मेहनत से बनाओ अपनी पहचान।
2: वर्गो कन्या राशि।
0: कन्या राशि, आज आपकी प्लानिंग स्किल्स का फुल टेस्ट हो सकता है। पेंडिंग ईमेल्स, पेपर वर्क या फिर टू डू लिस्ट एक एक करके निपटाते जाओ, लेकिन परफेक्शन के चक्कर में काम को एंडलेस रिविजन में मत डालिए। हर चीज परफेक्ट नहीं, प्रोग्रेस भी जरूरी है। आज का मंत्र, छोटे कदम इरादे महान, प्लानिंग से लिखो जीत की नई दास्तान।
2: लीब्रा तुला राशि।
0: आज डिप्लोमेसी आपकी सुपर पावर हो सकती है। किसी डिसएग्रीमेंट को शांति से सॉल्व करने का मौका मिले तो इनिशिएटिव जरूर लीजिएगा। पार्टनरशिप और टीम वर्क में आपकी बात को असर मिल सकता है, बस उसमें कन्विक्शन डालना जरूरी है। लेकिन सबको खुश करते करते अपनी प्रेफरेंस को म्यूट मत कर देना। आज का मंत्र, दिल में रखो प्यार, फासलों में रखो विचार, क्यों है बैलेंस से खुलेंगे खुशियों के द्वार।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: भाई अपने फोकस पावर को सही जगह लगाइए। कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क या रिसर्च प्रोजेक्ट है तो डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखिए। आप किसी प्रॉब्लम को नए एंगल से देख सकते हैं और सोल्यूशन भी वहीं कहीं है। रिलेशनशिप में माइंड रीडिंग की कोशिश मत कीजिए, सामने वाले से क्लियरली बात करना बेटर ऑप्शन। आज का मंत्र, इरादों को रखो मजबूत, हौसलों को रखो बुलंद, मेहनत से बदलो अपनी दुनिया का रंग।
2: सजिटेरियस धनुराशि।
0: भाई आज अपने कंफर्ट जोन को एक फ्रेंडली हेलो बोलने का दिन है। कुछ नया सीखने का, ट्रैवल प्लान बनाने का या किसी इंटरेस्टिंग आइडिया पर काम शुरू करने का एक्साइटिंग दिन हो सकता है। आपकी जो एंथुसियाज्म है वो दूसरों को मोटिवेट कर सकती है। बस बड़ा प्रॉमिस करने से पहले अपना स्केड्यूल जरूर चेक कर लेना। आज का मंत्र, सपनों को दो उड़ान, हौसलों को दो जान, निकल पड़ो और बनाओ अपनी नई पहचान।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: भाई आज डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपके बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं। करियर में एक प्रैक्टिकल स्टेप आपको लॉन्ग टर्म गोल के करीब ले जा सकता है। टीम के साथ एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखिए और अपनी अचीवमेंट्स को कॉन्फिडेंटली शेयर कीजिए। भाई पैसा सेव करने का प्लान है तो बढ़िया है, थोड़ा सा रिव्यू कीजिए, ऐसा ना

0: क्या आप प्लानिंग के बिना ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो? आज का मंत्रा, मेहनत को बनाओ अपना हथियार, एक दिन जरूर होगा सपना साकार।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: भैया दिमाग में कोई हटके आइडिया है तो उसे नोटबुक में जरूर लिख लेना, नहीं कभी कभी काम कर जाता है। टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी, प्रोजेक्ट्स और ग्रुप डिस्कशंस में आपकी यूनिक पर्सपेक्टिव, वो जो आपकी सोच है ना, वो काम आ सकती है। भाई अनकन्वेंशनल आइडिया को तुरंत एग्जीक्यूट करना जरूरी नहीं, थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, फिजिबिलिटी चेक कीजिए, फिर देखिए। आज का मंत्र, नए आइडियाज को दो उड़ान, इनोवेशन से बनाओ अपनी पहचान।
1: पाइसेस, मीन राशि।
0: आज इमेजिनेशन और इंट्यूशन को क्रिएटिव डायरेक्शन देने का दिन आ गया है। म्यूजिक हो, आर्ट, राइटिंग या फिर पढ़ाई में दिल लगाना बढ़िया होगा। किसी दोस्त को आपकी एडवाइस या सपोर्ट की जरूरत है तो उनकी बात जरूर सुनिए, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते अपने गोल्स को पॉज पर मत डाल देना। भाई फाइनेंशियल मैटर्स में फैक्ट चेक कीजिए और फिर सिर्फ गट फीलिंग पर डिपेंड मत करिए। आज का मंत्र, दिल में रखो अरमान, कदमों में रखो जान, सच कर दिखाओ अपना हर एक ख्वाब, कर दो उसको महान।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

बराबर कहते हैं प्लीज एक प्यासा गाना फॉर लवली वाइफ वरना, उनका बर्थडे था कल, बहुत सारे प्यार उनको एंड लवली हस्बैंड सचिन, साथ में कहते हैं मिस्टी की तरफ से प्यारी सी छोटी सी, और साथ में मदर लॉ पूरी फैमिली की तरफ से बहुत सारा प्यार, एंजॉय योरसेल्फ। वहीं पर रागिनी हमारे साथ दे रही है, उन्होंने कहा कि जय माता दी। वैसे पूजा प्रार्थना चल रही है और यही चाहते हैं कि चारों तरफ सुख हो, शांति हो, सबके पास खुशियां ही खुशियां हो, कितनी सर बात है ना।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऐसे मौसम के अंदर, और वहीं पर कभी भी लगता ना कि वो मोटिवेशन और होनी चाहिए।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एंड कैसे हैं आप सब, ठीक ठाक? वैसे कभी कभी होता ना चीजें कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। जैसे होता ना कि कंप्यूटर में वो टैब्स खुले होते हैं बहुत सारे, 1, 2, 3 पता नहीं कितने टैब्स खुले होते हैं, कहीं दिमाग में ऐसा तो नहीं ये भी वो भी, अरे कहाँ सॉल्व करवाओगे सभी। ऑनेस्टली हम सब के साथ ऐसा होता नहीं, ऑफिस की डेडलाइन हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, पेंडिंग बिल्स, या फिर किसी का अनआंसर्ड मैसेज, और ऊपर से वो एक काम जो हम कल से करने की सोच रहे थे, तो कभी कभी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसको देखकर समझ लेते हैं या फिर माइंड बना लेते हैं कि ओह हो इतनी बड़ी प्रॉब्लम। आज का मंत्र यही है, पॉज, प्रायोरिटाइज एंड प्रोसीड। जब लाइफ ओवरवेलमिंग लगे ना, तो हर प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। पहले पॉज, 2 मिनट सोच के, समझ कर, थोड़ा ब्रीद इन करके सोचो कि क्या है, ऑलराइट, एंड फाइनली प्रोसीड करो। एक छोटा सा स्टेप लीजिए जो प्रायोरिटी बेस्ड लिस्ट है उसके हिसाब से। रिमेंबर करो कि आपको पूरी स्टेयरकेस एक साथ क्लाइंब नहीं करनी, एक स्टेप लेकर ही तो चलते ना, एक एक करके। ये तो काफी कमाल की बात है। और हाँ, हर मैसेज को इंस्टेंटली रिप्लाई करना

0: भाई ऐसे होता है कि हर प्रॉब्लम का इंस्टेंटली सलूशन भी तो नहीं मिलता, एक एक करके मैसेज को रिप्लाई कर देना। हाँ तो ऐसे ही हर इंसान को इंस्टेंट एक्सप्लेनेशन देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। थोड़ा सोचो, समझो, गेट टू द रूट ऑफ द इशू और उसके बाद निकल लो सॉल्व करने के लिए। अभी के लिए लेट्स गेट ऑन विद दिस वन, न्यू ऑन द ब्लॉक जुबिन नौटियाल।
1: वेलकम टू आरएम2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो।

0: It's 10 a.m. चलते सीधा समाचारों की ओर। स्टूडियो में करुणा जी, उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को नमस्कार। दो शांत रातों के बाद अब देश में शांति लौटती प्रतीत हो रही है। कल रात किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं है। सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए टापू के कई क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने का अहम फैसला लिया। प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि ये कर्फ्यू अब शुक्रवार तक बढ़ा दिया गया है। रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक जो कौचिमिलिते और सैपिया पर भी लागू होगा।

सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली इन घटनाओं के पीछे कुछ गुप्त ताकतों का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। घटनाओं के सिलसिले में 93 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। मंत्रिमंडल के खास बैठक के बाद कल सरकार ने अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और भी सख्त करने का निर्णय लिया। हिंसक घटनाओं में बड़ी संख्या में नाबालिगों की कथित संलिप्तता को देखते हुए सरकार चिल्ड्रंस एक्ट में संशोधन करने पर विचार कर रही है। उद्देश्य उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करना है, जिस उम्र से नाबालिगों को हिरासत में रखा जा सके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम के तहत आधी रात से गालन के हिसाब से ईंधन खरीदने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अब ये सुविधा केवल पेशेवर लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इसके लिए उन्हें पहचान पत्र और अपने काम से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा निर्धारित मात्रा संबंधी शर्तों का पालन करना होगा। पुलिस की साइबर अपराध इकाई सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रख रही है। नफरत फैलाने वाले भाषणों या हिंसा के लिए उकसाने वाली पोस्ट प्रकाशित करने वालों के खिलाफ तत्काल जांच शुरू की जाएगी। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो देश के सभी सरकारी और निजी विद्यालय आज और कल बंद रहेंगे। ये निर्णय प्री प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू हैं। इस बीच एससी और एचएससी की परीक्षाएं निर्धारित अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जा रही हैं। शारदीय नवरात्र की पावन वेला जारी है। आज पांचवें दिन को स्कंदा माता की पूजा की जा रही है। स्कंदा माता को प्रेम ममता और करुणा का प्रतीक माना जाता है। उल्लेखनीय है कि देश के मंदिरों में शाम के समय पूजा की जा रही है, जो कि रात 8 बजे तक चलेंगी। विदेश में पश्चिम एशिया की सुलगती आग अब समंदर की गहराइयों तक पहुंच चुकी। बताया जा रहा है कि होर्मुज़ में पिछले 24 घंटों के दौरान अलग अलग मिसाइल हमलों में 2 बड़े जहाज समंदर में डूब गए हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। मारिजानी रोजबेल में 42 साल के 42-year-old श्री महेश योगेश कुन्नी जो जेगो से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी मां के मकान मारिजानी रोजबेल से उठाकर दाह संस्कार के लिए मारिजानी की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। सोल्फेगिनो नंबर 4 वाकवा में 81 साल की 81-year-old श्रीमती बिंदुमती जगेसर पैदाइशी नाम सिपर सार जो मीला से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे अविनाश जगेसर के मकान सोल्फेगिनो नंबर 4 वाकवा से उठाकर दाह संस्कार के लिए फिनिक्स की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। कैसरल रोड कॉम्बेटो ब्रिटानिया में 75 साल की 75-year-old श्रीमती तारामती बजन पैदाइश नारायण जो प्रेमिला से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे इनके पति जगदीश बजन के मकान कैसरल रोड कॉम्बेटो ब्रिटानिया से उठाकर दाह संस्कार के लिए तायक की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।

0: to Radio Musti.
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
2: La fin l'année des costés, tu ne parais
3: pas cela n'est. En ta

0: और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैट।
1: सिद्धि विनायक शॉप विशेस यू अ शुभ नवरात्रि। मे दुर्गा मां ब्लेस यू ऑल। हर पल को बनाइए खास और यादगार हेरिटेज घी के साथ। 1992 से भरोसे और प्यार के साथ बना हेरिटेज घी आपके लिए लाता है बेहतरीन मक्खन से तैयार किया गया शुद्ध और दानेदार घी। हमारे काओ घी की मनमोहक खुशबू आपकी खीर पूरी जलेबी और लड्डू को दे एकदम घर जैसा स्वाद और हर दिवाली को बना दे खास। प्योर ट्रेडिशन, प्योर अरोमा, प्योर लव। हेरिटेज काओ घी, अ गोल्डन टच ऑफ गुडनेस, नाउ अवेलेबल इन मॉरिशस।
2: RM2 Radio Musti

0: की शुभकामनाएं देता है और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैट।
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस, फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की।
3: Allô, Kajo, Durga Puja, Fresh Flora, Malini Fleuris Plantea, Importateur Fleur, puis offert un discount spécial, l'eau souban guirlande, bouquet et fleurs dans tout ban magasin à travers l'île. L'Almaty, Flac Cœur de Ville, Goodlands Cœur de Ville, Royal Road Goodlands, Rivière du Rempart, Flac Retail Park, Bel Air et Richter Mall. Pour plus renseignements, contactez-nous le 57 96 92 24 57 96 92 24.
4: एगो यात्रा के मतलब है नवा अनुभव, अपन संगी वक्त बिताई के और हर पल के मजा ले के, और कबो कबो एगो बेहतरीन बिजनेस अवसर के फाइनलाइज करे के भी। उहे खातिर कोनो भी अनजान परेशानी के इस सब खास पल के मजा खराब नहीं होई दी है। सिकुम के स्पेशली डिजाइन ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान पर भरोसा करे, जिकर से अपन यात्रा बेफिक्र होके सकबा करे। यात्रा के पूरा मजा लिया सिकुम तोहर ध्यान रखी। हमनी से संपर्क करे या हमनी से भेंट करे खातिर sikkim.mu पर जाई है। नियम आ शर्त लागू बाटे। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
5: सिकुम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
6: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अच्छा 10 बज के 27 मिनट और बहुत सारे कामों के बीच में म्यूज़िक भी अपनी जगह ढूंढ ही लेता है. नहीं वैसे कितने लोग होते हैं जो वेंसडे तक अपने पुराने काम को या रूटीन को वापस लेकर आते हैं, यानी कि सोचते हैं कि नहीं मिड वीक हो जाएगा उसके बाद नए सिरे से काम शुरू करें. लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जो नहीं कर पाते. नहीं कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सोचिए एक बात समझना ज़रूरी है कि मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मोटिवेशन हर रोज़ सेम लेवल पर नहीं मिलती. कुछ दिन आप एनर्जेटिक फील करते हैं और कुछ दिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा. आज कुछ पता नहीं कुछ हो ही रहा है. ऐसे होता है ना कभी कभी. एंड दैट इज एग्जैक्टली जहाँ पर डिसिप्लिन आती है. डिसिप्लिन यानी कि कुछ भी हो जाए बस ये मत सोचिए कि आज आप कैसे महसूस कर रहे हैं. अगर सोचा है करने का तो कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना ही है, करना ही है. ऐसी हैबिट्स को बिल्डअप कीजिए जो सपोर्ट करें जो आप बनना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में आपको लेकर जाए. जिम नहीं जाना, मन नहीं है तो 10 मिनट के साथ शुरुआत कीजिए. देखिए साहब उसके बाद आगे चलते जाएंगे. बुक नहीं पढ़नी तो 2 पेज ही पढ़ लो. कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आप पोस्टपोन कर रहे हैं तो बस पहले 15 मिनट उसको दीजिए, सोचिए समझिए, उसके बाद धीरे धीरे मूड बनता जाएगा. अरे ये स्मॉल एक्शंस हैं रिपीटेड कंसिस्टेंटली, वो एक मीनिंगफुल चेंज लेकर आते हैं. याद रखिए डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं, लेकिन अपनी चॉइस बनाने का है और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का है.
0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैग।
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस, फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की।

0: 92
1: Radio Musti.
0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments. Welcome to RM2.
1: Musti Mornings, Radio Musti.
2: अच्छा, जैसे वेदर तो बहुत अनप्रडिक्टेबल हो रहा है, जहाँ पर कभी कभी बादल छा जाते हैं, थोड़ी सी बारिश भी हो जाती है और हवा तो कमाल की चल रही है। ऐसे में बॉक्सी शर्ट को वाइड लेग जीन्स के साथ पेयर करो, इंस्टेंट कूल गर्ल एनर्जी। वैसे ट्रेंड का अलर्ट यही कि ऑलिव ग्रीन या क्रीम का कॉम्बो ट्राई कर सकते हैं। सटल है, क्लासी है और कैमरे के लिए बिल्कुल सेट, यानी सेल्फीज सेल्फीज और दुनिया कहेगी लाजवाब। डिटेल लेकिन करती है बड़ा सा इंपैक्ट। स्टेटमेंट इयररिंग्स या फिर आप आउटफिट को थोड़ा सा पॉप कलर्स दे सकते हैं। वैसे आजकल पोल्का डॉट्स बहुत फैशन में आ रही हैं वापस। स्मार्ट पिक ये होगी कि आप क्रॉप ट्राउजर्स चूज करो और वेट हैम्स का टेंशन बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि बारिश है या जो भी मौसम है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर फाइनल टच, एक ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेला कैरी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी है, एस्थेटिक भी, और चालबाज की वो

0: कहानी भी याद आ गई ना, लड़की कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी। भाई यही है कि हवा के जो घर्स है ना वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, सो फ्लोई स्कर्ट्स और ओवरसाइज हैट्स को थोड़ा सा ब्रेक दे दो।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हरकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
0: और कहता है बिल्कुल रेडी होकर लड़की, अरे ये तो
2: चल

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अच्छी बात तो ठीक है कि बच्चे भी घर पर हैं और कुछ जिनके एग्जाम्स हैं, ऑल द बेस्ट एंड ले रहे होंगे अभी अपना टेस्ट, लेकिन बाकी पढ़ाई ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं है तो पढ़ाई नहीं करनी. यू हैव टू सिट एंड रिवाइज, जो भी पहले किया है उसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, ऐसा ना हो जिंदगी

में सरप्राइज ही मिल जाए, इसलिए पढ़ाई करो। आजकल तो इतनी सारी फैसिलिटी है, बुक्स खोलकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करके, मतलब जो भी आपको फैसिलिटी मिल रही है उसे और थोड़ा सीखो, क्यों नहीं। स्नैक, होमवर्क, प्ले टाइम, स्क्रीन टाइम का एक फिक्स शेड्यूल रखो। ऐसा नहीं कि बस अब घर पे कोई नहीं तो टीवी ऑन या फिर टैबलेट ऑन और लग गए। मतलब कि एक इंस्ट्रक्शन एक टाइम पर देना अच्छी बात है। बैग रखो, शूज जगह पर रखो, अपना रूम सॉर्ट आउट कर लो। अरे टाइम है ना, नहीं तो बाकी दिन कहते हो नहीं स्कूल चला गया, टाइम नहीं था। अब अरे भाई इट्स टाइम टू कैच अप। और देखो डिसिप्लिन जब जिंदगी में आ जाएगी तो फिर सब कुछ ठीक होने लगेगा। आज आपने सेटअप कर लिया, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे आ जाएगा, फिर से थोड़ा सेटअप कर लो। हर दो तीन दिन के बाद थोड़ा सा सेटअप करके, जहाँ पर बुक्स होने चाहिए वहाँ पर बुक्स हैं, जहाँ पर आपके पेपर्स होने चाहिए, जहाँ पर आपके पेन पेपर्स पेंसिल जो भी है स्टेशनरी वो वहीं पर मिल जाए। सो अच्छी बात यह है कि ग्रैंड पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, अच्छे बच्चे की तरह रहना है, खाना सही टाइम पे खाना है और स्क्रीन टाइम लिमिटेड। वैसे एक छोटा सा प्यारा सा लड़का है कायला, वो हमारे साथ दे रहा है। सो जस्ट वांट टू टेल यू टू बी अ गुड गुड बॉय, क्योंकि तुम्हारी आंटी ने भेजे रिक्वेस्ट। देखे कैसे पास करता है ये टेस्ट।

0: 15th of October, Thursday got the end time check. It's 11 a.m. मिलते हैं करुणा जी से, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को नमस्कार। देश में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी है, जो कि रात 8:30 बजे से कल सुबह 5 बजे तक के लिए है। गौरतलब है कि कौचे मिलते और सैपिया पर भी ये कर्फ्यू लागू होगा। कर्फ्यू के तहत हाल में चलाए गए पुलिस अभियान के बाद कुल 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक 16 वर्षीय नाबालिग और एक महिला भी शामिल हैं। पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार अधिकांश गिरफ्तारियां कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने से संबंधित हैं। 4 लोगों पर दंगों में शामिल होने का संदेह है, जबकि एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक हथियार रखने के आरोप में चालान जारी किया गया। 6 संदिग्धों को हिरासत में रखा गया है और उन्हें इस गुरुवार को जिला अदालतों में पेश किया जा रहा है। 2 छोटी घटनाएं भी सामने आई। घोकायू पेचित गिविया में भड़काऊ व्यवहार और सड़क अवरुद्ध करने के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आमोगी में मुख्य सड़क पर कुछ मलबे में आग लगा दी गई। पुलिस ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। घटनास्थल पर कोई व्यक्ति नहीं मिला। जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इसमें गश्ती, त्वरित हस्तक्षेप टीमें, SMF और SSU की तैनाती के साथ साथ हेलीकॉप्टर से हवाई निगरानी भी शामिल हैं। इन अभियानों का उद्देश्य शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा कर्फ्यू के नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। इस

बीच स्थानीय पुलिस अधिकारी विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। वे लोगों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के अनुसार सभी मंदिरों में आज पूजा का आयोजन सामान्य रूप से किया गया है। इस बीच भक्तों से रात 8 बजे पूजा संपन्न करने की मांग की गई, क्योंकि 8:30 बजे से कर्फ्यू होगा। करदाताओं के लिए अंतिम समय सीमा अब बेहद करीब आ गई है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अब केवल कुछ ही घंटे बाकी हैं। अमौरे द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि गुरुवार 15 अक्टूबर की आधी रात है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। करदाता कुछ ही क्लिक में अमौरे की आधिकारिक वेबसाइट amauri.mu के माध्यम से अपना रिटर्न कर सकते हैं। ऐसे में आज शाम अंतिम समय में रिटर्न करने के लिए करदाताओं से तेजी दिखाने की अपील की गई है। यदि किसी टैक्सपेयर को सहायता की आवश्यकता हो तो अमौरे के हेल्पलाइन 2076000 पर संपर्क किया जा सकता है। और विदेशी स्तर पर आज 15 अक्टूबर को भारत के महान वैज्ञानिक तथा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जा रही है। भारत में उनकी जयंती को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने भारत के मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। रूट रॉयल ब्रिजवेज में 59 साल के 59-year-old जनाब मोहम्मद नौसाद जुमन, जनाब मोहम्मद नौसाद जुमन जो नौसाद से जाने जाते थे, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 2 बजे इनके मकान रल रोड ब्रिजवेज से निकाल कर पहले ब्रिजवेजिया की मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए बोबुआ लाल माटी का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। बिलारो दे नोवेल डिकुवेत में 62 साल की 62-year-old श्रीमती माया दुखी जो माया से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थ आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान बिलारो दे नोवेल डिकुवेत से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 2:30 PM। स्कूल लेन कॉन्डेमास कपावे में 66 साल की 66-year-old कुमारी सीता देवी धनु जो गीता से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके भाई अशोक धनु के मकान स्कूल लेन कॉन्डेमास्क पावे से उठाकर दाह संस्कार के लिए मेजिन कॉन्डेमास्क की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।

0: रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: La fin d'année des costés, tu ne parais?
3: Pas juste l'année, et ta dépense aussi.
2: Mais Rogers Capital la même! Tansa, jusqu'à 31 décembre, tout nouveau client code Rogers Capital, pégaye 500 roupies rabais, l'oseux de première mensualité.
3: Financement, et te paye 500 roupies en moins, top net ça.
2: Application facile! Zis avec ton code identité.
3: Asté à faire l'année sans tracas.
2: Attendez, fais ou application premier crédit code Rogers Capital. Offre valable jusqu'à 31 décembre. Condition applicable. Rogers Capital Credit. Opère sous licence de la FSI.
4: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
5: Milo, libère ta force.
4: Petite, on me disait ce que je devais faire. Mais moi, je voulais juste faire du sport.
5: Milo, libère ta force.
4: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
5: Milo, libère ta force.
4: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe, je me relève et je vais de l'avant. C'est pourquoi j'aime le sport.
6: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
7: Nestlé, good food, good life.
8: Durga Puja ke uplaksh par, one and only Drown Brothers.

0: और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैट।
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वो,

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: कभी कभी होता है कि आप टीम में काम करते हैं लेकिन कभी कुछ लोग होते हैं जिनके व्यू पॉइंट बिल्कुल अलग होते हैं। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग तो होंगे होंगे, बस क्या करें साहब, मूड चेंज हो सकता है, वर्क स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। वहीं पर फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत तो जरूर करते हैं लेकिन बाकी की चीज़ें अब कैसी होंगी, क्या होगा, इसका तो ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, व्हाट यू कैन डू इज कि बाकी लोगों का जो बिहेवियर है, जो उनकी आउटलुक है, उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते लेकिन अपना व्यू पॉइंट बहुत आराम से आप समझा सकते हैं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, अगर आर्गुमेंट जीतने की जरूरत आपको लग रही है तो ऐसा भी नहीं। आपके इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और उनको बड़ी पिक्चर समझाएं। ऐसा नहीं उनको बोलें कि देखो तुम मेरी उंगली देख रहे हो और मैं तुम्हें चांद दिखा रहा हूँ। कभी कभी साइलेंस इज मैच्योरिटी, हाँ, लेकिन जब आप लीडर हैं, आपको एक टीम को कहीं पे ले जाना है, अपने गोल को पाना है, ऑब्जेक्टिव्स को पाना है, तो फिर क्लियरली एक्सप्लेन करना और हर किसी की क्या जरूरत है, क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये बताना भी बहुत बहुत जरूरी है। तो बस टीम को अपने साथ कॉन्फ्रेंस में लेकर आगे बढ़ते रहो और उनसे यही कहो कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: शुभकामनाएं देता है और यही आशा करते हैं कि माँ दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैग।
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरम्भ करें दुर्गा माँ की।
3: हर पल को बनाई खास और यादगार हेरिटेज घी के साथ। 1992 से भरोसे और प्यार के साथ बना हेरिटेज घी आपके लिए लाता है बेहतरीन मक्खन से तैयार किया गया शुद्ध और दानेदार घी। हमारे काऊ घी की मनमोहक खुशबू आपकी खीर पूरी जलेबी और लड्डू को दे एकदम घर जैसा स्वाद और हर दिवाली को बना दे खास। प्योर ट्रेडिशन, प्योर अरोमा, प्योर लव। Heritage Cow Ghee, a golden touch of goodness. Now available in Mauritius.
4: RM2
5: Radio Musti.

0: बस अगला प्रोग्राम होगा रेट्रो रिदम, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर ज्योति जी हैं शादो बनारस, उन्होंने कहा कि अगला गाना स्पेशली टू आशनी रेखा सुरेखा मदर फैमिली के लिए एंड ऑल्सो टू द टीम, और वहीं पर जय माता दी अनिता जी आ गए हैं फ्लैग से, और कि दुर्गा माँ सबके घर में खुशियाँ लेकर आए, चारों ओर शांति हो, जी हाँ बहुत बहुत ज़रूरी है। अगला गाना ऑल्सो गोज आउट टू डॉक्टर अवनी एंड साथ में हस्बैंड रोशन, ये है मनीषा की तरफ से बहुत सारे प्यार के साथ।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: टाइम चेक दोपहर के 12 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा जी से। करुणा जी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी को नमस्कार। देश में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी है। कैबिनेट की बैठक में कर्फ्यू लागू करने वाला नया आदेश कल जारी किया गया। इसके तहत आज रात 8:30 बजे से कल सुबह 5 बजे तक फिर से कर्फ्यू लागू रहेगा। पुलिस बलों ने देश भर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी सभी इकाइयों की तैनाती बढ़ा दी है। खास रूप से उन क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत की गई है जहां हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है। पुलिस ने सड़क पर नाकेबंदी और वाहनों की जाँच भी तेज कर दी है। पुलिस की साइबर अपराध इकाई सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रख रही है। नफरत फैलाने वाले भाषणों और हिंसा के लिए उकसाने वाली पोस्ट सहित अन्य संबंधित प्रकाशनों के लेखकों के खिलाफ तत्काल जांच की जा रही है। डीपीपी और पुलिस आयुक्त के साथ विचार विमर्श के बाद एक खास व्यवस्था स्थापित की गई। उद्देश्य इन घटनाओं में शामिल आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और उनकी सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी लाना है। इसके साथ ही पेट्रोल की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए नियम भी तैयार किए जा रहे हैं। दंगों में शामिल नाबालिगों की संख्या को देखते हुए सरकार चिल्ड्रंस एक्ट में संशोधन करने पर विचार करेगी। प्रस्ताव के तहत नाबालिगों को हिरासत में लेने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने पर विचार किया जा रहा है। कर्फ्यू के तहत हाल में चलाए गए पुलिस अभियानों के बाद कुल 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक

16 वर्षीय नाबालिग और एक महिला भी शामिल हैं। पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार अधिकांश गिरफ्तारियां कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने से संबंधित हैं। चार लोगों पर दंगा में शामिल होने का संदेह है, जबकि एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक हथियार रखने के आरोप में चालान जारी किया गया। 6 संदिग्धों को हिरासत में रखा गया और उन्हें इस गुरुवार को जिला अदालतों में पेश किया जा रहा है। 2 छोटी घटनाएं भी सामने आई। घोकायू पेजित्रिविया में भड़काऊ व्यवहार और सड़क अवरुद्ध करने के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आमोगी में मुख्य सड़क पर कुछ मलबे में आग लगा दी गई। पुलिस ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। घटनास्थल पर कोई व्यक्ति नहीं मिला। जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इस बीच स्थानीय पुलिस अधिकारी विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। वे लोगों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और पुलिस के साथ सहयोग करने की भी अपील कर रहे हैं। इंडिविजुअल टैक्स पेयरों के लिए ये खास खबर, इनकम टैक्स रिटर्न करने की अवधि बढ़ा दी गई है। एमओआरआई द्वारा आज जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार यदि 15 अक्टूबर की डेडलाइन के तहत कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न नहीं कर पाता तो उसे जुर्माना नहीं होगा, न ही कोई ब्याज लागू होगा, बशर्ते कि शुक्रवार 30 अक्टूबर तक रिटर्न किया जाए और यदि भुगतान करना हो तो उसे कर लिया जाए। जनता को ये भी सूचित किया जाता है कि कर्फ्यू आदेश के चलते आज एमओआरआई का दफ्तर पूर्व में सूचित रात 8 बजे के बजाय शाम 4:30 बजे बंद होगा। किसी तरह की सहायता के लिए एमओआरआई की वेबसाइट या उसके 2076000 नंबर पर उसके हेल्प डेस्क की सहायता ली जा सकती है। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के अनुसार सभी मंदिरों में आज पूजा का आयोजन सामान्य रूप से किया गया है। इस बीच भक्तों से रात 8 बजे पूजा संपन्न करने की मांग की गई है, क्योंकि 8:30 बजे से कर्फ्यू लागू होगा। और विदेश की खबरों में पश्चिमी एशिया की सुलगती आग अब समंदर की गहराइयों तक पहुंच चुकी। बताया जा रहा है कि होमूज में पिछले 24 घंटों के दौरान अलग अलग मिसाइल हमलों में 2 बड़े जहाज समंदर में डूब गए। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और वैश्विक व्यापार जगत में हड़कंप मच गया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। डर्बी स्ट्रीट फॉरेस्ट साइड में 70 साल के 70-year-old श्री दिलीप मुचुराम जो दिलीप से जाने जाते थे और पहले सेंटे के कर्मचारी थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे इनके मकान डर्बी स्ट्रीट फॉरेस्ट साइड से उठाकर दाह संस्कार के लिए बिगाहा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। बेल्जियम में 58 साल के 58-year-old श्री बोझनाथ रामला जो बाबू से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। इनका अंतिम संस्कार बाद में किया जाएगा, बाद में सूचित की जाएगी। बेलरो दे नुवेल फ्रांस बल्कि नुवेल दे कुवैत में बेलरो दे कुवैत में 62 साल की श्रीमती माया दुखी जो माया से जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान बेलाओ रोड नुवेल दे कुवैत से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। स्कूल लेन कॉरेमास कपावे में 66 साल की 66-year-old कुमारी सीता देवी धन्नू जो गीता से जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके भाई अशोक धन्नू के मकान स्कूल लेन कॉरेमास्क पावे से उठाकर दाह संस्कार के लिए मेजिन कॉरेमास्क की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2:00 PM। और रॉयल रोड ब्रिजेवेजे में 59 साल के 59-year-old जनाब मोहम्मद नौशाद जुमन जो नौशाद से जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दिन के 2 बजे इनके मकान रॉयल रोड ब्रिजेवेजे से निकाल कर पहले ब्रिजेवेजे की मस्जिद जाया जाएगा, फिर दफना

0: आने के लिए बोबुआ लालमाटी का कब्रिस्तान। फिनरल टुडे 2 PM। शोकग्रस्त सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU.
2: Retro Rhythm.
3: RM2.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: रेट्रो रिदम।
1: बारह बज के 14 मिनट हो चुके हैं। नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। आरएम टू रेडियो मस्ती पर आप सुन रहे हैं रेट्रो रिदम। मैं हूं आपके साथ पूनम। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, मां स्कंद माता की पूजा का पावन अवसर, तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए दोपहर के पुराने गानों की मिठास के साथ शुरू करते हैं खास गाने। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499124 पर। मैं हूँ आपके साथ पूनम।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti।
3: देवाना

0: रेट्रो रिदम
1: 12:24 हो चुके हैं दोस्तों और आपका साथ मिल रहा है रेट्रो रिदम में और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो चलिए आपको आज बताते हैं एक प्यारी छोटी सी कहानी जो कि है लता मंगेशकर और किशोर दा की। 1949 में लता जी और किशोर कुमार जी जा रहे थे और ट्रेन से मलाड की तरफ जा रहे थे, तो जो बग्गी थी उधर क्या कहते हैं लता जी बैठी हुई थी और वहाँ पर ही किशोर दा भी बैठे हुए थे और एक अनजान आदमी को देख के थोड़ा सा वो घबराई, पर जहाँ पर लता जी उतरी वहीं पर किशोर दा भी उतरे और जहाँ लता जी जिस स्टूडियो में जा रही थी वहाँ किशोर दा भी चले गए, क्योंकि दोनों अपना अपना ही काम कर रहे थे। और लता जी ने बोला संगीतकार को कि देखिए ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है और बहुत देर से मेरे साथ साथ ही चल रहा है। और इतने में संगीतकार ने हंसते हुए बोला अरे नहीं, ये अशोक कुमार के ब्रदर हैं, यानी कि किशोर कुमार, और पहली बार उन्होंने जिंदी मूवी में एक साथ गाना गाया। तो ये तो प्यारी सी लता जी और किशोर कुमार की कहानी हुई, पर कहते हैं कि ये कहानी ऐसी चली कि इतने सारे हजारों गाने दोनों ने एक साथ गाए, इसीलिए क्योंकि दोनों को कहते हैं एक दूसरे की बॉन्डिंग समझ आ गई और एहसास हुआ कि म्यूजिक एक दूसरे को कैसे जोड़ता है।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ।

0: कुछ कहो भी हमसे, लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे, बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
0: हाय

0: रेट्रो रिदम। 12:34 हो चुके हैं। ये संगीत का जो जादू है, ये बिना बोले सब कह जाता है, और ये जो गाने हैं ना, ये दिल तक सीधा पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही आपके मैसेजेस भी हैं जो हमारे तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले हम सभी का स्वागत करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे, ललित जी साथ दे रहे हैं यूएसए से और इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, क्या बात है। थैंक यू सो मच आपसे, इतने दिनों के बाद आपका मैसेज आया। धनेश्वर जी अपनी पत्नी संग साथ निभा रहे हैं, और रानी जी हंसवी एंड भाविना एंड भाविका देवदोस्त फैमिली इंजॉय कर रही है इस प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच, इंजॉय करते रहिए। लाल माटी से दीपशिखा और दीक्षा जो आज 29 इयर्स के हो चुके हैं, और पापा मामा जिकेश एंड गेशनव सभी परिवार उन्हें विश कर रहे हैं और बोल रहे हैं बस कि इंजॉय करो, तुम्हारा बर्थडे है, हम तो यही चाहते हैं हमेशा खुश रहो। क्या बात है, हम भी पूरी एमबीसी टीम यही चाहेगी कि आप हमेशा खुश रहें, इंजॉय करते रहें। हिना जी एंड प्रिया साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। बाबू अनंतवा जी भी अपने प्यारे से गाने के साथ में लेकर आ चुके हैं। तो चलिए जी, इंजॉय करते रहिए, इंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को, सत्यमेव जयते मूवी की तरफ से बपी लहरी का ये आवाज में।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती।

0: टू रेडियो मस्ती।
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस, फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की।

0: गाने बिना वजह अच्छे लगते हैं और यही सबसे खूबसूरती होती है इन गानों की। बस हंसते ले रहो, मुस्कुराते रहो, आई लव यू जो सब कहते हैं सच बात है।
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti

0: टाइम चेक दोपहर के 1 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से। आस्था आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 1 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कॉलिव्यू में गोली लगने से घायल इलुजी तुमा की सेहत में लगातार सुधार। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने बताया कि आज सुबह इलुजी ने सहारे से चलना शुरू किया, अब वो पानी भी पी पा रही है। उनके दोनों हाथ और पैर भी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। गंभीर चोटों और मुश्किल ऑपरेशन के बाद इसे एक बड़ी प्रगति माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने इलुजी के इलाज में जुटी मॉरिशस और भारत की मेडिकल टीमों का धन्यवाद किया। कर्फ्यू के दौरान नियमों का पालन नहीं करने और अशांति फैलाने के मामलों में पुलिस ने 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 16 साल के एक नाबालिग और एक महिला भी शामिल हैं। 4 लोगों पर दंगों में शामिल होने का शक है, जबकि एक व्यक्ति के खिलाफ हथियार रखने का पर कार्रवाई की गई है। 9 संदिग्धों को हिरासत में रखा गया है और आज अदालत में पेश किया जाना है। इस बीच घोकायू में सड़क रोकने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जबकि आमोगी में सड़क पर रखे सामान में आग लगा दी गई। पुलिस ने आग पर जल्द काबू पा लिया। देश में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। एसएमएफ और एसएसयू के साथ हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है। हाल के हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं का ड्रग्स के कारोबार से कोई संबंध है या नहीं, ये जांच के बाद ही साफ होगा। नाडेक के सीईओ कुणाल नायक के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों, पुलिस की गाड़ियों और पुलिस स्टेशनों को भी निशाना बनाया गया है। उनका कहना है कि ड्रग्स का कारोबार रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई के साथ गरीबी, सामाजिक असमानता और युवाओं की मुश्किलों पर भी ध्यान देना जरूरी है। सुरक्षा के मौजूदा हालात को देखते हुए आज 15 और कल 16 अक्टूबर को देश के सभी स्कूल और प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शिक्षा मंत्री डॉ. महेंद्र गंगा प्रसाद के अनुसार स्कूल सर्टिफिकेट और हाई स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार होंगी। हाल की हिंसा की घटनाओं में नाबालिगों के शामिल होने पर ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन अनिता घुरा ने चिंता जताई। मंगलवार से बुधवार की रात गिरफ्तार किए गए 94 लोगों में 16 नाबालिग भी थे। उन्होंने माता पिता से अपने बच्चों को घर पर रखने की अपील की। इस बीच सरकार ने चिल्ड्रंस एक्ट में बदलाव पर अपराध कर के लिए जिम्मेदार ठहराने जाने की न्यूनतम उम्र 14 से घटाकर 12 साल करने का प्रस्ताव रखा है। विदेश स्तर की खबरों में पाकिस्तान के पेशावर में निजी स्कूल की छत गिरने से 29 लोगों की मौत, जिनमें एक महिला शिक्षक भी शामिल। हादसे में 19 लोग घायल, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। नोवेल डिकुवेट में बेलूर

0: de nouvelles découvertes, mais Bassat Sal qui substitue Yazol qui, Shrimati Maya Duki, Shrimati Maya Duki, qui mriti ho gai hai, unki arthi, aaj din ke dhai baje, unhi ke makan, nouvelles découvertes se utha kar antim sanskar ke liye, circonstance Saint-Pierre ki, shumshan bhumi le jaye jayegi, cremation today at 2:30 PM. Royal Road brise verdi ame, Royal Road brise verdi ame, un sat sal ke, 59 Yazol ke, Mohammad Naushad Juman, Mohammad Naushad Juman इंतकाल कर गए हैं उनका जनाजा आज दोपहर बाद 2 बजे उनके मकान रॉयल रोड प्रेसिवेडिया से निकाल कर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए प्रेसिवेडिया का मस्जिद और दफनाने के लिए बुबुआ लाल माची का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा क्रीमेशन टुडे एट 2 पीएम 58 साल की बेल्जियम में श्री भोजनाथ रमलाला की मृत्यु हो गई है उनका अंतिम संस्कार बाद में किया जाएगा और समय के बारे में हम आपको बाद में सूचित करेंगे इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है
1: Your news on NBC Play and NBC.mu
2: Retro Rhythm
3: RM2 Red

यह नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: रेट्रो रिदम। 1:13 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं रेट्रो रिदम के साथ और ये सेकंड आवर लग चुका है और सेकंड आवर में बहुत सारे गाने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं और हम तो यही कहेंगे अगर आपको भी कोई गाना बताना है तो आप हमें ज़रूर बताइए 5491294 पर आपको इतना ही हम बताएंगे कि आज बहुत मौका मिला है आपको घर पर रहने का, थोड़ा सा कुछ घर की साफ़ सफाई करने का, बच्चों के साथ रहने का, पूजा पाठ करने का, तो हम कहेंगे अच्छा खाइए, अपना ख्याल रखिए और गानों के साथ RM2 रेडियो मस्ती के साथ रहिए। ये गाने बहुत ही अच्छे हैं। नेक्स्ट गाना आप सबके नाम जाएगा किशोर कुमार की आवाज में अनुरोध मूवी से।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेड

0: रेट्रो रिदम।
1: आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की आवाज में। आजकल तेरे मेरे चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो भाई आपको भी बता दें कि आपके जितने मैसेजेस आते हैं ना, ये भी तो खबर सबको पहुंचनी चाहिए कि कौन कौन इस समय याद कर रहा है अपने गानों को और आप सबको। तो जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है ललिता जीतन जी और इंजॉय कर रही है घर पे रह के इस प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, आपसे बात हुई। गीता जी, सीता, भोला राम साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। संगीता जी जुड़ी हुई हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश लेकर आई हैं। बिल्कुल हम चलाने वाले हैं आपका गाना। ज्योति शादो बनारस से आशनी, रेखा, सुरेखा और मधुप फैमिली के लिए एक प्यारे से गाने की फरमाइश लेकर आई हैं। राजन रघुपत जी जो कि लंदन से साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं रेट्रो रिदम चले और मैं ना आऊं, ऐसे कैसे हो सकता है, और आप मैसेज ना करें ऐसे कैसे हो सकता है। थैंक यू सो मच आपका साथ देने का और साथ जुड़ने का। रेशमा रामकिशन जी साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं। विश्वानी धूमन जी बहुत इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच। और प्रकाशवती जी बेल्जियम से साथ दे रही हैं और कह रही हैं एंजॉय कर रही हूं और बस यही कह रही हूं, गर्मी बहुत है पर एक गानों की जो ठंडक है महसूस हो रही है। थैंक यू सो मच आप सबका जो साथ दे रहे हैं। एंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए अपने गाने।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:46 हो चुके हैं दोस्तों, और आज 15 अक्टूबर इंटरनेशनल व्हाइट कैन सेफ्टी डे है। ये दिन उन लोगों के लिए होता है जिनकी दृष्टि बाधित होते हैं, यानी उनकी आंखें नहीं होते, लेकिन उनकी हिम्मत, उनका आत्मविश्वास और आप सबके प्यार, यानी कि परिवार का साथ, उनके दोस्तों का साथ, वो सफ़ेद छड़ी सिर्फ एक सहारा नहीं बनती बल्कि उनकी स्वतंत्रता और गरिमा का प्रतीक भी बनती है। आइए हम सब मिलकर उनका सम्मान करें, उनकी हमेशा हर पल मदद करते रहें।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti.

दोस्तों ये रहा रेट्रो रिदम, मैं थी आपके साथ पूनम, आपने सुना आरएम टू रेडियो मस्ती। अपना ख्याल रखिएगा, परिवार के साथ रहिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट मंडे। अब आपको साथ मिलेगा परी का।

0: टाइम चेक दोपहर के 2 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से। आस्था आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री दफ्तर के मुताबिक कल रात देश में हालात काबू में रहे और किसी बड़ी घटना की खबर नहीं मिली। कर्फ्यू कल शुक्रवार 16 अक्टूबर तक रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं और अधिकारियों के संपर्क में हैं। इस बीच कस्कावेल, कोकायू, सुल्फेरिनो, मोतेबिलो और शमेग्रोनी में गन्ने के खेतों में आग लगने की घटनाएं सामने आई, जिन पर जल्द काबू पा लिया गया। कर्फ्यू तोड़ने के आरोप में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 9 को हिरासत में रखा गया है और आज अदालत में पेश किया जाएगा। बाकी लोगों को पूछताछ के लिए छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री दफ्तर ने लोगों से सावधानी बरतने और नियमों का पालन जारी रखने की अपील की है। कॉलिव्यू में गोली लगने से घायल इलोजी टोमा की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने बताया कि आज सुबह इलोजी ने सहारे से चलना शुरू किया और अब वो मुंह से पानी पी पा रही है। उनके दोनों हाथ और पैर की अच्छी तरह भी काम कर रहे हैं। गंभीर चोटों और मुश्किल ऑपरेशन के बाद इसे एक बड़ी प्रगति माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने इलोजी के इलाज में जुटी मॉरिशस और भारत की मेडिकल टीमों का धन्यवाद किया है। देश में हाल की हिंसा और शांति की घटनाओं में 16 नाबालिगों के शामिल होने पर ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन ने गहरी चिंता जताई। आज जारी एक बयान में माता पिता से अपने बच्चों की सुरक्षा पर खास ध्यान देने की अपील की गई है। उन्हें ये जानना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ हैं, किन लोगों के हाथ के साथ रहते हैं और सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं। बच्चों को हिंसा से दूर रखने के लिए उनसे बातचीत करना भी जरूरी है। ओम्बुड्स पर्सन का कार्यालय इन 16 नाबालिगों के मामले पर नजर रखेगा ताकि कानूनी कार्रवाई में बच्चों के हितों का ध्यान रखा जाए। हाल में की हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं का नशीले पदार्थों यानी ड्रग्स के कारोबार से कोई संबंध है या नहीं, ये जांच के बाद ही साफ होगा। नैडेक के सीईओ कुणाल नायक के मुताबिक सेफ सिटी के कैमरों, पुलिस की गाड़ियों और थानों को भी निशाना बनाया गया है। उनका कहना है कि नशीले पदार्थों का कारोबार रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई के साथ गरीबी, सामाजिक असमानता और युवाओं की मुश्किलों पर भी ध्यान देना जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन है। टैक्स पेयर आज आधी रात तक अपना रिटर्न जमा कर सकती हैं। एमओआरए के मुताबिक 13 अक्टूबर की सुबह तक 241,202 रिटर्न जमा हो चुके थे, लेकिन हजारों लोगों ने अब तक ये काम पूरा नहीं किया है। रिटर्न MRA.MU पर ऑनलाइन भरा जा सकता है और मदद के लिए एमओआरए के हॉटलाइन पर फोन किया जा सकता है। विदेश स्तर की खबरें। पाकिस्तान के पेशावर में एक निजी स्कूल की छत गिरने से 29 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक महिला शिक्षक भी शामिल। हादसे में 29 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बच्चों की उम्र 6 से 12 साल के बीच बताई गई है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। माता बदल स्ट्रीट विल्नोमेबर्ग में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री धीरज माता बदल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें अशोक के नाम से ज़्यादा जानते थे। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे बल्कि कल शुक्रवार 16 अक्टूबर को दोपहर बाद 2 बजे उनकी पत्नी प्रमिला माता बादल के मकान विल्नोमेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिचिबेलिया मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाया जाएगी।

0: क्रिमेशन टुमारो एट 2 पीएम शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है
1: Your news on MBC Play and mbc.mu More music in the mix
2: आज आजादी है
3: Bombay Talkies
4: Radio Musty
1: Radio Musty

0: Oldies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: 2:11 हो चुके हैं, आप सबका स्वागत है हमारी इस बॉम्बे टॉकीज में। और ये वक्त है थोड़ा सा फिल्मी होने का, बॉलीवुड के साथ जुड़ने का और फिल्मी सितारों के थोड़े से गॉसिप्स और बॉक्स ऑफिस की छोटी मोटी प्यारी सी सुपरहिट बातें। कहते हैं ना, ये टाइम जो होता है बॉम्बे टॉकीज में बहुत ही बढ़िया होता है। और नॉर्मली तो परी साथ रहती है, तो आज मेरी ड्यूटी है यहाँ पर, एक घंटा हम आपके साथ बिताएंगे।
2: More music in the mix.
1: Aaj Azadi hai.
0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.

0: 92.2 रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
2: सिद्धि विनायक शॉप विशेस यू अ शुभ नवरात्रि। मे दुर्गा माँ ब्लेस यू ऑल।
0: RM2
3: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए जी चेक करते हैं स्टूडियो की घड़ी में 2:19 हो चुके हैं। इसमें गिनी शाम तो मैं जो आ गई हूँ, एक घंटे का सफर साथ तय कर रही है, तो अब रहेंगे आप लोगों का साथ देने के लिए। वी हैव सम गुड गुड बॉलीवुड म्यूजिक और जी हाँ दोस्तों, लेके जाएंगे बॉलीवुड की दुनिया में फॉर सम हॉट एंड स्पाइसी बॉलीवुड गॉसिप्स। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड ऑन आवर इंटरनेट रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: Music all day long.
3: Radio Masti. Sunte raho.
4: Katl karti hai nigahein ki dil ko khabar na ho. Zakhm deti hai aisa ki dard ka asar na ho. हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याल दिल लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: unforgettable Diwali night. 14th of November at Balanchina Hall, rooftop Phoenix. Karenge masti, karenge dhamal. Who's joining the party? Ab agar ye hai sawal, to saath dene ke liye aa rahe hain Bollywood singers Vineet Singh aur Anita Bhatt. Bollywood ka music karenge rock and roll. Hoga international DJ, bajenge dhol. Also joining in our local DJs DJ Neil K and DJ Spike V.
1: Crewmania Dance Academy aur honge selfie corners.
0: The Grand Diwali Night as from 6 PM at Valanchina Hall, rooftop, Phoenix.
1: Radio Masti ke RJs ke saath hogi full on entertainment.
0: Great surprises, Bollywood vibes aur Diwali ki mithai ke saath mithas hi mithas. Tickets on sale on utaya.com. So book the date 14th of November as from 6 PM. The Grand Diwali Night at Valanchina Hall, rooftop, Phoenix with Radio Masti.
1: Grand Diwali Night 2026, sponsored by Valanchina Hall in collaboration with Luxury Distributors Limited.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musty.
6: Radio Musty.
7: तो चलिए जी, टाइम हो चला है 2:31 और आप सुन रहे हैं गिनेशा को ऑन RMT रेडियो मस्ती. आई रियली होप एवरीवन इज हैविंग अ गुड गुड टाइम और बस आप एंजॉय कर रहे हैं ये खूबसूरत गाने का जो सिलेक्शन से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. सो माय डियर लवली लिसनर्स, वेलकम टू योर वेरी ओन बॉलीवुड एंटरटेनमेंट का जो अड्डा है. और बिल्कुल जी, हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फुल ऑन फिल्मी मसाला, सुपरस्टार गॉसिप, मूवी अपडेट्स, बॉक्स ऑफिस धमाका या इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जो हेडलाइंस होती हैं आप तक पहुंचाएंगे. सो रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, चाय या कॉफी का कप उठा लीजिए जी. और आज बॉलीवुड में सलमान खान से लेकर अजय देवगन और इमरान खान तक काफी काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए. और आज हेडलाइंस के लिए लेटेस्ट एंटरटेनमेंट रिपोर्ट्स चेक की गई हैं कि चलिए हम शुरू करते हैं. इमरान खान, द एक्टर इमरान खान को इंडिया छोड़ने का नोटिस मिला है. सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक्टर इमरान खान के बारे में. आज की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस ने उन्हें 28 अक्टूबर तक इंडिया छोड़ने का नोटिस दिया है. रिपोर्ट्स में इसका कनेक्शन 10 अक्टूबर को मुंबई में हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ प्रोटेस्ट से बताया गया है. इमरान खान का जो बॉलीवुड कमबैक भी चर्चा में है. अब देखना होगा कि इस डेवलपमेंट का उनके अपकमिंग फिल्म प्लान्स पर क्या असर पड़ता है. फिलहाल उनके कमबैक का फ्यूचर क्लियर नहीं है दोस्तों. तो चलिए, हमारा साथ यूं ही देते रहना और हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे और इंस्पायर से लेटेस्ट बॉलीवुड गॉसिप्स.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं। हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर वन एंड ओनली ड्राउन ब्रदर्स

0: और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैग
1: RM2
2: रेडियो मस्ती
3: म्यूजिक ऑल डे।

0: Talkies, Radio Musti,
1: Radio Musti.
2: बिल्कुल जी, ऑन रेडियो में से लेके जाते हैं बॉलीवुड की दुनिया में फॉर योर हर एंड स्पाइस। जी हाँ, बॉलीवुड न्यूज अभी तो हम बात कर रहे थे अबाउट इमरान खान। फिलहाल के लिए लेट्स टॉक अबाउट मनोज बाजपेयी। सो मनोज जी की जो फिल्म का नाम बदला है, उसका ट्रेलर जो है आउट हो चुकी है और एक जबरदस्त OTT अपडेट है आपके लिए कि मनोज बाजपेयी की क्राइम ट्रेलर जो पहले घुसखोर पंडित नाम से अनाउंस हुई थी, अब गजब रात के नाम से रिलीज होगी। बिल्कुल, सो नेटफ्लिक्स इंडिया ने आज ट्रेलर अनवेल किया है और कहानी एक रात में होने वाले क्राइम और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अराउंड घूमती है, जहां ईमानदारी, करप्शन और लालच के बीच एक पुलिस ऑफिसर फंस जाता है। और फिल्म में नुसरत भरूचा भी है और साकिब सलीम और दिव्या दत्ता भी नजर आएंगे। सो रिलीज डेट है 23rd of October 2026 Netflix India पर। तो thriller lovers calendar में date note जरूर करना, ये अगर आप मनोज बाजपेयी, जो मनोज बाजपेयी के die hard fan है, so I guess you're gonna love this lovely जो उनकी movie आने वाली है।

0: चेक योर टाइम, इट्स शार्प 3 पीएम। आइए सुनते हैं समाचार आदिति के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, श्रोताओं को भी नमस्कार। प्रधानमंत्री दफ्तर के मुताबिक कल रात देश में हालात काबू में रहे और किसी बड़ी घटना की खबर नहीं मिली। कर्फ्यू कल शुक्रवार 16 अक्टूबर तक रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं और अधिकारियों के संपर्क में हैं। इस बीच कास्कावेल, गोका, यूसुलफेरिनो, मोंटेबेलो और शमेगोनी में गन्ने के खेतों में आग लगाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिन पर जल्द काबू पा लिया गया। कर्फ्यू तोड़ने के आरोप में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 9 को हिरासत में रखा गया है और आज अदालत में उन्हें पेश किया जा रहा है। बाकी लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री दफ्तर ने लोगों से सावधानी बरतने और नियमों का पालन जारी रखने की अपील की है। कोलोवियो में गोली लगने से घायल हुई एलोजीटोमा की हालत में लगातार सुधार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेशु ने बताया कि आज सुबह एलोजी ने सहारे से चलना शुरू किया और अब वो मुंह से पानी भी पी पा रही है। उसके दोनों हाथ और पैर भी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। गंभीर चोटों और मुश्किल ऑपरेशन के बाद इसे एक बड़ी प्रगति माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने एलोजी के इलाज में जुटी मॉरिशस

0: और भारत की मेडिकल टीमों का आभार प्रकट किया। देश में हाल की हिंसा और अशांति की घटनाओं में 16 नाबालिगों के शामिल होने पर ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन ने गहरी चिंता जताई है। आज जारी बयान में माता पिता से अपने बच्चों की सुरक्षा पर खास ध्यान देने की अपील की गई है। उन्हें ये जानना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं। बच्चों को हिंसा से दूर रखने के लिए उनसे बातचीत करना भी जरूरी है। ओम्बुड्समैन का कार्यालय इन 16 नाबालिगों के मामले पर नजर रखेगा ताकि कानूनी कार्रवाई में बच्चों के हितों का ध्यान रखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान के पेशावर शहर में एक निजी स्कूल की छत गिरने से 29 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक महिला शिक्षक भी शामिल है। हादसे में 29 लोग घायल बताए गए हैं, जिनमें 5 लोगों की हालत गंभीर है। बच्चों की उम्र 6 से 12 साल के बीच की बताई जाती है। ये थी अब तक की खबरें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies. Radio Musti.
4: Radio Musti.

कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

एग्जैक्टली दोस्तों, जीते जीते जीना तो आ ही जाएगा और अभी के लिए आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, तो ऐसे ही ट्रैक्स है जो आपको एंटरटेन करें। आफ्टरनून टाइम है 3 से लेकर 4 बजे तक। इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज। मैं हूं परी आपके साथ। वार्म वेलकम जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है। बस खूबसूरत गीत आप तक पहुंचाते रहेंगे और साथ में लेकर आए हैं बी टाउन के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। साथ दीजिए हमारा और डू सेंड अस योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस ऑन 5499-1294।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: और चलिए 3:17 एक्टर राघव जुयाल हाल ही में साउथ फिल्म द पैराडाइज में नजर आए थे। फिल्म में राघव ने विलन का किरदार निभाया था। वहीं एक्टर नानी लीड रोल में नजर आए थे और अब इसके बाद राघव जुयाल अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में जुट गए हैं। दरअसल राघव जुयाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शूटिंग से जुड़ी कुछ जानकारियां बताते हुए एक पोस्ट शेयर की। इसमें उन्होंने बताया कि वे अपनी अगली फिल्म एनी बॉडी कैन ड्रीम इसकी शूटिंग में लग गए हैं और इसके साथ उन्होंने एक बड़ा और इमोशनल नोट भी लिखा। राघव ने लिखा कि आज मैं अपने करियर की सबसे अहम फिल्म की शुरुआत कर रहा हूं। ऐसा इसीलिए नहीं है कि ये सबसे बड़ी फिल्म है, बल्कि इसीलिए है क्योंकि 12-13 साल पहले मैंने इसे देखा था और इसके सपने देखे थे और आज मैं इसी सपने को जी रहा हूं। और यहां पर ये पोस्ट शेयर करते हुए काफ़ी इमोशनल वो नज़र आए और साथ ही उन्होंने एनीबॉडी कैन ड्रीम यानी कि जो सपना उन्होंने देखा था वो अब पूरा हो रहा है और जहां पर वो मेन लीड में नज़र आना चाहते हैं ये भी उन्होंने बताया था। दैट ही ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग अ मेन लीड और काफ़ी सारे यादगार किरदार उन्होंने निभाए हैं, बी इट किरदार ऑफ अ फ्रेंड या फिर एक विलन का किरदार, लेकिन यहाँ पर वो मेन लीड में नजर आने वाले हैं। एनीबॉडी कैन ड्रीम, सो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या यहाँ पर राघव की ड्रीम कंप्लीट होती है और उनका हीरो बनने का जो सपना है वो कितना आगे तक जाता है। म्यूजिक ऑल डे।

0: Oldies.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: बिल्कुल प्यार ही है शायद क्यों हम तो कहेंगे बेशक ये प्यार ही है जो आप हम तक पहुंचाते हैं थैंक यू सो मच जो आपका प्यार हम तक पहुंच रहा है आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस के जरिए सो यहां पर बी टाउन की खबरें हमने आप तक पहुंचाई एंड नाउ इट्स टाइम कि हम कुछ आपके स्वीट मैसेजेस भी आपके अपनों तक पहुंचा दें सो यहां पर आ गई हैं घर और कहते हैं पेट में चूहे बिल्ली सब दौड़ रहे हैं चाय और गातो पीमा एंजॉय कर रही हैं आप रोशनी हमारा साथ दे रही हैं आप सो वेल एंजॉय योर टी टाइम एंड अगला गाना होगा आपके नाम विशिंग यू अ वंडरफुल टाइम रेडियो मस्ती के साथ यहाँ पर विजया जी कहती हैं अभी अभी उठी हूँ एंड नॉट फीलिंग वेल सो हम भी यहाँ पर आपके लिए भेज रहे हैं गेट वेल सून विशेस कभी कभार होता है व्हेन यू वेक अप नींद से तो मूड जो है वो एकदम सेम नहीं रहता है लेकिन यहाँ पर गानों का कारवां ऐसा चलेगा कि आपका मूड भी एकदम सेट हो जाएगा वैसे अभी के लिए तो थर्सडे आफ्टरनून है एंड यू आर कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ सो सेंडिंग लोड्स ऑफ लव एंड लोड्स ऑफ गुड विशेस टू यू विजया जी हैव अ ग्रेट टाइम रेडियो मस्ती के साथ वीना जगेसा बेलवी मोहल से हमारा साथ दे रही हैं और कहते हैं सभी परिवार के नाम एक स्वीट सा गाना याद कर रही हूँ सभी दोस्तों को एंड ऑफकोर्स फॉर रेडियो मस्ती टीम थैंक यू जी साथ देने के लिए शुक्रिया आर एम टू रेडियो मस्ती आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशन 5499 1294 पर
4: म्यूजिक ऑल डे

0: चेक योर टाइम, इट्स एग्जैक्टली 4 पीएम। आइए सुनते हैं समाचार आस्था के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार या नमस्कार आप सभी सुनने वालों को, जहां 4 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री दफ्तर के मुताबिक कल रात देश में हालात काबू में रहे और किसी बड़ी घटना की खबर नहीं मिली। कर्फ्यू कल शुक्रवार 16 अक्टूबर तक रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम हालात पर

0: पर लगातार नजर रखे हुए हैं और अधिकारियों के संपर्क में हैं। इस बीच कास्कावेल, ग्रोकायू, सुल्फेरिनो, मोतेबिलू और श्रेमांग्रोनी में गन्ने के खेतों में आग लगने की घटनाएं सामने आई, जिन पर जल्द काबू पा लिया गया। कर्फ्यू तोड़ने के आरोप में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 9 को हिरासत में रखा गया और आज अदालत में पेश किया गया। बाकी लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री दफ्तर ने लोगों से सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने की अपील की है। कोलोवियो में गोली लगने से घायल इलुजी टोमा की हत्या में लगातार सुधार। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने बताया कि आज सुबह इलुजी ने सहारे से चलना शुरू किया और पानी भी पी पा रही है। उनके दोनों हाथ और पैर भी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। गंभीर चोटों और मुश्किल ऑपरेशन के बाद इसे एक बड़ी प्रगति माना जा रहा है। देश में हाल की हिंसा और अशांति की घटनाओं में 16 नाबालिगों के शामिल होने पर ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन ने गहरी चिंता जताई। आज जारी एक बयान में माता पिता से अपने बच्चों की सुरक्षा पर खास ध्यान देने की अपील की गई है। देश में हाल की घटनाओं के बाद पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की बिक्री पर नए नियम लागू। आज 15 अक्टूबर से इन तीनों को डिब्बों में खरीदने के लिए नई शर्तों का पालन करना होगा। अधिकारियों के मुताबिक इसका उद्देश्य इन चीजों के खतरनाक इस्तेमाल को रोकना है। हालांकि गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये थी कुछ स्थानीय खबरें और अब विदेश की खबरें चलिए सुनते हैं निर्मा के साथ।
1: पाकिस्तान के पेशावर में एक स्कूल की छत गिरने से 29 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक महिला शिक्षक भी शामिल हैं। हादसे में 29 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर है। बच्चों की उम्र 6 से 12 साल के बीच बताई गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रशिया के तेल ठिकानों पर फिर हमले करने का ऐलान किया है। उन्होंने अमेरिका पर मदद और खुफिया जानकारी रोकने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति के मुताबिक अमेरिका की अपील पर यूक्रेन ने 3 दिन तक हमले सीमित रखे, जबकि रूस यूक्रेन की ऊर्जा ठिकानों पर हमले करता रहा। वहीं रूस का दावा है कि एक शहर की एक तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन मिसाइलों और यूक्रेन से हमला करने की कोशिश की गई।
0: तो ये थी कुछ देश की खबरें निर्मा के साथ। इसी के साथ ये खबरें समाप्त होती हैं और अब बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। तिरासी साल की 83 years old की श्रीमती पवित्रा देवी बोहरन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम किसुंदयाल, लोग उन्हें सरिता के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थिक कल शुक्रवार 16 अक्टूबर को दिन के एक बजे एलियंसन्स बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदगौद की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। डर्बी स्ट्रीट फॉरेस्ट साइड में 70 years old के श्री दिलीप मुचुराम की मृत्यु हो गई है। वे पहले CNT में काम किया करते थे। उनके अर्थिक कल दिन के एक बजे उन्हीं के मकान फॉरेस्ट साइड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगहा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: Raftaar Vibes, Filmy Rides, RM2.

0: Avatar vibes. Filmy rides.
1: RM2.
2: शकी उत्तम जी स्टूडियो के घर में 4:08 हो चुके हैं. विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून. नमस्कार और गणेशा का प्रणाम. जी हाँ दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे म्यूजिक लवर्स? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड बाय योर साइड. मौसम भी अच्छा है, म्यूजिक भी बढ़िया बढ़िया लेकर आई है आप लोगों के लिए ऑन रेडियो मसी. एंड आई होप दैट यू हैड अ गुड डे एट वर्क. सो एवरीवन इज गोइंग बैक होम. बहुत सारे लोग जो हैं ऑफिस की छुट्टी हो जाती है 4 बजे, सो गेटिंग रेडी टू गो बैक होम. सो आई एम हियर. यस, आई एम हियर विद सम लवली अ बंच ऑफ ब्यूटीफुल म्यूजिक टू गिव beautiful company to go back home. तो चलिए जी, आज थर्सडे 15 अक्टूबर 2026, आप सभी लोगों का स्वागत है इन योर रफ्तार वाइब्स, जहां पे गिनिशा लेके जाते हैं ऑन अ फिल्मी राइड्स.

0: म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: टाइम टू बीटा चला जा रहे हैं, 4:15 तो बज चुके हैं। एंड यस टू ऑल आवर लिसनर्स जो अभी गाड़ी में है, गाड़ी चला रही है, गोइंग बैक होम, सो ऑल ड्राइवर्स ड्राइव केयरफुली एंड यस आराम से गाड़ी चलाना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हाइल ड्राइविंग ऑलवेज मेंटेन डिस्टेंस। अगर अननेसेसरी लेन चेंज करना ज़रूरी नहीं है तो चेंज ना कीजिए। एंड ऑफकोर्स चेंज करना है तो ऑफकोर्स यू नीड टू गिव द प्रॉपर सिग्नल्स एंड ऑफकोर्स। तो चलिए जी, अभी फिलहाल के लिए जस्ट अ रिमाइंडर कि आपको 8:30 से पहले घर में पहुँचना है, घुसना है, और उससे पहले कोई भी अगर कोई काम है, कोई चीज़ ज़रूरी है, कहीं पर जाना, कुछ खरीदना वरीदना, सो डू इट बिफोर इन प्रायर अगर ज़रूरी है तो, अदरवाइज जस्ट गो डायरेक्टली होम एंड बी सेफ एंड जस्ट बी होम विथ योर फैमिली एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ and protect your family, my dear. And of course, Radio Mist is always here to share the latest news aap logon ke saath and some good music as well.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: एंड ऑन द 31st ऑफ अक्टूबर को भाविक आर्या और गौरी माधुरी की खास जोड़ी संगीत भक्ति और ऊर्जा से भरी शाम का हिस्सा बनी। टिकट्स अवेलेबल ऑन ticketbox.mu और कॉल ऑन 5508-3602।
1: इगो यात्रा के मतलब है नवा अनुभव, अपन संगी वक्त बिताई के और हर पल के मजा ले के और कबो कबो एगो बेहतरीन बिजनेस अवसर के फाइनलाइज करे के भी। उहे खातिर कोनो भी अनजान परेशानी के इस सब खास पल के मजा खराब नहीं होई दी है। सिकुम के स्पेशली डिजाइन ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान पर भरोसा करे जिकर से अपन यात्रा बेफिक्र होके सकबा करे। यात्रा के पूरा मजा ली है सिकुम तोहर ध्यान रखी। हमनी से संपर्क करे या हमनी से भेंट करे खातिर sikkim.mu पर जाई है। नियम आ शर्त लागू बाटे। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकुम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
3: RM2 रेडियो मस्ती।

0: सच ब्यूटीफुल एंड मेसमराइजिंग गाने लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के लिए ऑन RMTO रेडियो मस्ती जहां दोस्तों. फिलहाल के लिए लेट्स बिगिन अ गेम. जस्ट टू रिमाइंड यू, ये जो इतने दिनों से आप सुन रहे थे कि दैट्स गोइंग टू बी द डांडा नाइट एट सेंटर पॉइंट, इट हैज बीन पोस्टपोन फॉर द 24th ऑफ अक्टूबर. यस, सो यू कैन जॉइन अस ऑन सैटरडे 24th ऑफ अक्टूबर फ्रॉम 6 PM एट सेंटर पॉइंट Trianon फॉर एन इवनिंग फिल्ड विद वाइब्रेंट कलर्स, फेस्टिव, और वहां पे बीट्स एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स होंगे. सो इट्स अ चांस फॉर यू राइट नाउ टू विन, टेक अ पार्ट इन द रेडियो गेम जहां पे हम शुरू कर रहे हैं एक गेम आपके और हमारे बीच में. और आप अगर जीत गए तो आप जीत सकते हैं वाउचर वर्थ 1,500 rupees ऑफर्ड टू यू बाय सेंटर पॉइंट. जी हाँ, द जो डांडिया नाइट होने वाला था, यस, ये पोस्टपोन हो चुका है फॉर सैटरडे 24th ऑफ अक्टूबर इंस्टेड ऑफ दिस सैटरडे. सो मैं आपको बता दूं, जहां हर ताल में है जश्न और हर कदम में है रंग, वहां पे आप जा सकते हैं सेंटर पॉइंट डांडिया नाइट. वन इवनिंग वन रिदम एंड एन एक्सपीरियंस टू लिव हैपनिंग ऑन 24th ऑफ अक्टूबर. पोस्टपोन हो चुके हैं, इंस्टेड ऑफ 17th इज गोइंग टू हैपन ऑन द 24th ऑफ अक्टूबर. सो जस्ट फॉर नाउ आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बन सकते हैं आज का लकी विनर इन योर रफ्तार वाइब्स. पूछेंगे बहुत ही आसान सा सवाल और आपको हमें जवाब देना है ऑन 5499-1294 पर 5499-1294. यस, हम आपको सुनाएंगे एक डायलॉग टेकन फ्रॉम अ मूवी जहां पे यू जस्ट हैव टू टेल मी ये कौन से एक्टर की आवाज है.
1: जिंदगी में जब कोई पैटर्न बनता या कोई आदत बनती दिखाई देना तो उसके बारे में अच्छी तरह से सोचना चाहिए. Genius is about knowing when to stop.
0: बिल्कुल जी, यू जस्ट हैव टू टेल मी ये जो आवाज़ अभी हमने आपको सुनाया है, इट्स द वॉइस ऑफ विच एक्टर. यू हैव टू सेंड मी द राइट आंसर ऑन 5499-1294 पर 5499-1294 फुल नेम और फुल एड्रेस के साथ सेंड मी द राइट आंसर. एंड यस, ट्राई योर लक, यू नेवर नो, यू कैन विन अ वाउचर वर्थ 1,500 rupees ऑफर्ड टू यू बाय सेंटर पॉइंट. यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज द वॉइस एंड टेल मी ये किसकी आवाज़ है.
1: जिंदगी में जब कोई पैटर्न बनता या कोई आदत बनती दिखाई देना तो उसके बारे में अच्छी तरह से सोचना चाहिए. Genius is about knowing when to stop.
0: तो चलिए जी, ये खूबसूरत सा गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे टू ऑल दोज जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं. 5499-1294 सेंड मी द राइट आंसर फुल नेम फुल एड्रेस के साथ. बेस्ट ऑफ लक टू यू माय डियर.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स
1: और एम2
2: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट. This magazine was brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
3: Well, so abhi 4:42 ho chuke hain. You're listening to your number one radio station, RM2 Radio Message. Jahan dosto, filhal ke liye chaliye, let's check it out ki aaj ke latest sports news kya hai.
4: Sports news.
5: Radio Musti in the mix.
3: बिल्कुल जी. अरविंद जी जो है ऑल सेट फॉर सम लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़. गुड आफ्टरनून टू यू.
6: गुड आफ्टरनून आपको. गुड आफ्टरनून आरएम2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. कल बताए थे, आज भी बता रहे हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्राइसिस है. एक तो पिछले 5 मैचों में मैनचेस्टर यूनाइटेड की जीत नहीं हुई और हाल ही में लिजांड्रो मार्टिनेज ने क्लब येगाशी के बारे में जो कहा उसको लेकर अब बाकी लोग भी बातें करने लगे हैं. मैनचेस्टर यूनाइटेड का पूर्व कप्तान रॉय कीन ने बताया कि मैनचेस्टर इज ए क्लब लाइक ए सर्कस. जब लिजांड्रो मार्टिनेज ने क्रिटिसाइज किया, मार्टिनेज ने जो कुछ कहा एटलेटिको मैड्रिड वाले मैच के बाद उसको लेकर क्लब मैनेजमेंट नाराज हैं और खासतौर पर टेक्निकल डायरेक्टर को लेकर जो बातें हुई उसको लेकर अब आगे चलकर फैसले लिए जाएंगे. जेसन विलकॉक्स के बारे में कहा गया कि वो नए खिलाड़ियों को लाने में हिचकिचा रहा था और चैंपियंस लीग फुटबॉल मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल रहा है, इसीलिए नए खिलाड़ियों को लाना जरूरी था. जेम्स विलकॉक्स वही हैं जिसके बारे में अमोरिम ने इधर उधर कहा था और एक दिन के बाद अमोरिम को जाना पड़ा. तो ऐसे में लिजांड्रो मार्टिनेज को भी अब बच के रहना होगा. फीफा का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है. इन्फांटिनो फिर से चुनाव में खड़ा होगा और उसके खिलाफ कौन आएगा अभी तक पता नहीं. आज फीफा काउंसिल मिल रही है और ये पहली बार है जब से फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज परियोजना को लेकर इन्फांटिनो आया था, जिसको लेकर क्राइसिस हुई थी और बहुत गेम लीडर जैसे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया से उसको जाने के लिए कह रहे थे. लेकिन अभी इन्फांटिनो वहां आएगा और इन सब का सामना करेगा. ऐसे में खबर है कि 3.4 बिलियन डॉलर पैसे दिए जाएंगे सभी देशों को फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए और इन्फांटिनो ये फैसला ले रहा है. अभी इन्फांटिनो के खिलाफ वेंगे का नाम सुना जा रहा है लेकिन वेंगे ने अभी तक कुछ खास कहा नहीं, आने वाले दिनों में पता चलेगा. आज रात यूईएफए यूरोपा लीग के कई मैच खेले जाएंगे. इनमें कुछ महत्वपूर्ण मुकाबले इस प्रकार हैं: लियों क्रिस्टल पैलेस का स्वागत करेगा और भी साल्सबर्ग एसी मिलान, फिर टोरिनसे टीम संडरलैंड का स्वागत करेगा, यूनियन सेंट जिलोज रियल सोसिएदाद, बेनफिका सेल्टिक, बोर्नमुथ स्टुमक्राज, सेल्टा विगो यूवेंटुस, फेरेनवारोस प्लाजेन, होफेनहाइम बेसिक्टास मार्सेई ओलंपियाकोस के खिलाफ खेलेगा और रेन का मुकाबला क्रेटे टीम से है. ये कुछ मेन फीचर्स हैं यूरोपा लीग में. यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग का लीग स्टेज आज से शुरू होगा. इनमें सीएसके और मोनाको के बीच मैच है. अन्य मैचों में लुगानो रेड स्टार, पनाथिनाइकोस बोराच, फिर अटलांटा पाफोस ब्राइटन, कोनो जालगिरिस के खिलाफ खेलेगा 20 का मुकाबला टून से. ये कुछ मेन फिक्स्चर्स हैं आज कॉन्फ्रेंस लीग को लेकर. वैसे यूरोपा लीग के लिए जो पहले मैच खेले गए थे उनमें यूवेंटुस क्रिस्टल पैलेस, स्पार्टा प्राग बेसिक्टास, यूनियन सेंट जिलोज, फेरेनवारोस बेनफिका, बायर 04, फिर क्रेटे बोर्नमुथ, लियों टोरिनसे, ओलंपियाकोस साल्सबर्ग, ओमोनिया संडरलैंड, ये सभी लोग जीत पाए थे.

0: तो आज दूसरा मैच है लीग स्टेज का। टेनिस की बात करें, इधर क्वार्टर फाइनल है, अभी चल रहे हैं शंघाई मास्टर्स, और आज जो दो क्वार्टर फाइनल खेले गए, एक में दाविदोविच फोकिना ने रिया को हराया, वैसे मैच को रोका गया रिटायर्ड हर्ट, तो दाविदोविच फोकिना क्वालिफाई सेमीफाइनल के लिए। सेमीफाइनल में पहुंचा वर्ल्ड नंबर वन वेरेव, उसने डेमिनो को 6-4 से हराया। आज ये दो क्वार्टर फाइनल खेले गए और कल भी बाकी क्वार्टर फाइनल खेले जाएंगे। वुहान ओपन में लड़कियां हैं, जहां पर विटोलिना, श्नाइडर, ओस्टापेंको, फिर अभी इस समय श्वातिक की जीत हो रही है, बाकी लोग जीत गए। अनली जिसने सबालेंका को हराया था, उसका मुकाबला जेन से हो रहा है, और सक्कारी ने पोहनकोवा को हराया। चाउलिंस्का की जीत हुई, करताल ने भी अपना मैच जीता। ये कुछ मैच हैं जो खेले जा रहे हैं, एक शंघाई में और वुहान में भी। और फाइनली क्रिकेट टी20 सीरीज जो टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जा रहा है, कल टीम इंडिया की हार हुई चौथे मैच में। इस प्रकार अब सीरीज 2-2 पर है। आखिरी डिसाइसिव निर्णायक टी20 मैच शनिवार को खेला जाएगा, जिसमें जो भी जीतेगा वो ये सीरीज जीत जाएगा। वेस्ट इंडीज के लिए साई होप ने कल बहुत अच्छा खेला और उसके शतक के बदौलत वेस्ट इंडीज ने टीम इंडिया को हराया। तो अभी सब बराबर 2-2, जो जीतेगा वही सिकंदर पांचवे और आखिरी मैच में। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। आई विल कैच यू वेरी सून। टिल देन एंजॉय द म्यूजिक ऑन RM2। टेक केयर, बाय बाय।
1: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

गुड आफ्टरनून जी, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती। जी हाँ दोस्तों, एंड दैट्स योर लवली शो रफ्तार वाइब्स हैं और धीरे धीरे हम चला रहे हैं आपको इस खूबसूरत म्यूजिक के साथ। तो चलिए जी, आपका फिर से स्वागत है इन द सेकेंड आवर ऑफ योर रफ्तार वाइब्स।

बिल्कुल जी, हम भी जस्वी फूड टू आर सच अ लवली सॉन्ग इन द लवली वॉइस ऑफ अरिजीत सिंह आप लोगों के लिए राइट नाउ. टू दोस हु आर ट्रैवलिंग राइट नाउ, हो सकते हैं काम से घर वापस जा रही है, बिल्कुल जैसे बेनी शर्मा, देव, नील, आप लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे एमबीसी के जितने भी कलीग्स हैं, थैंक यू सो सो मच साथ देने के लिए. एंड कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन, एंड दैट्स आवर इंटू रेडियो मिस्सी. इट्स मेकिंग निशांत द माइक एंड हैविंग अ गुड टाइम विद ऑल ऑफ यू माय डियर एंड लवली पीपल आउट देयर. सो थैंक यू सो मच साथ देने के लिए.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

सच ब्यूटीफुल एंड मेसमराइजिंग गाने आपको सिर्फ और सिर्फ आरएनटी रेडियो मस्ती पर ही सुनने को मिलते हैं. सो सवा पांच तो बज चुके हैं, आज थर्सडे है 15 अक्टूबर 2026. टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, आई जस्ट वांट टू विश यू अ मैजिकल बर्थडे राइट नाउ ऑन रेडियो मस्ती माय डियर, एंड एंजॉय टू द मैक्स इट्स योर डे टू डे, मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज. और अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने कॉलिग्स के नाम ली थी, जो वो बोल रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं कि गिन्नी हमने अपना नाम नहीं सुना रेडियो पर, तो लीजिए दोबारा से फिर से बोल लेते हैं.

मिस्टर बेन, माडेव, नील, इन तीनों के लिए एक खूबसूरत सा गाना. बिल्कुल जी. सो नील इज इट फाइन राव, बेन ने सुना अपना नाम, महादेव माडेव एंड वी हैव नील. ये जो तीनों के तीनों हैं आप प्लीज़ मुझे कन्फर्म कर लीजिए, क्योंकि ये कंप्लेंट भी तो कर रहे हैं कि भाई हमने तो अपना नाम नहीं सुना है. चलिए जी, ये अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली गामा सा आमिला की तरफ से, जो बोलते हैं ऑन दिस ऑस्पिशियस डेज विशिंग एंटायर फैमिली अ पायस नवरात्रि, एंड डेडिकेट स्पेशल सॉन्ग टू हमारे परिवार के लिए और दोस्तों के लिए. एंड शी इज ऑल्सो टेलिंग अस टू लेट द पीपल नो कि हैवी ट्रैफिक एट फिनिक्स राइट नाउ ड्राइविंग वाइल लिसनिंग टू दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग सेलेक्शन. एंड ऑल्सो शी वांट टू विश अ हैप्पी बर्थडे टू वीमा, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स फ्रॉम गामा सा फैमिली. तो चलिए जी, कोई भी ट्रैफिक रिगार्डिंग मैसेज अगर आप हम तक पहुँचाना चाहेंगे तो नंबर इज 5499 1294 पर.

0: November. जी हाँ दोस्तों, आई कैन ऑलरेडी फील द वाइब्स, स्पार्कलर्स एंड यस ऑल द बॉलीवुड सिंगर्स एंड एवरीथिंग. तो चलिए जी, गेट योर टिकट्स ऑन रिजो टायो otayo.com पर. एंड या वी आर गोइंग टू बी विद यू ऑल आवर्स ऑफ रेडियो मस्ती टू सेलिब्रेट दिवाली ऑन 14th ऑफ नवंबर. तो चलिए जी, अभी 5:27 हो चुके हैं. कहाँ तक पहुंचे मेरी जान? सारे ड्राइवर्स, हाँ जी आपसे बात कर रही हूँ मैं. सो ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चलाना, धीरे धीरे, हौले हौले, बट डू मी अ फेवर प्लीज. जितने भी हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, 8:30 के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है. कोई इंपॉर्टेंट काम है तो सब उससे पहले ही करना, जरूरत पड़े तभी घर से निकलना. 8:30 से पहले ही अपना सारा काम खत्म कर लेना. उसके बाद ऑफकोर्स यू जस्ट हैव टू बी सेफ एट होम. प्रोटेक्ट योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योर फैमिली, एंड ऑफकोर्स वी आर हियर रेडियो मस्ती टू बी देयर टू गिव यू अ गुड कंपनी. वी आर हियर टू स्प्रेड लव. सो प्यार कर.
1: You're listening to a Radio Mastery.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
1: RM2, फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
2: बिल्कुल जी, लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फैशन टिप्स राइट नाउ, जस्ट लाइक एवरी आफ्टरनून इन योर रफ्तार वाइब्स। अभी तो 5:45 हो चुके हैं और जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रि चल रही है, सो नवरात्रि ऑफिस फैशन टिप्स लेकर आई हैं फॉर यू ब्यूटीफुल लेडीज। जी हाँ, एलिगेंट एथनिक वेयर आप पहन सकते हो, यानी कि कुर्ती विथ प्लाजो, अनारकली या सिंपल कुर्ता सेट जो है आप ट्राई कर सकते हैं। यू कैन लुक वेरी नाइस फॉर दिस नवरात्रि सीजन एंड फेस्टिव कलर्स रेड, येलो, पिंक, ग्रीन और रॉयल ब्लू से नवरात्रि वाइब्स हमेशा आते ही रहते हैं। मिक्स एंड मैच भी हो सकते हैं, ट्रेडिशनल कुर्ती को फॉर्मल ट्राउजर्स के साथ स्टाइल करो फॉर अ स्मार्ट ऑफिस लुक, या इवन जीन्स के साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, स्मॉल झुमकास, बैंगल्स या स्टेटमेंट इयररिंग्स ऐड करो। और कंफर्टेबल जो फुटवेयर है जैसे कि जुटीज, पंजाबी जुटीज, कोल्हापुरीज या इतने का जो फ्लैट शूज होते हैं वो ट्राई कर लो। एंड फेस्टिव मेकअप ऑफकोर्स, लाइट काजल, न्यूड लिपस्टिक एंड स्मॉल बिंदी से आपका लुक जो है बिंदी के साथ कंप्लीट हो जाता है। सो कीप इट प्रोफेशनल, हैवी लहंगा के बजाय लाइट वेट एलिगेंट आउटफिट्स आप हमेशा प्रेफर करो। सो स्टाइल मंत्रा जो है थोड़ा ट्रेडिशनल, थोड़ा प्रोफेशनल, नवरात्रि में ऑफिस लुक हो फेस्टिव और ग्रेसफुल।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
3: Join the Radio Vasi team for a grand, unforgettable Diwali night. 14th of November at Balanchina Hall, rooftop, Phoenix. Karenge masti, karenge dhamal. Who's joining the party? Ab agar ye hai sawal, to saath dene ke liye aa rahe hain Bollywood singers Vineet Singh aur Anita Bhatt. Bollywood ka music karenge rock and roll. Hoga international DJ, bajenge dhol. Also joining in are local DJs DJ Neil K and DJ Spike EV.
4: Crewmania Dance Academy aur honge selfie corners.
3: The Grand Diwali Night as from 6 PM at Valanchina Hall, rooftop, Phoenix.
4: Radio Masti ke RJs ke saath hogi full on entertainment.
3: Great surprises, Bollywood

तो चलिए जी, ये इतने खूबसूरत खूबसूरत गाने हम आपको सुना रहे हैं। जी हाँ, हमने भी दे दिया, अपना दिल भी आपको दे दिया। दिलो जान से प्यार करते हैं आप लोगों से, तभी तो इतने खूबसूरत गाने लेकर आते हैं। जस्ट फॉर यू माय ब्यूटीफुल पीपल, टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस, टू ब्रिंग गुड वाइब्स टू योर लाइफ। तो चलिए जी, माय नेक्स्ट वन गोज आउट टू एवरीवन फ्रॉम रीटा, जो मिलानो इटली से हमारा साथ दे रहे हैं, एंड श्याम देवी चंद जी।

0: enjoying the program और ये गाना आपके लिए आपके परिवार वालों के लिए ललिता जी टंजी फॉर यू एंड योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स थैंक यू सो सो मच और फिलहाल के लिए चलिए जी 5:57 हो चुके हैं वी गोना मूव टुवर्ड्स द 6 के समाचारों की ओर और उसके बाद ऑफ कोर्स आई गोना बी हियर विद सम गुड म्यूजिक स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन एंड
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती
0: एग्जैक्टली

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
3: Radio Masti. शाम के ठीक 6 बज रहे हैं, समाचार सुनिए।
4: नमस्कार, 15 अक्टूबर शाम 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। देश में पिछली रात हालात पहले से काफी शांत रहे, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा। करीब 10 इलाकों में अशांति फैलाने की कोशिशों पर पुलिस ने जल्द काबू पाया, सरकार अब संदिग्धों के खिलाफ पोटा के तहत कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। 14 अक्टूबर की शाम से अब तक 42 लोग गिरफ्तार, इनमें एक नाबालिग भी शामिल, 37 लोग हिरासत में, जबकि कर्फ्यू तोड़ने के मामले में 12 लोगों को अदालत में पेश किया जाएगा। कॉलोवियो में एलोजी टोमा को गोली लगने के मामले में आईपीसीसी ने दो अलग अलग जांच शुरू की, सेफ सिटी कैमरों की फुटेज मांगी गई और पुलिस स्टेशन से दस्तावेज जुटाए गए, जांच से जुड़े कुछ पुलिस कर्मियों के विदेश जाने पर भी नजर रखने के लिए कदम उठाने को कहा गया है। देश में शांति और भाईचारा बनाए रखने की कोशिशों को कलाकारों का समर्थन, जेजी ब्रेजुम और यूनियन डेज ऑफिस के सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की और सरकार को अपना सहयोग देने की इच्छा जताई। पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल की छत गिरने से 30 लोगों की मौत, इसमें एक महिला शिक्षक भी शामिल। नमस्कार, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि पिछली रात देश में हालात पहले से काफी शांत रहे, करीब 10 इलाकों में अशांति फैलाने की कोशिशों पर पुलिस ने जल्द काबू पा लिया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस

0: बात पर राहत जताया है कि कल गिरफ्तार किए गए लोगों में कोई नाबालिग नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार संदिग्धों के खिलाफ पुटा के तहत यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत कार्रवाई करने की संभावना पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री ने पुलिस और सुरक्षा बलों की मेहनत की सराहना की और कर्फ्यू का पालन करने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। फिलहाल हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को सुनते हैं।
1: Que la nuit dernière fin déroule bien plus calmement. Je remercie tous les Mauriciens qui nous observent le couvre-feu dans l'ordre et la discipline. Je remercie aussi les forces de l'ordre qui viennent renforcer l'efficacité de leur terrain. Finalement, une tentative pour mettre des ordres dans moins qu'une dizaine de localités qui viennent maîtriser rapidement par la force policière KSMF. Finalement, 26 arrestations pour violation du curfew et Moka Djerou avec soulagement qui peine aucun mineur parmi. Mon avis informe la population qui m'a l'autorité concernée et envisage poursuivre les métiers sous Prevention of Terrorism Act, c'est-à-dire la loi contre le terrorisme. En toute transparence, mon besoin est que la police et une force spéciale puis avancer le ban l'enquête, le ban baron de la drogue là, qui a l'origine de tout ça désordre là et qui fait servir le ban enfants dans un but criminel. Comme vous autres connaissez, il y a beaucoup d'arrestations et démantèlement de ban réseau de la drogue, mais laisse-moi dire lui clairement, pas pour une aucun répit pour ban mort sans la drogue, peine en place que je peux capable cacher. Travail a commencé et pas pour arrêter jusqu'à tout sa bande mort sans la drogue là, derrière barreau. Je remercie encore une fois la force vive et tout le monde qui finit mobilisé dans notre quartier et dans notre propre famille pour éviter la violence. Je refais l'appel à chaque Mauricien pour qu'ils aient respecté le curfew aujourd'hui soir dans la même discipline et solidarité qui nous peut trouver depuis des jours. Bon, nous autres, rendez-vous demain, après conseil des ministres, pour un suivi de la situation. Bonne soirée et merci.
0: देश में मौजूदा हालात के मद्देनजर जगह जगह पर पुलिस के तैनाती हैं। सुनते हैं डीसीपी जगरू को।
2: Quel objectif ça couvre là?
3: Connais, nous mettons le commissaire met un l'autre point de couvre pas pour de rien. Parce qu'il y a une démonstration de bonnes personnes le chemin, et les bonnes personnes peuvent obstruer le chemin.
4: पुलिस कमिश्नर ने यूं ही एक कर्फ्यू लागू नहीं किया है। सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बाधाएं डाल रहे हैं जो गैर कानूनी हैं। सड़कों पर लोग पहिए जला रहे हैं। पुलिस स्टेशनों में आग लगाई गई, पुलिस की गाड़ियां जला दी गई। पुलिस कमिश्नर के पास कर्फ्यू लगाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। प्रधानमंत्री ने जैसे बताया कि ज्यादातर लोगों ने कर्फ्यू का पालन किया है। कर्फ्यू के दौरान लोगों को घर के अंदर सुरक्षित रहना चाहिए और पुलिस पूरे देश में कष्ट लगाती है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। हम जनता से मांग करते हैं कि आज रात भी कर्फ्यू लागू होगा और इसका पालन करना चाहिए।
3: Le couvre-feu ce soir et demain soir, nous demandons à la population qu'ils aient respecté sa bande là.
0: 14 अक्टूबर की शाम से पुलिस की कार्रवाई के दौरान 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक नाबालिग शामिल रहा। गिरफ्तार लोगों में से 37 को हिरासत में रखा गया। इस बीच डीपीपी दफ्तर ने कर्फ्यू तोड़ने के मामले में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया है। इन्हें कल शुक्रवार 16 अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाएगा। इस अपराध के लिए अधिकतम 5 साल की जेल की सजा हो सकती है। हम आपको बता रहे थे कुछ देर पहले सुर्खियों में कि देश में हाल की घटनाओं के बाद पेट्रोल डीजल और केरोसिन की बिक्री पर नए नियम लागू किए गए हैं। आज 15 अक्टूबर के इन तीनों को डिब्बों में खरीदने के लिए नई शर्तों का पालन करना होगा। अधिकारियों के मुताबिक

0: इसका उद्देश्य इन चीजों के खतरनाक इस्तेमाल को रोकना है। हालांकि गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
1: एबेन के इस पेट्रोल पंप पर निर्माण क्षेत्र में काम करने वाला एक ग्राहक केवल 2 कान डीजल ही खरीद सका, यानी उसे सिर्फ 20 लीटर डीजल मिला। इस गुरुवार से कैन में ईंधन खरीदने के लिए सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। ग्राहकों को अपना पहचान पत्र और ऐसा प्रमाण दिखाना होगा जिसे ये साबित हो सके कि ईंधन किसी अधिकृत व्यावसायिक गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पात्रों में ईंधन बेचने वालों को खरीदार के कॉन्टैक्ट, उसकी व्यावसायिक गतिविधि, संबंधित उपकरणों और लेन देन की पूरी जानकारी भी दर्ज करनी होगी। दानी केंद्रामा कहते हैं, वे हमें आईडी कार्ड देते हैं, हम आश्वस्त करते हैं कि वे ही लोग हैं। उन्हें बताना होगा कि इसका प्रयोग वे कैसे करेंगे। कैमरा है, देखते हैं कि कोई समस्या तो नहीं है। 20 से ज्यादा लीटर तक नहीं दे रहे हैं। ईंधन रखने वाले बर्तनों को उपयुक्त होना चाहिए और सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना भी जरूरी है। कुछ लोग बोतल लाते हैं, उनमें हम नहीं देते, ऐसे पात्र में देते हैं जो सच में काम के लिए प्रयोग किया
2: जाएगा।
1: ये पाबंदियाँ केवल कैन या अन्य पात्रों में ईंधन की बिक्री पर लागू होती हैं। वाहन चालकों को पहले की तरह सामान्य रूप से अपने वाहनों में ईंधन भरने की अनुमति है।
0: कॉलोव्यू में पुलिस की गोली से एलोजी टोमा के घायल होने के मामले में इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन ने 2 अलग-अलग जांच शुरू की है। कमीशन को 2 शिकायतें मिली हैं, जिनमें एक उस वैन के चालक की है जो घटना के समय एलोजी को घर छोड़ने जा रहा था। आईपीसीसी ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मांगी है। जांच अधिकारियों ने कॉलोव्यू पुलिस स्टेशन से इस मामले से जुड़े दस्तावेज भी जुटाए हैं। कमीशन ने पुलिस कमिश्नर कहा है कि जांच से जुड़े कुछ पुलिस कर्मियों के विदेश जाने की जानकारी देने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। हाल में घटनाओं के बीच शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए सभी का सहयोग जरूरी। इस सिलसिले में आज जेजीव रेजोम ग्रुप और यूनियन डेज ऑफिस के सदस्यों ने ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। उन्होंने देश में शांति और एकता बनाए रखने की सरकार की कोशिशों में अपना समर्थन और सहयोग देने की इच्छा जताई। इस हफ्ते की शुरुआत से अब तक गन्ने के खेतों में लगी आग से 17,450 टन गन्ना जल चुका है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान देश के पश्चिमी इलाकों में हुआ है, जहां सिंचाई के कई पाइप भी जल गए। कृषि मंत्री अरविंद बुले ने जांच आज गन्ना किसानों और कृषि उद्योग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। गन्ने की कटाई का काम अभी 50% पूरा हुआ है। कृषि सदन के मुताबिक जले हुए गन्ने को जल्द से जल्द काटना जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा गन्ने का इस्तेमाल किया जा सके। बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। एक हालिया अध्ययन के अनुसार मॉरिशस में डायबिटीज की दर घटी है, विशेषकर महिलाओं के मध्य। सुनिए रिपोर्ट।
1: न्यूग्रोव स्थित ये विशेष क्लिनिक उन 5 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में से एक है जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज के उपचार और देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फौजी पिहाली कहते हैं, मुझे चोट लगी थी, अस्पताल गया तब पता चला कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज है, तब से सभी इलाज करवा रहा हूँ, आँखों की जाँच आदि करवा रहा हूँ। ये बीमारी आमतौर पर वयस्क अवस्था में धीरे धीरे विकसित होती है। इसमें रक्त में शक्कर यानी ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से ज्यादा होता है। डॉक्टर मोहम्मद यासिया उजिया कहते हैं, अगर किसी को 8% से ज्यादा डायबिटीज का पता चलता है, तब उन्हें डायबिटीज सेंटर भेजा जाएगा, जहां उन्हें ज्यादा गहन सेवा दी जाएगी, जिससे उनका डायबिटीज नियंत्रित किया जा सके। फिर उन्हें उनके इलाके के हेल्थ सेंटर में भेजा जाएगा। प्रतिष्ठित चिकित्सा पत्रिका द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी में हाल में ही प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मॉरिशस में 12 वर्षों के दौरान मधुमेह के मामलों में 3% की अभूतपूर्व गिरावट दर्ज की गई है। इससे पता चलता है कि हालिया सर्वे में टाइप 2 डायबिटीज घटकर 19.9

0: प्रतिशत तक पहुंच गया है। पहले ये 23.3% था और प्रीडायबिटिक के लिए भी ऐसा ही है। 2009 में ये करीब 24.9% था और 2021 में किए गए सर्वे में ये 15.6% थी।
1: Donc là aussi, nous trouvons une stabilisation et ensuite une réduction de la prévalence des diabètes.
0: चिकित्सा के क्षेत्र में मिली ये उत्साहजनक सफलता आपसा इंटरनेशनल जैसे गैर सरकारी संगठनों के लिए भी प्रेरणादायक है। ये संगठन 3 वर्षों से ज्यादा समय से टाइप 2 डायबिटीज के खिलाफ लड़ाई में जुटा हुआ है। आपसा इंटरनेशनल की अध्यक्षा उद्रे अज कहती हैं, हमारे यहाँ सकारात्मक नतीजे देखे जा रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, वे अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सजग हैं। मॉरिशियनों को जांच करवाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि डायबिटीज खामोशी से फैलने वाली बीमारी है। इसके सिम्टम्स नजर नहीं आते और हमेशा इस जाल में लोग फंस जाते हैं। जब पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है, जटिलताएं शुरू हो जाती हैं। समय रहते जाँच करवा लेनी चाहिए। उचित उपचार और सही देखभाल से मरीजों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।
2: कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि देश में हाल की घटनाओं के बीच शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। इस सिलसिले में आज जेजी रिजम ग्रुप और यूनियन दिस ऑटिस के सदस्यों ने ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। उन्होंने देश में शांति और एकता बनाए रखने की सरकार की कोशिशों में अपना समर्थन और सहयोग देने की इच्छा जताई है।
3: 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने जेजी वगैजोम संगठन और कलाकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस मुलाकात का मकसद देश में हालिया घटनाओं पर उनके विचार सुनना रहा। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने उनके सुझावों को ध्यान से सुना और जानना चाहा कि अमन का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए वो अधिकारियों के साथ किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं। कैथोलिक आंदोलन जेजी ब्रेजुम, जिसमें तकरीबन 3,000 सदस्य हैं, उसने हालात को पुरसुकून बनाने में अपना योगदान देने का इरादा जाहिर किया।
4: L'écoute et la visite au terrain. Nous, dans cette région de l'île, et comment nous banzoum et que les familles aussi actives hein, au niveau des autres familles. Nous, on vit faire un appel aujourd'hui à toute la population mauricienne. Hein. Cet appel, c'est que toutes les familles nous capables vivre dans la paix. Et pour vivre dans la paix, moi, c'est important que chaque famille soit capable de réunir et surtout, guette d'autres enfants. Hein, bon, comment les enfants, il est important. Hein, comment, comment dire, et d'autres à vivre une valeur l'essentiel aujourd'hui.
3: कलाकारों की तरफ से सोशल मीडिया पर अभियान पहले से ही शुरू हो चुका है। कई मशहूर आवाजें और चेहरे आगे हैं ताकि लोगों तक अमन का पैगाम पहुंचाया जा सके, खास तौर पर नौजवानों तक।
5: Quand on est en colère, on écoute la musique qui fait au sens bien. Nous autistes, nous là pour ban jeunes, pour faire montrer si je pas qu'on joue la musique, nous pour montrer qu'il y a en tant que DJ, en tant qu'un musicien, montrer comment jouer la musique, faire participer pour être capable gagner sa feeling de la paix, de l'amour et de la sérénité dans eux-mêmes.
6: Pas capable, reste insensible à ce qui peut passer. Nous, ben, nous autistes, nous appelons, nous faisons appel à l'unité. Et tout le temps, le message est comme ça. Nous pas capable de dire que nous pas comprendre nous, benzen, nous pas tant d'autres, parce que là, la situation est faite que nous pouvons insister, rejoindre avec eux, regagner sa connexion là, pour nous capables de montrer eux qui nous là. Qui nous tendent la voix. L'île Maurice, c'est pour tout le monde. À nous construire ensemble et nous guetter l'avenir de nos pays.
3: डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने उनके इस कदम का स्वागत किया। उनका कहना है कि मुर्शन समाज में इन लोगों की मजबूत पहचान और परिवारों के बीच उनकी बात सुनी जाने की अहमियत नौजवानों को बुरी संगत के खतरों के बारे में जागरूक करने में मदद कर सकती है। उन्होंने सभी लोगों, खासतौर पर माता पिता से एक दूसरे को समझने और अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की।
7: Les présents dans différentes régions du pays et la voix être entendue par ben adulte et nous connaît également qui ben artiste je peux donner un coup de main depuis hier je peux lancer ben appel à l'apaisement je peux faire un appel à ben jeune pour parler

0: être manipulé. Donc, Saban Jimoun qui fait une rencontre, le premier ministre là, exprime le souhait de donner un coup de main, c'est déjà présent dans la communauté, dans tous les quartiers à travers l'île.
1: Je connais l'île Maurice, c'est mon pays, c'est mon content, mon pays, moi.
2: जमीनी सतह पर काम शुरू हो चुका है. प्रतिनिधि अपना अभियान जारी रख रहे हैं ताकि हालात फिर से पुरसुकून हो सकें और लोगों के बीच अमन, भाईचारा और एकता को बढ़ावा दिया जा सके.
3: चौदह अक्टूबर की शाम से पुलिस की कार्रवाई के दौरान 42 लोगों को किया गया है गिरफ्तार. इनमें एक नाबालिग शामिल रहा. गिरफ्तार लोगों में से 37 को हिरासत में रखा गया. इस बीच डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन DPP ने कर्फ्यू तोड़ने के मामले में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया है. इन्हें कल शुक्रवार 16 अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाएगा. इस अपराध के लिए अधिकतम 5 साल की जेल की सजा हो सकती है.
4: 14 अक्टूबर की शाम पुलिस द्वारा चलाए गए अभियानों के दौरान एक नाबालिग सहित 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार किए गए लोगों में से 37 को हिरासत में रखा गया है. इन पर कर्फ्यू का उल्लंघन करने, दंगों में शामिल होने और आक्रामक हथियार रखने जैसे आरोप हैं. वहीं कर्फ्यू का पालन नहीं करने के मामले में 12 संदिग्धों के खिलाफ DPP का कार्यालय मुकदमा चलाएगा. उन्हें कल शुक्रवार 16 अक्टूबर को इंटरमीडिएट कोर्ट में पेश किया जाएगा. सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. इसके तहत मोबाइल पुलिस गश्त बढ़ाई गई है. SMF और SSU की तैनाती की गई है. त्वरित कार्रवाई करने वाली टीमें लगाई गई हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई निगरानी भी की जा रही है. इसके अलावा स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की. उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की.
3: पाकिस्तान के पेशावर में एक निजी स्कूल की छत गिरने से 29 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक महिला अध्यापक भी शामिल है. हादसे में 29 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर है. बच्चों की उम्र 6 से 12 साल के बीच बताई गई है. बचाव दल ने मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम पूरा कर लिया है. तुर्की के इस्तांबुल में भारी बारिश और बाढ़ से 2 लोगों की मौत. शहर में पिछले 80 साल से ज़्यादा समय की सबसे तेज़ बारिश दर्ज की गई है. कई इलाकों में सड़कें और घर पानी में डूब गए, जबकि गाड़ियाँ पानी के तेज बहाव में बहती नजर आई. मरने वालों में 14 साल का एक लड़का भी शामिल, जिसकी पानी में बिजली का करंट लगने से मौत हुई है. और अब चले जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा.
4: आम हालत, मास्कारेंस के दक्षिण में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य हवा का असर है. अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और हल्की बारिश होगी. हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके खुली जगहों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है. समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे. खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है. तापमान, अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच. आज सूर्यास्त शाम 6:11 पर और कल सुबह सूर्योदय 5:38 पर.

तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे लुडोविक, उन्हें हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।

choc să mă cea suni. A venit de roze, roza nu la cavien vacuame, la cavien vacuame, iki anbi sa le ki, 91 years old ki, goindama ramsomi, goindama ramsomi, pe da isham kali mutu, logun he ate mani ki nam se adhik jante te ki mritu ho gai hai, unke arthi, kal din ke 10 baje unke bete, supaya kali mutu ke makan, la cavien vacua se ucha kar antim sans kal ke li, Phoenix ki shumshan bhumi li, jai jai gi cremation tomorrow at 10 a.m. Derby Street for a side me, Derby Street for a side me, 70 साल के, 70 years old के, श्री दिलीप मुचुराम की मृत्यु हो गई है, वे पहले CNT में काम किया करते थे, उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे, उन्हीं के मकान Derby Street for a side से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीकाहा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी, cremation tomorrow at 1 p.m. 83 साल की पवित्रा देवी बोगन की मृत्यु हो गई है, पैदा शाम बिचू की सुंदयाल, लोग उन्हें सरिता के नाम से अधिक जानते थे, उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे एलियनसन बोबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदुगौद की शमशान भूमि ले जाया जाएगी, क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. कैस्ट्रल रोड कॉम्बियाटो ब्रितानिया में 75 साल की 75 years old की तारामती भजन की मृत्यु हो गई है, पैदाइश नाम नारायण, लोग उन्हें प्रेमिला के नाम से अधिक जानते थे, उनके अर्थी कल दिन के एक बजे उनके पति जगदीश भजन के मकान ब्रितानिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तायाक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी, क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. बोबोआ सेंट पियामे 62 साल की 62 years old की देवी भटू पैदाइश नाम भदोरी, लोग उन्हें कविता के नाम से अधिक जानते थे, उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान बोबोआ सेंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोंस्टांस सेंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी, क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM. नंबर 16 एवेन्यू नबी Quand le vieux me, 70 साल की 70 years old की सीता बिसेसर की मृत्यु हो गई है, पैदाइश नाम अजोदा, उनकी अर्थी शनिवार 17 अक्टूबर को सुबह के 9:30 कॉलव्यू फ्यूनरल पॉलर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलव्यू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी, क्रिमेशन ऑन सैटरडे एट 9:30 AM. मताबदल स्ट्रीट विलनोमी बर्ग में 67 साल के 67 years old के धीरज मताबदल की मृत्यु हो गई है, लोग उन्हें अशोक के नाम से अधिक जानते थे, उनके अर्थी कल दिन के दो बजे उनकी पत्नी प्रेमिला माताबदल के मकान मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पृथ्वीलिया मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाया जाएगी, क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.

0: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri.
1: मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
2: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स
3: RM2.

6:31 हो चुके हैं. वेलकम इन द थर्ड आवर ऑफ योर रफ्तार वाइब्स. जी हां, सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग. नमस्कार, किनेशा का प्रणाम. रफ्तार वाइब्स स्टिल ऑन विद सम गुड गुड मेस्मराइजिंग गाने स्पेशली फॉर यू माय डियर. सो टू ऑल आवर डियर एंड लवली लिसनर्स, आई जस्ट वांट यू टू बी सेफ बैक होम. तो बस आराम से घर पहुंचना और अपनों के साथ अच्छा सा वक्त बिताना. एंड ऑफकोर्स आपको तो पता है कि गुड म्यूजिक के साथ हम भी तो साथ दे रहे हैं. इट्स मी किनेशा ऑन द माइक रात के 7 बजे तक.

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। हमने आपका साथ बहुत अच्छे तरीके से निभाया, यू सच ब्यूटीफुल एंड लवली गाने। फिलहाल के लिए कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम शो ऑन ऑर एंड टू रेडियो मसीह। आगे आएंगे अभी विकास आपका साथ देने के लिए।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Masti.
2: A very good evening, ladies and gentlemen. स्वागत आप सभी का. Yes, Evening Lounge, जहां पर गाने आपको relax जरूर feel कराएंगे और वहीं पर पूरे दिन की भाग दौड़ी के बाद अब tension को भबाए करने का वक्त आ गया है, क्योंकि आ गया है वक्त relax करने का, family के साथ वक्त बिताने का, safe और सुरक्षित रहने का, Bollywood गाने सुनने और दिल को थोड़ा सुकून देने का. So volume set करो, mood को fresh करो और ये जो वक्त है कर दो म्यूजिक के नाम.

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की।
0: RM2 Radio Mus

कैसा रहा आज का दिन? कुछ चीजें जो आपके सामने हुई और कुछ चीजें जो नहीं हुई, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी जो आज काम पे गए थे, बच्चों की छुट्टी और इतना सब कुछ पेंडिंग भी। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी हम शो आपने एक प्रॉपर प्रायोरिटी लिस्ट बना ली होगी कि कल होते ही सुबह क्या काम करना शुरू कर देना है, या फिर कई लोग ऐसे भी होंगे जो अभी काम को टैकल कर रहे हैं। जो भी हो, लेकिन अपनी प्रायोरिटी लिस्ट अपने हिसाब से जरूर सेट कर लें। अभी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं गानों के साथ।

0: सुनते रहो
1: Evening Lounge. RM2 Radio Masti.
2: अच्छा सोचिए कि अगर आज की शाम आपकी लाइफ की एक बॉलीवुड मूवी होती तो उसका टाइटल क्या होता? दिल से हैप्पी, लाइफ फुल ऑन, या फिर बस गाने और एक कप कॉफी या चाय। जो भी ये जो वक्त होता है ना, बहुत ही स्पेशल होता है। घर पर आकर बात करना कि आज काम में क्या क्या हुआ, या फिर क्या अच्छा हुआ क्या नहीं हुआ, या फिर क्या होना चाहिए था, बहुत सारी बातें हैं शेयर करने के लिए। बच्चे जो घर पर हैं उनसे कुछ बातें, एंड आते ही बस स्क्रीन पर सेट होना नहीं, लेकिन ज़रूरी है कि सब कुछ कल के लिए सेट करना।

ड्राइविंग के वक्त हाथ मत लगाओ, गाने का मजा तभी आता है जब डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंच जाओ। तो बस आपकी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। ड्राइव सेफ एंड एंजॉय द म्यूजिक।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: Evening Lounge.
1: RM2
2: Radio Masti.
1: ये म्यूजिक बहुत कमाल की चीज है ना, कुछ गाने सुनते ही वो सुकून वो चैन सा आ जाता है। और वैसे कानों के रास्ते सीधा दिल तक पहुंचना एक गाने ही जानते हैं, एक मेलोडी और याद आ जाती है किसी स्पेशल इंसान की, कोई ब्यूटीफुल मोमेंट या फिर वही पुरानी सी स्माइल। तो चाहे आप किसी के प्यार में हो या म्यूजिक के प्यार में, लेट द बॉलीवुड म्यूजिक मैजिक टेक ओवर। शाम है सुहानी और म्यूजिक दिल से।

0: Evening Lounge, Evening Lounge,
1: RM2,
0: Radio Masti.
2: भाई दिन भर अगर सोचे तो काम के लिए टाइम निकाला, दूसरों के लिए टाइम निकाला, लेकिन ये जो टाइम है ना, ये है मी टाइम। एक कप चाय, कॉफी या पानी, कंफर्टेबल जगह और बैकग्राउंड में ये फेवरेट बॉलीवुड मेलोडीज, ये ट्रैक्स, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बस याद रखना कि रेस्ट लेना लेजीनेस नहीं, कभी कभी पॉज करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि कल एक बार फिर से फुल ऑन एनर्जी। लेकिन अभी सेफ रहें, सुरक्षित रहें।

के साथ बच्चे कितना वक्त एंजॉय कर पा रहे हैं। नहीं, स्कूल की छुट्टी है ये सही बात है, लेकिन अपनी टाइम मैनेजमेंट करना ये भी तो बहुत जरूरी। पढ़ाई करनी है, रिविजन करना है, और आजकल तो इतनी सारी फैसिलिटीज जहाँ पर इंटरनेट से जुड़कर जो भी विषय में जिस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। तो बस अपना दिन प्लान कर लो, कब पढ़ाई, कब थोड़ा सा स्क्रीन टाइम, थोड़ा सा, और कितना म्यूजिक टाइम। वैसे अपनी क्रिएटिविटी को भी थोड़ी सी जगह दीजिए बाहर निकलने की, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, गार्डनिंग हो, कुकिंग हो, जाने क्या क्या, कोई नया स्किल प्रॉबेबली।

towards the end of this particular program, लेकिन अगला प्रोग्राम बस शुरू होने को है. ध्यान रखिए, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और याद रखिए बाहर नहीं जाना है. अरे आराम से फैमिली के साथ घर पर बैठिए, रेडियो पे गाना है. मतलब कि आपको बस ये बताना है कि जब तक कोई इमरजेंसी ना हो तब तक बाहर का रास्ता बिल्कुल ना पकड़े. सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और एक दूसरे का साथ यूं ही देते रहे. जल्दी मिलते हैं, ध्यान रखिए, नमस्कार.

0: सुनते रहो
1: लेट नाइट ग्रूव्स
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट नाइट ग्रूव्स RM2 पर और मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। 9 से 12 प्रोग्राम चलता है हमारा और साथ में जुड़ते हैं ऐसे गाने जो लेकर जाते हैं आपको एक अलग ही डेस्टिनेशन पे। इट्स मी टाइम, इट्स म्यूजिक टाइम, इट्स टाइम टू कनेक्ट विद द म्यूजिक। जहां भी हो बस म्यूजिक का हाथ थाम कर ये जान ले कि ये है आपका साथी 24/7।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: अक्टूबर भी अपने मिडिल तक आ रहा है, नहीं कह रहे तो क्या करें, स्पीड रफ्तार पकड़कर जो ये दिन चलते जा रहे हैं उसमें लगता है कि वक्त कैसे उड़ता जा रहा है, लेकिन हर लम्हे को जीना ये हमें आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वक्त को हम थाम लें, पर ये जरूर जान लें कि हर वक्त को कितना, हर एक पल को कितना मैजिकल बनाया जा सकता है। ज़रूरी है टू कम टुगेदर एज फैमिली, वो लोग जो आपके बहुत ही करीब हैं, तो ये फैमिली नेटवर्क को कभी छोड़े नहीं, पकड़ के रखें दिल के करीब, दिल के पास। मैं विकास, लेट नाइट ग्रूव्स,
0: RM2 रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।

0: काम करते करते जो दिन है धीरे धीरे खत्म हो रहा है और कल की जो चिंताएं किसी किसी को सता रही कि भाई ये काम बाकी रह गया वो काम बाकी रह गया। नहीं ठीक है ऐसी प्लानिंग करना, लेकिन इस वक्त जब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ तो ऑफिस में जाकर, हाँ लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अभी लैपटॉप के सामने बैठकर काम शुरू करते हैं और ये अगर सिलसिला आपने पकड़ लिया तो आप इसी लाइन में घुस जाएंगे। नहीं ज़रूरी, कभी कभी कोई चीज़ें होती हैं ज़रूर, लेकिन ये मान लीजिए हुजूर कि हर बार इसी विशेष सर्कल में अगर घुस जाएंगे तो अपने आप को कभी निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त दीजिए उस चीज़ को जो दिल पसंद करती है, वो है म्यूज़िक।
1: RM2 Radio Musti.

0: अभी वक्त कितना शांत सा हो गया ना, चारों तरफ थोड़ी सी खामोशी और बच्चे सो चुके हैं और कल का स्कूल या फिर कल काम के लिए भी बस तैयारी हो रही है सोने की, और फिर लगता है कि कल अच्छे से शुरू हो। वो तभी होता है जब आपने सारी प्लानिंग कर ली सोने की, उठकर क्या खाने की, क्या पहनने की और साथ में क्या ले जाने की। ये छोटी छोटी जो प्लानिंग है ना वो कर सकते हैं, बाकी ये सब ऊपर वाले भी छोड़ दो, उसकी प्लानिंग अपनी जगह है। लेकिन कहते हैं ना वर्क इज वर्शिप, तो बस अपनी तरफ से जो हो सकता है वो करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, आगे ही बढ़ेंगे।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: जितने भी लोग हमारे साथ दे रहे हैं इंटरनेट पर, अ बिग हेल्प टू यू गाइस एंड थैंक यू सो मच आपकी लॉयल्टी के लिए, हमेशा सुनने के लिए, साथ रहने के लिए। जानता हूँ कि मॉरिशस का फ्लेवर आपको इन गानों के जरिए जरूर मिलता है और फिर लगता है कि वहीं तो है, दिल वहीं है। अब चाहे फिजिकली नहीं है लेकिन फिर भी कनेक्टेड तो है ही ना। अब इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं अगर आप सोचें तो आपको बिजी रखने के लिए, लेकिन उनमें से निकल कर अपने आप को थोड़ा वक्त देना, ये भी अपने आप में एक हुनर है जो कि आप रखते हैं रेडियो के साथ जुड़ने का।
0: RM2
2: रेडियो मस्ती,
0: फील द मस्ती।

0: बम भोले, भोले बम भोले।
1: रेडियो मस्ती सुनते रहो।

अच्छा बॉलीवुड में इतनी सारी सिचुएशंस होती हैं, कभी खुशी कभी गम, नहीं नहीं मूवी का नाम नहीं, लेकिन फिर भी सिचुएशन अलग अलग तरह की, कुछ चीज़ें जो दिल को पसंद आती हैं और कुछ जो नहीं आती, कुछ जो अपने कंट्रोल में है और कुछ जो कंट्रोल में नहीं है। अगर उनको मानने की रिजल्ट है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप उससे लड़ते रहेंगे झगड़ते रहेंगे कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन आप कंट्रोल में नहीं है तो आप खुद ही को सजा देंगे। इसलिए प्यार से इत्मीनान से ये ज़रूर ज़िंदगी से जान लें कि ज़िंदगी स्लो पेस पे चलती है, अपने पेस पे चलती है, हाँ, लेकिन अगर आप आगे निकलना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहिए, सोच समझ कर थोड़ी प्लानिंग करके चलिए। लेकिन अभी है वक्त है म्यूज़िक के साथ कनेक्टेड रहने का।

अच्छा, हम में से कितने सारे लोग हैं जो सोचते थे कि जब बड़े हो जाएंगे, काम करने लगेंगे तो अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे, लेकिन चीज़ें कभी कभी अपने हिसाब से नहीं होती। वो एक जैसे मैं कह रहा था विशेष सर्कल, तो काम की बात हो या फिर घर की जिम्मेदारी हो, बच्चों को तैयार करना हो, कैसे धीरे धीरे ना हर एक स्टेज पर कुछ नया करने को मिलता है। अब इसको बोझ मत कहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप इतने प्यार से निभा रहे हैं उसमें और प्यार डालिए, खुशियाँ डालिए और देखिए साहब वही काम

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: अच्छा, दिन की तिजोरी में ऊपर वाला हमें सबको 24 घंटे देता है। अब 24

0: उस घंटे में आपने उस वक्त का कितना अच्छा इस्तेमाल किया ये तो आपके ऊपर है। अब अगर आप अपना काम ऑफिस में ख़त्म करके आते हैं तो बढ़िया, नहीं कभी कभी होता है कि घर पर काम आ जाता है लेकिन इतनी बारी नहीं। अगर आप अपना काम ख़त्म करके आप आते हैं, फैमिली के साथ जुड़ पाते हैं, वो हंसी खुशी के पल आप बिता पाते हैं तो यू द लकीस्ट पर्सन ऑन अर्थ। ये सोचिए कि आपके पास क्या है जिससे आप प्राउड फील करते हैं, मुस्कुराते हैं, आप अपने आप को चाहते हैं और सक्सेसफुल बनाना, लेकिन जो अचीवमेंट्स अभी तक आपने पा ली हैं उनके बारे में थोड़ा फ़ख्र कीजिए, थोड़ा सा प्राउड फील कीजिए और ये देखिए साहब ये जो बूस्ट है ना ये आपको आगे जाने का रास्ता दिखाएगी, जरूर आगे लेके जाएगी।
1: RM2 Radio Musti. Feel the Musti.

0: नमस्ते, सुनते रहो।
1: तो लीजिए साहब, ऐसे ही बातों ही बातों में इशारा हो गया कि प्रोग्राम तो खत्म हमारा हो गया। कोई बात नहीं साहब, फिर जब धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो फ्राइडे आएगा एक और नए मैसेज के साथ, खुशी ताजगी एनर्जी के साथ। तो फिर जल्दी मिलते हैं फ्राइडे की मॉर्निंग आपके साथ एक बार फिर से रेडियो पर। लेकिन अभी के लिए इजाजत, नमस्कार।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पे रहते हैं लेकिन करीब।

0: FM Tube.
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो